0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: ए मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2,009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और

0: चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
4: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित आ जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
2: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
5: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम,

0: और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेल पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
3: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 3,350 करोड़ रुपीज इन लद्दाख टुडे। Union Cabinet approves productivity link bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the 4th T20 match to level series 2-2. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. We have more from a correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of ₹640 crore, spread over 23,800 square meters. The modern terminal is designed to handle 35 lakh passengers annually. Prime Minister will also dedicate to the nation the 298 kilometer long Nyamo Padum Darcha Road constructed by Border Roads Organization, connecting Nyamo in Leh with Darcha in Himachal Pradesh through the remote Zanskar Valley. As part of effort to strengthen energy security and harness Ladakh's renewable energy potential, Prime Minister will inaugurate the 9-megawatt Hanu small hydroelectric project and 66 kV double circuit Da Hanu Halse transmission line. Prime Minister will inaugurate India's first petroglyph conservation park at Sindhu Ghat, Leh. Ladakh is home to 100

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: हाँ, मेरी कसम
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय
7: बिंदास मॉर्निंग।
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: दोस्तों कहते हैं कोई भी चीज ना अगर आपको जिंदगी में पानी है तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस चीज को पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल करना है या बहुत बड़ी आपको मेहनत करनी है, बस छोटा सा एक स्टेप लेना है, छोटा सा एक इनिशिएटिव लेना है। जैसे आप वो इनिशिएटिव लेंगे, आप यकीन मानिए आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? आपने ट्यून इन किया है आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मेरा नाम आनंद है, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। बहुत ही खूबसूरत सुबह है, गुरुवार का दिन है, और अभी बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। सबसे पहले तो 15 अक्टूबर की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 तारीख हो गई है अक्टूबर की, और समय की बात करूं तो 8:22 हो रहे हैं। 10 बजे तक आपके साथ जो है ये कंपनी चलने वाली है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां आप हैं हम हैं और ढेर सारे गाने हैं और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप भी अपनी कोई अच्छी सी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं आज की सुबह, आपको लगता है कि यार ये वाली बात डेफिनेटली रेडियो के माध्यम से हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो आप मुझे क्या करेंगे, एक छोटा सा मैसेज करेंगे। और फिलहाल मैं तो रहूंगा अभी आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, कब तक रहूंगा? 10 बजे तक रहूंगा। तो बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आप लोग बजा रहे हैं, बार बार आपके व्हाट्सएप मेरे पास आ रहे हैं। और देखिए, आप जब ये वीडियोस वगैरह भेजते हैं तो ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अभी सुबह सुबह आपको सिर्फ हमें अच्छी पॉजिटिव बातें बतानी है। आप कोई सी भी रील शेयर कर देते हैं कई बारी तो थोड़ा सा है ना। बाकी चलिए कोई बात नहीं, आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, और अभी एक खूबसूरत गीत से करेंगे आज के सफ़र की शुरुआत। आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और कहते रहिए दिल से जियो बिंदास। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करें ना आप। अभी लौट कर आते हैं इसी स्टेशन पर।
1: मैं प्यार कर

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: तुझे दे जाएंगे।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत फ्रॉम द फिल्म नया दौर, मोहम्मद रफी आशा ताई ने गाया। आज की सुबह आपको देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी। साथियों आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने स्टेशन ऑफ द नेशन पर आरजे आनंद के साथ, और कहते हैं कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं होता, बस सोच सही जरूरत है सोचने की। अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन यही है, हर एक समस्या का समाधान यही है। शांति के साथ और सही तरीके के साथ जब आप ढूंढते हैं सलूशन और पूरी पॉजिटिविटी के साथ ढूंढते हैं, तो यकीन मानिए वो सलूशन आपको ज़रूर मिल जाता है। साथियों वक्त हुआ है 8:35, सुबह का समय है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह अगर आप अपने लिए भी समय निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सुबह का समय बड़ा हेक्टिक होता है, भाग दौड़ वाला होता है, अपने लिए तो बाद में समय निकाल लेंगे, अपने लिए तो शाम को समय निकाल लेंगे, तो देखिए ये शाम का जो समय है ना भाई, ये शाम को कभी समय नहीं मिलता है। फिर अगर आपको स्टार्ट करना है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है, स्पेशली अपनी बॉडी को लेकर, तो आप सुबह से ही शुरुआत करें और कोशिश करें कि सुबह सवेरे आप उठते ही गुनगुना पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जब आप गुनगुने पानी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, एक गिलास दो गिलास जब आप गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उठते ही चाय पीने की बजाय अगर आप गर्म पानी लेना शुरू करें तो आप देखिए 10-15 दिन में आपको कितना बेटर रिलीव होगा, आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि आप सच में बहुत ही अलग चीज कर रहे हैं। तो इसीलिए उठते ही कुछ खाने पीने की जगह एकदम जो है सिर्फ उठें, और उठते ही फोन ना चलाएं, उठते ही बेड में टी ना मांगें, थोड़ा सा निकलें वॉक करें, हल्की सी जो है सुबह की ताज़ी फ्रेश हवा लें, उसके बाद गर्म पानी पिए, फिर उसके बाद अपनी आपको जो भी मतलब अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप करके आ रहे हो तब भी आप ले सकते हो। उसके बाद आराम से जो है अपना नहा धो के फ्रेश होके फिर अपने ऑफिस निकलिए, देखिए कितनी पॉजिटिविटी और कितनी सकारात्मकताएँ आपको जो है पूरा दिन दिखाई देंगी, ऊर्जाओं से भरे रहेंगे आप, सच बता रहा हूँ आपको। फिलहाल ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हो आप? सुबह सुबह बड़े अच्छे गाने बजाते हो, सुनकर के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और ये हमारे पास संदेश पहुंचा है यहाँ पर रिंकू ठाकुर जी का, गुड मॉर्निंग भैया कैसे हो? रिंकू जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ, सुबह सुबह आपके गानों में एक ताजगी होती है, अरे वाह क्या बात है यार। और एक मैसेज आया है कि आनंद जी देखिए जीवन में जब भी कुछ हमें इंसान को करना होता है ना, तो हम सोचते बहुत है और करते कम है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो हमें क्या करना है ना आनंद जी, हमें सोचना नहीं है, हमें काम ज्यादा करना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन चक्कर ये ना कि हमारी एक आदत हो गई कि पहले हम सोचते हैं उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सिर्फ सोचने के समय में ही एक्शन कर ही नहीं पाते, सोचते ही रह जाते हैं, वो समय निकल जाता है, मतलब कहने का ये है। तो आप भी जो है ना यही कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप मतलब करना चाहते हैं उस पर काम करना शुरू करें, एक्शन लेना शुरू करें।

एक खूबसूरत गीत आपका इंतजार कर रहा है। इस खूबसूरत गीत के बाद हम वापस आते हैं और फिर आपसे और बातें करेंगे। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही सुनते रहें आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। और अभी 8:38 हुए, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। क्या स्पेशल है आज की तारीख में, इस पे बात करेंगे हम। और अभी लौट कर आते हैं, उसके बाद आपसे और बातें होंगी। थोड़ी सी आवाज़ चेंज हो गई है, कोई बात नहीं, इस आवाज़ का भी मजा लो यार। अभी एक बहुत ही खूबसूरत गाना फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में है, आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, वेरी गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर में मिलते हैं ना। क्या हाल चाल है?

0: लास्ट मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
7: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ, दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
8: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
7: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
9: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

वेलकम बैक है वंस अगेन, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। किसी का मैसेज आया सर, आपकी आवाज सैफ अली खान की तरह लग रही है भाई, मुझे मारो, क्या मजाक उड़ा रहे हो सुबह सुबह आप लोग। हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए बॉस। हेलो हेलो, हाय कैसे हालचाल, हेलो रे हेलो।

0: सब बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, 15 अक्टूबर की सुबह सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां ढेर सारी बातें होती हैं दिल से दिल तक। यहाँ मैं हूँ आप है और अच्छे गाने। चलो जी, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको कहते हैं पाजी गुड मॉर्निंग विश करो।
1: वेरी गुड, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल।
0: देखो पाइनएप्पल का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ नारियल पानी दिख रहा है आपको एंड आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, तो आप नारियल पानी ले लो। मेरी बात मानो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपकी सुबह सुबह हेल्थ के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल नींद नहीं, अभी तो भैया यहाँ पर सब कुछ चोरी हो गया है। आज के दिन के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों स्पेशल है आज की तारीख 15 अक्टूबर की।

यार कसम से, मतलब जिंदगी में ना आपको कुछ भी हो जाए लेकिन जुखाम ही होना चाहिए बॉस, कसम से यार बैंड बजा के रख देता है ये जुखाम, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। तो सुल्तान बहादुर शाह गुजरात की गद्दी पर बैठे थे आज के दिन 1529 में। आपको बताते चलें एक और खास चीज, वो ये कि भैया फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनपार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर जो है निर्वासित किया गया था 1815 को। इसके अलावा आज के दिन और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के बाद में एक एयर इंडिया बनाई एंड उसकी पहली उड़ान की शुरुआत की थी आज के दिन 1932 में, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं आज के दिन में, और आज का दिन इसीलिए बहुत ही स्पेशल हो जाता है क्योंकि आप आनंद के साथ सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। चलिए फिलहाल देखते हैं अभी क्या कह रहे हैं और क्या कुछ खास रहा था आज के दिन। इसके अलावा आपको बताते चलें त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया 1949 में आज ही के दिन श्रोताओं। और इसके अलावा आज ही के दिन जो है अनवर सदत मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए 1970 में आज ही के दिन। और बाकी आज ही के दिन जो है फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सिंध की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना 1996 में। इसके अलावा आज एक और खास चीज़ रही जिसने आज के दिन को और भी स्पेशल बना दिया श्रोताओं। एंड आपको बताते चले आज के दिन कुछ महान कलाकारों का भी जन्म हुआ है जिनमें से कुछ नाम मैं यहां पर डेफिनेटली लेना चाहूंगा। सबसे पहले नाम आता है मदन सिंह चौहान जी का, छत्तीसगढ़ के संगीत तथा प्रसिद्ध लोक गायक है। 1947 में जन्म हुआ था इनका। और मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 1936 में इनका जन्म हुआ आज के दिन। इसके अलावा आपको बताते चले आज के दिन जन्म हुआ था विक्टर बैनर्जी, भारतीय अभिनेता है, 1947 में इनका जन्म हुआ आज के दिन। और इसके अलावा आपको बताते चले आज ही के दिन शंकर प्रसाद संगीतकार है, शंकर जयकिशन जी, 1922 में जन्म हुआ था आज ही के दिन उनका भी। तो भैया ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें और आपको मैं कुछ बेसिकली यहाँ पे कोड देके जा रहा हूँ, पॉजिटिव कोड, और ये कोड किन के हैं ये आपको बताना है, ठीक है।

मिलेंगे हम इसी स्टेशन पे अगले घंटे में, आपसे करेंगे और भी ढेर सारी बात, आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और आपकी जो संदेश पहुंच रहे हैं ये डेफिनेटली आप तक शामिल करूंगा मैं थोड़ी देर में। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना लाइन, ये किसकी लाइन है ये आपको मेरे को बतानी है, ठीक है। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप सोते, जो आपको मतलब सोने नहीं देते। एग्जैक्टली, आई रिपीट दैट माई थॉट, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी का है, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम साहब का है, ऑप्शन सी ये स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। आप बताओ मुझे क्या है इसका सही जवाब, और व्हाट्सएप करो मुझे आप 9837896896 पे। इंतजार रहेगा हमें आपके मैसेजेस का कि भैया आप मुझे बताओ, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ये कौन से महान इंसान की लाइनें हैं, अगर पता है आपको तो व्हाट्सएप कर दो।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: हाँ मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय
6: बिंदास मॉर्निंग्स RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली 9:03 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। यार सुबह सुबह बस आपको ढेर सारी बातें बताने के लिए आपके रेडियो पर आते हैं, और ये हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई, बड़ी नैतिक जिम्मेदारी हो गई है कि पूरे मुरादाबाद की जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। पिछले 3.5 साल से हम यहाँ पर आपकी मॉर्निंग को सुबह ऊपर बिंदास बनाते हैं, अच्छी गालियों के साथ, अच्छी वाइब्स के साथ, फुल ऑन पॉजिटिविटी आपके साथ शेयर करते हैं। और सच में यार क्या मैसेज आ रहा आप उनके पास आज की सुबह, और एक बड़ी गजब की पर्सनालिटी को आज हम याद करते हैं। 15 अक्टूबर, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल तारीख। आज मैंने कहा है एक कोड आपके साथ शेयर किया है, वो कोड आपको बताना है किन का कोड है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल कोड कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। एंड ये कोड कौन सी पर्सनालिटी का है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, या फिर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद जी। बहुत ही ब्रिलियंट मैसेज जा रहे हैं यार, ये ओरिजिनल वाली तालियां आपके लिए। नवरात्रि का 5वां दिन है, आज का दिन क्या स्पेशल है, क्या चीज आप कर सकते हो, क्या सिग्निफिकेशन है, रंग भोग एवरीथिंग सब कुछ पता लगेगा आज के दिन के बारे में। थोड़ी देर में बात करेंगे आज की माता के बारे में, आप ऐसे ट्यून इन रहिए। अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी है मेरे पास जो आप जीत सकते हैं थोड़ी सी देर में, बस आप ऐसे स्टे ट्यून रहिए यार, जहां बातें होंगी दिल से दिल तक, आप है मैं हूं और ढेर सारी बातें हैं, एंड ऑफकोर्स अच्छे गाने भी हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की मॉर्निंग, तो आपका मोस्ट वेलकम है 9837896896 पे। सफर शुरू करते हैं।
10: लो सफर
9: एब्सोल्युटली आज की सुबह।

0: 5월의 song. 아하. आप जहां भी निकल रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यार, ऑल द बेस्ट. आपका सफर शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया. इसी गाने के साथ करेंगे इस घंटे की किक स्टार्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: सफर शुरू हो गया.
0: बागी फिल्म का एक गाना है, बागी 2 का, जुबिन नौटियाल ने गाया है बड़ी खूबसूरत आवाज में.
1: सफर शुरू हो गया.
0: चलो लौट कर आता हूँ फटाफट से, जल्दी से लौट कर आऊंगा. उसके बाद आपको एक बड़ी स्पेशल वाली बात बताने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर. मैंने आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मैंने कहा है आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ. एक कोड मैंने आपको दिया है, ये कोड किन का है ये आपको मुझे बताना है व्हाट्सएप करके. कोड अगेन रिपीट कर दूँ आपके साथ, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं. ये जो थॉट है ये आपने मेरे को बतानी है, ये कौन सी पर्सनालिटी की थॉट है. मैसेज कर दो, आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस. आने वाला गाना धुरंधर से करें.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अजय आनंद इज बैक।

0: बात है मुरादाबाद। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। 9:14 हो गए हैं। ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। वेरी गुड मॉर्निंग है। आगे बढ़ते हुए आपको बता देंगे एक बार फिर से, आपका वार्म वेलकम है। दिस इज द मॉर्निंग शो। बातें दिल से दिल तक होती है दोस्तों। आज 15 अक्टूबर का दिन भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति को याद करने का दिन है जिन्होंने करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट, किन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बता दूँ आपको, एपीजे अब्दुल कलाम। यस यस, मैं आज उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही खास है जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ। आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च और एक ऐसे कमाल की पर्सनालिटी बने जिन्होंने लाखों युवाओं को प्रेरणा दी है। यस, तो भैया आज मैं उन्हीं के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का वो दिन है जब उन्होंने जन्म लिया था और आज उनकी पुण्यतिथि है। हम उनको याद करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, कलाम जी का मानना था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है और सपने देखते देखते उस पर काम करना, उनको पूरा करने के लिए मेहनत और लगन और साथ में डिसिप्लिन, अनुशासन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ भी चाहिए होती है, सिर्फ ये नहीं कि सपने देखते रहो। सपने तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और आज मैं भी बस आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप भी मुझे बता सकते हो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है। आप उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हो या फिर आपको लगता है कि नहीं यार बस थोड़ा सा लक के ऊपर छोड़ देता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या सच में लक काम करता है या हमारी मेहनत काम करती है? सो आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर हम भी संकल्प लें कि बड़े सपने देखेंगे, लगातार मेहनत करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आरजे आनंद के साथ हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन, और ऐसे ही आपके साथ ढेर सारी बातें शेयर करते रहेंगे। ग्लोबिंग हैंड वॉश डे आज सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसके अलावा आज के दिन नेशनल मशरूम डे मनाया जाता है। दैट इज अ वेरी स्पेशल डे। जो बिग लवर है मशरूम के, उनके लिए स्पेशल डे। आप उत्तराखंड में चले जाओ, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लोग इसको खाना पसंद करते हैं बिकॉज वहाँ की बड़ी फेवरेट है ये। एंड यहाँ का तो मुझे नहीं पता लेकिन पहाड़ों में लोग बहुत खाते हैं मशरूम। उसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बताने वाला हूँ और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं आज की मॉर्निंग और ढेर सारी बातें कर सकते हैं मेरे साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी दिलजीत दोसांझ के बारे में एक बात बताने वाला हूँ। आने वाला गाना दिलजीत पाजी की आवाज में, ओए क्या बात है, बल्ले बल्ले। ये है थर्सडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं, उसके बाद आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं ये आप मुझे बताओ मैसेज करके 9837896896। एक छोटा सा सवाल लेकर आता हूँ यार, ये गला बड़ा खराब हो रहा है, काम करता हूँ, गर्म पानी पी के आता हूँ मैं।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
8: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: Good morning, pineapple.
1: Aha.
0: Looking very good, very nice. Good morning, pineapple.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. पाजी आप तो कमाल करते हो, मतलब धोती फाड़ के रुभाल करते हो. व्हाट इज द मतलब रीजन? आप सोच रहे होंगे क्यों ऐसा बोल रहा, व्हाट इज द रीजन, ये क्यों किया आपने? हाँ देखो, सुबह का समय है, इसका रीजन कुछ नहीं है. सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल करते हैं तो बड़ा मजा आता है मेरे को. लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपके ढेर सारे मैसेज हमारे पास. श्रुति मैम का मैसेज आया, लिखती है, हाय मॉर्निंग आनंद, कैसे हो, हाउ आर यू? सुबह सुबह यार तुम्हें सुन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें तुम करते हो, थैंक यू सो मच. एक मैसेज मेरे पास प्रणित का आया, इन्होंने लिखा है, सोचो कितने संघर्ष से गुजरे हैं वो लोग जो सफलता मिलने पर मुस्कुराते नहीं बस रो देते हैं. आए हाय हाय, ये बात तो आपने बड़ी सही कही है भाई साहब. मतलब कती लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट शॉर्ट बात है, बट बड़ी थॉटफुल बात है, बहुत मीनिंगफुल बात है. चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं. दोस्तों आज के वेदर की बात कर लेता हूँ फटाफट से. 25 डिग्री सेल्सियस आज अभी करंट वेदर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आज की जो है मौसम की ताज़ी जानकारी आपको फटाफट बता देता हूँ. 25 डिग्री सेल्सियस अभी करंट टेम्परेचर है. 1 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं दिखा रहा है. आगे चल के ये मौसम जो है 29 डिग्री तक पहुंच सकता है टेम्परेचर. लोएस्ट की बात करूँ तो 21 डिग्री भी पहुंच सकता है और हल्के फुल्के बादल रहने की भी संभावना है आज के दिन. बाकी देखते हैं, मौसम जो है अचानक से कभी भी अंगड़ाई बदल लेता है, कभी भी मतलब जो है अपना जलवा दिखा देता है, तो इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं वैसे. चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं. कहीं जाम में हो, कहीं ट्रैफिक में हो, तो ये डिटेल आप मुझे दे सकते हो व्हाट्सएप के जरिए 9837896896 पर. आपको बता दें, रामलीला ग्राउंड के अंदर जो रामलीला चल रही है, बहुत ही भव्य रामलीला हो रही है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है रामलीला में देखने को मिलती है. बाकी आप लोग भी डेफिनेटली आओ और बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पर रावण का एक पुतला बनाया जा रहा है और वो रावण काफ़ी बड़ा बन रहा है, जिसके विषय में स्पेशल कॉन्वर्सेशन आज हम करने वाले हैं उनके साथ. तो आप ट्यून इन रहिए हमारे साथ. ऐसे ही कुछ मत कहिए पाजी, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ और कहीं बिल्कुल बच जाओ. ऐसे ही ट्यून इन रहो आनंद के साथ. ये है आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग. एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ कम बैक करता हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे. कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आपको फटाफट से बता देता हूँ, आज भी जो लोन वाले शिविर हैं वो लगाए जाएंगे. मैंने आपको कल बताया था ना, 14 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच जो है लोन शिविर लगाए जाने से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है युवाओं को. इसी पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है, उनकी स्पेशल वाइट अभी सुनवाने वाला हूँ आपको इसी स्टेशन पर. आने वाला गाना हमारे साथ जुड़ चुकी है सुहानी शिवपुरी से, लिखती है, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, आपका शो बहुत ही अच्छा लग रहा है आनंद. गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी. हाय गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे गाने प्ले करते हैं आप. निशा मेरे साथ जुड़ी है, हाय निशा जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मेरे साथ राकेश मुमताज जी जुड़ चुके हैं, बड़े प्यारे मित्र. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? रात बहुत झूमे यार डांडिया में, अभी और भी डांडिया नाइट होने वाली है जिनके पासेस मैं आपको दूंगा. भाई साहब अगर आपने वो वाइब चेक नहीं किए तो प्लीज यू हैव टू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी. क्या यू नो वाइब थी, क्या सेलिब्रेशन था. देखना चाहते हो तो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, प्लीज यू कैन गो एंड वॉच, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे. फुल ऑन वाइब, मैं बड़ा हैंडसम लग रहा था कल, देखना चाहते हो तो जाके इंस्टा चेक करो. वक्त हुआ है 9:30, I'll be right back.

0: You're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: हां मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय,
8: बिंदास मॉर्निंग।
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। कुछ कहना चाहते हैं आप? कहीं पे ट्रैफिक में हैं? कोई अपडेट है जो आपको लगता है कि रेडियो के थ्रू सारे मुरादाबादी तक जानी चाहिए? इनफैक्ट मुरादाबाद के बाहर भी आप हमें सुनते हैं हमारी ऐप के जरिए। अगर अभी तक आपने हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो प्लीज फटाफट से प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। और हमारे जो कनेक्शन है ना, वो दिल से दिल तक वाला है। सारी लोकैलिटी की अपडेट आपको मिलती है इसी चैनल, इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आने वाला गाना एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। लव आजकल का ब्यूटीफुल ट्रैक, ये थर्सडे की सुबह है। बंदे का नाम आनंद है। गुड मॉर्निंग।

क्या बात, गाना मैं इतना रेडियो पे सुना हूँ ना, सुन सुन के मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। मतलब रेडियो पे इस गाने को सुनने में अलग ही फील आती थी, अलग ही वाइब आती थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक है वंस अगेन। इस वक्त आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो। एक बार प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। 9:39 हो गए हैं, नवरात्रि का पांचवा दिन हो गया है आज। आप सभी को आज के माँ के इस पांचवें स्वरूप की ढेरों शुभकामनाएं। श्रुति, नवरात्रि चल रहे हैं, आपको हमारे पूरे एफएम इंटर फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और जय माता दी मुरादाबाद। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि जब ये श्रुति नवरात्रि आते हैं तो वाइब एक अलग ही चेंज हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन में आज हम माँ का पांचवा दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। आज हम माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करते हैं। माँ स्कंद माता को ममता, प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। माँ की गोद में विराजमान है बाल कार्तिकेय और हमें माँ और संतान के पवित्र रिश्ते की भी याद दिलाता है ये वाला नवरात्रा। दोस्तों, माँ का प्यार वो एहसास है जो हमें हर मुश्किल के समय में हिम्मत देता है। हम कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना पड़ जाएं, जब हम दिल से माँ को याद करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। यही तो होती है माँ की ममता। और दोस्तों देखिए, हम जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना। तो आज के इस नवरात्रि के पावन दिन पर आपको मैं देता हूँ ढेरों शुभकामनाएं। और अगर आज आप अपनी माँ से थोड़ा सा भी दूर हैं तो आप कॉल करके उनसे ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं। और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। माता स्कंद माता आपके जीवन से माँ सारे कष्टों को दूर करे, सारे विघ्नों को हरे, आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आए, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएँ लेकर आए। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस खूबसूरत से दिन की। कहते हैं माँ को सफ़ेद रंग बड़ा प्रिय होता है और शांति का भी और ये जो है प्रतीक माना जाता है। तो अगर आज के दिन आप कोई वाइट कलर का हैंकी या कुछ पहन के निकल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज का जो लकी अंक है वो 5 है। बात कर लेते हैं स्कंद माँ का जो मतलब फेवरेट फूड है, जो माँ को बहुत पसंद है, जो माँ को बहुत प्रिय है, जिसका भोग आज के दिन लगाया जाता है। आपको बता दें माँ स्कंद को सफ़ेद फूल आज अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा माँ को विशेष भोग जो आज लगाया जाता है वो आप जानना चाहते हैं, माँ को क्या पसंद है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा थोड़ी देर में जब लौट कर आऊँगा। तो लेकिन फिलहाल माँ की बात चल रही है, पांचवा दिन है आज का। और आज के दिन माँ को कहते हैं केला बहुत प्रिय है। अगर आप माँ को केले का भोग लगाते हैं तो बहुत ही अति उत्तम होता है आज के दिन। बाकी हमारी तो बस यही विशेष है आपके लिए कि माता रानी आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करे, सारे विघ्नों को हरे, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। एक बार प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं भी बोलू जय माता दी और तुम भी बोलो जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस माहौल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसी बात के साथ, और एक सुंदर सा देवी गीत आपके लिए प्ले करते हैं, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे व्हाट्सएप के जरिए।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

मेरे पास एक व्हाट्सएप आया कि स्टेशन की तरफ थोड़ा सा कंजेशन है, उधर हल्का सा ट्रैफिक है आनंद, बाकी गागन की तरफ थोड़ी सी क्लैरिटी है। थोड़ी देर पहले शायद वहां पर जाम था लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हो गया है। एंड बाकी कहीं और जाम है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हो 9837896896 पर।

क्या बात है, ढिंडोरा बाजे रे, रोग की रानी की और प्रेम कहानी का भी गाना एंजॉय कर रहे थे आप। बहुत ही अच्छा ट्रैक, बहुत ही बढ़िया गाना। चलिए, दर्शन रावल ने बहुत खूबसूरती से इस गाने को गाया है। आगे बढ़ते, पता नहीं कि मुझे बैठे बैठे स्टूडियो में गर्मी लग गई यार, फिर मुझे एसी खोलनी पड़ी, हालांकि गला साथ नहीं दे रहा, ऑलरेडी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये कह रहा था, बाहर का मौसम देखो, यहाँ बादल दिखा रहा है भाई, एंड कैसा वेदर हो रहा है ये तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल अभी एक मूवी आपको गेस करनी है, बहुत ही अल्टीमेट फिल्म है, अगर आपने गेस करी तो मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ जिताने वाला हूँ आज की सुबह। अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे सवाल का आंसर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज की सुबह मैं आपको तीन क्लू देने वाला हूँ, एंड ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, और आपको बस मुझे मतलब जो है बताना है कि ये जो डायलॉग है वो बेसिकली कौन से फिल्म का है। बहुत ही अच्छा मूवी है ये, मतलब काफ़ी बढ़िया फिल्म है, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी यू नो इसे मोटिवेट कर देने वाली फिल्म है। कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ ये आपको बताना है।

0: चलो एक काम करते हैं, हम ना आपको एक डायलॉग सुनाते हैं एंड इस डायलॉग को आप आइडेंटिफाई करो कौन सी फिल्म का है ये डायलॉग आज की सुबह, ठीक है जी। सो रेडियो के पास जरा अपने कान को लेकर आओ। वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट यार, अच्छी बात है। चलो ऐसे सुनते रहना चाहिए रेडियो एंड मैं अभी इनको बुलाता हूँ। एग्जैक्टली, तो अब आपको क्या करना है ना, आपने डायलॉग पहचानना है कौन सी फिल्म का है।
1: सलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
1: मैंने तो ना देखी आज तक चोरी को पहलवानी।
0: चलो जी बताओ मुझे, हमारी चोरी चोरों से कम है के? ये डायलॉग जो है वो कौन से पिक्चर का है?
1: सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
1: मैंने तो ना देखी आज तक चोरी को पहलवानी।
0: चलो व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896। अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको मेरे व्हाट्सएप पे पहुँचाना है। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है?
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
1: मैंने तो ना देखी आज तक चोरी को पहलवानी।
0: चलो व्हाट्सएप करो, अगर आपको समझ में आ गया है ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है तो इमीडिएटली मैसेज कर दो मुझे 9837896896 पे। वेरी गुड मॉर्निंग।

पहले कुछ करंट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपडेट ये है भैया कि दिलजीत दोसांझ फिर से मचाएंगे धूम। उनका एक और टूर का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भैया अब वो फिर से जाकर के जो है अपना एक नया कॉन्सर्ट टूर करने वाले हैं, जिसमें वो अलग अलग जो है सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं, एंड जिसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उनका पहले भी हुआ था दिल लुमिन मिनाटी करके उनका एक टूर शुरू हुआ था 2024 में, एंड इसके बाद दो साल के बाद फिर से उन्होंने बैक करने की कोशिश की है। 2026 में वापस आ रहे हैं एक और नया कॉन्सर्ट लेकर, जिसमें वो एक बार फिर से इंडिया की टूर जो है करते नजर आएंगे। 1 नवंबर को उनका पहला कॉन्सर्ट दिल्ली एनसीआर में होने वाला है, 15 नवंबर को इंदौर, एंड 21 नवंबर को अहमदाबाद, और 27 नवंबर को मुंबई। ऐसे करके उनके अलग अलग कॉन्सर्ट हैं, लखनऊ में भी है और भी तमाम सारी जगहों पर जो है परफॉर्मेंस जो है अपनी देने वाले धाकड़ वाली दिलजीत दोसांझ साहब। मैं तो आपको गिफ्ट दूंगा, शो तो सुनो यार, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा भाई। एंड फाइनली सैफ अली खान साहब ने भी कम बैक किया इंस्टाग्राम पे, एंड यू नो जितने भी फैंस हैं सलमान भाईजान ने यूट्यूब पे कम बैक किया है, मतलब कम बैक उनका तो नया स्टार्ट हुआ है सलमान भाईजान का तो, और अभी सैफ अली खान साहब का भी जो है इंस्टा पे डेब्यू हो गया है, एंड जिसको लेके मतलब जो है काफ़ी फैंस एक्साइटेड है। मतलब काफ़ी सारे मैं कॉमेंट्स चेक कर रहा था, एंड सैफ अली खान साहब इंस्टा पे उन्होंने डेब्यू किया, इंस्टाग्राम पर उन्होंने जो है करीना कपूर को बस फॉलो किया है यार। मतलब उन्होंने सिर्फ अभी एक पर्सन को फॉलो किया, एंड वो करीना कपूर खान है। ऑफकोर्स यार करना तो बनता है। सो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने आखिरकार ऑफिशियल तौर पर इंस्टाग्राम पर एंट्री कर ही ली है, एंड जहां उन्होंने अपनी पहली पोस्ट अपनी पसंदीदा प्लेस के साथ जो है लाइब्रेरी में बैठते हुए फोटो को शेयर किया है, जिसको लेके बहुत लोग एक्साइटेड भी हैं एंड काफ़ी फैंस पसंद कर रहे हैं सैफ अली खान का ये पिक्चर, एंड उन्होंने अपनी पत्नी करीना कपूर खान को फॉलो कर लिया है। बॉस ये सबसे बड़ी न्यूज़ बन गई, बताइए यार, हद है यार, मतलब व्हाट इज दिस यार, आई हाय एवरीबॉडी, दिल दिया है जाब। इसी बात पे आपको बताते चले, करण विद कॉफी सीजन 9 में जो है सलमान खान के साथ नजर आ सकती है करिश्मा कपूर। अभी ये भी बॉलीवुड से जुड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान के साथ करीना कपूर जो है वो आ सकती हैं करण जौहर के इस शो में, कॉफी विद करण में। इसका सीजन 9 है और इस बार तो एंडिंग हो रही है इस सीजन की, तो इसमें ये दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ है बताने के लिए तो मैं डेफिनेटली स्क्रॉल कर रहा हूँ, तब तक आप लोग गाने सुनो यार।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: मुरादाबाद। अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: एब्सोल्युटली सही सुन रहे हैं आप। और अभी फिलहाल एक लास्ट मौका आपको दे रहा हूँ आज की सुबह। आपको क्या करना है, बस आइडेंटिफाई करना है डायलॉग कौन सी फिल्म का है। पाजी ध्यान से सुनो इस डायलॉग को और मुझे बताओ जो अभी डायलॉग चल रहा है स्क्रीन पे, ये डायलॉग कौन सी मूवी का है। अगर आप इसका जवाब दोगे तो हमें अच्छा लगेगा।
6: तो सिर्फ छोरे करें,
7: मारी चोरियां चोरों से कम है के।
6: मैंने तो ना देखा आज तक।
5: चलो जी मैसेज करो मारी चोरी चोरों से कम है के, ये डायलॉग भैया कौन सी पिक्चर का है।
6: मानी तो सिर्फ छोरे करें,
7: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के।
5: बहुत ही कमाल की फिल्म है स्टारिंग बाय आमिर खान, बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आपको पता है इसका जवाब तो व्हाट्सएप करो। थैंक यू जी। सुबह के 10:05 हो गए स्टेशन क्लॉक में, लौट कर आता हूँ एक लकी कॉलर के साथ। देखते हैं कौन बनेगा आज की सुबह मेरे शो का सुपरस्टार। अगर आप भी पार्टिसिपेट कर चुके हो पाजी तो बस मैं कह रहा हूँ आप मेरे बस ऐसे ना शो सुनते रहो। आप में से किसी एक को कॉल जाने वाला है थोड़ी सी देर में, फोन के करीब आ जाना जी। गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगा लो पाजी, और कहीं जाम में हो कहीं ट्रैफिक में हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो आज की सुबह। फटाफट मैसेज करो एंड मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। आने वाला गाना ओ ना जी ना, असी तो मुरादाबादी है यार। पाजी बोलो बहुत ही अच्छा से गाना एंजॉय करते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का गाना। चलो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, सुनते रहो ऐसे ही FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 706002430।

0: क्या बात है यार, इतना बेहतरीन और धाकड़ गाना सुन के तो हर किसी की सुबह फैबुलस हो जाती है यार। मस्त गाना था।
1: मॉर्निंग पाइनएप्पल लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस।
0: थैंक यू यार, थैंक यू। गुड मॉर्निंग आनंद भी बोल दिया करो कभी, गुड मॉर्निंग मुरादाबाद भी बोल दिया करो हर टाइम, पाइनएप्पल पाइनएप्पल। चलो लेकर आओ इसी बात पे, आगे बढ़ते हैं भाई। आप सुन रहे हैं आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हाल चाल है यार, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि अभी कल से जो है स्टार्ट हुआ है हमारे मुरादाबाद के अंदर, जो लोग अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद का रोजगार करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और कल 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जो है आप कैसे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, इसके ऊपर सारी बात करने के लिए जरा हमने क्या स्पेशल कॉन्वर्सेशन की है ये आप सुनिए, और इन्होंने आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी है।
2: की जो स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसके अंतर्गत 21 से 40 वर्ष का युवा जो न्यूनतम 8वीं पास हो, वो अपना कोई भी कारोबार, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का हो, चाहे वो सर्विस एक्टिविटी के सेक्टर का हो, उसको स्थापित करने के लिए बिना ब्याज का, ब्याज मुक्त बिना गारंटी का 5 लाख रुपए तक का ऋण वो ले सकता है हमारी इस योजना के अंतर्गत। इसके साथ साथ उसको 10% की सब्सिडी अनुदान के रूप में भी मिलेगी। पहले 6 महीने उसको कोई भी किस्त नहीं होगा, वो मॉरिटोरियम पीरियड मिलेगा, और अगले 3.5 साल में सिर्फ उसको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस करना है, बिना ब्याज के उसको वापस करना है। अगर वो पहला पूरी तरीके से सही से पे करता है तो दूसरे किस्त वो 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है। तो मैं मुरादाबाद के युवा साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जो 21 से 40 वर्ष के युवा हैं, 8वीं पास हैं, अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, वो जरूर इसमें आवेदन करें। इस योजना के आवेदन के लिए हमने कैंपों के आयोजन किए गए हैं। कैंप के आयोजन 14, 15 और 16 को बृहद स्तर पर हर ब्लॉक ऑफिस पर, हर नगर पालिका के ऑफिस पर और नगर निगम क्षेत्र का हमने पंचायत भवन में दिनांक 16 को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लगेगा। हम इसमें युवाओं से अनुरोध करेंगे कि जैसे 14 तारीख को मूढ़ा पांडे में, कुंदरकी में, मुरादाबाद में, छजलैट में और बिलारी में, भगतपुर टांडा, इनके ब्लॉक ऑफिसेज में आप अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, फोटो, अपना हस्ताक्षर युक्त और कोटेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ लेकर आएं। हमारी पूरी टीम वहां बैठी होगी और आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन कराने में आपका सहयोग करेगी और आवेदन वहीं ऑन द स्पॉट आवेदन कराए जाएंगे। 15 तारीख को हमने ठाकुर द्वारा, डिलारी, नगर पंचायत अगवानपुर, नगर पंचायत उमरी कला, नगर पंचायत,
0: काफ़ी सारी जगह पर जो है ये चीज़ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, इतना इम्पॉर्टेंट टाइम आपने दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे लिसनर्स तक साझा करी, उसके लिए हम आपको दिल से थैंक यू करते हैं। बाकी मुरादाबाद 16 तारीख को जो है उन्होंने बताया पंचायत भवन में भी कैंप लगने वाला है, युवा उद्यमी योजना के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका सपना है कि आप खुद का अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए कमाल की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती है साहब ने। और अगर आप भी इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपको सारी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, कैसे आप युवा उद्यमी योजना का हिस्सा बनके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप 8वीं पास हैं और आप दूसरों को भी रोज़गार देना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अपने सपनों की उड़ान को भरना चाहते हैं, तो आप कैसे पहुँच सकते हैं अपनी मंजिल तक, ये अब तक पता चल गया है। फिलहाल 10:16 हो गए हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका जवाब देने का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आज की सुबह, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी लौट कर आ रहा हूँ एक लकी कॉलर के साथ, आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, स्टे ट्यून्ड।

0: चलो जी, हाई हील पे आप नचते रहिए, मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैंने आपसे पूछा था आज की सुबह ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है?
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: तुम्हारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
1: मैंने तो ना देखा।
0: एंड इसका राइट आंसर मेरे पास सबसे पहले दिया है भारती ने एंड साथ में आयुषी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन भारती एंड आयुषी। आज की सुबह आप बनती है हमारी शो की सुपरस्टार। हम देते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी डांडिया नाइट की कॉन्सर्ट पासेस। आप आइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। और अभी के लिए फिलहाल बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है तो उनके लिए बिल्कुल बजा देते हैं यार। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलो एक गाना बजाओ, छोटा सा गाना बाजी वो हो जाए। एग्जैक्टली 10:20 हो गए, मिलते हैं आपको कल सुबह इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हैप्पी नवरात्रि भारती जी, जय माता दी, थैंक यू सो मच। दिस इज द राइट आंसर। दंगल मूवी की बात कर रहा था, दंगल का डायलॉग था। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है। निशा ने मेरे को सही जवाब दिया था और ये दंगल मूवी का आंसर है, जय माता दी कैसे हालचाल है। दुर्गेश भाई ने सही जवाब दिया है आज की सुबह। एंड मेरे पास जयप्रकाश पंडित जी सही जवाब के साथ जुड़ रहे थे। हमारे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हालचाल है। एंड ये मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है निकुंज भाई का, निकुंज जी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। क्या बात है निकुंज भाई, आपने जो फोटो शेयर की है ना, एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल पिक्चर यार, सो क्यूट बेबी। चलिए गौरव ठेलर जी जुड़े हैं नवीन नगर से, लिखते हैं, हाय आनंद भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप पेश करते हो, आपने आपको सुन के दिन बन जाता है भैया, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मैसेज पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है। आमिर खान की फिल्म का सही जवाब है ये, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, हाय तनिषा, थैंक यू। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक देवी, आदित्य कसाना, लतावली कारफूट से जुड़ रहे हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से सैयद अंसारी, डॉक्टर शेर शारी के लिए इरशाद हुसैन अंसारी साहब भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। हमारे पास उमेश कुमार प्रजापति जी जुड़ गए हैं आज की सुबह। दर्पण भैया जुड़े हैं सही जवाब के साथ। और ये मुंबई महाराष्ट्र से बबलू जी जुड़े थे, सुहानी शिवपुरी से जुड़ी थी। एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग जी, जय माता दी, कैसे हालचाल है। गागन से हमारे पास डॉली का मैसेज पहुंचा था, हाय डॉली, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। कश्मीर से मेरे साथ है कि हमारे मित्र जुड़े हैं, नफीस हरतला से जुड़ चुके थे राइट आंसर के साथ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है। हाय गुड मॉर्निंग जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी सत्यप्रकाश जी। रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाए विकी सागर ने, रिहाना जुड़ी थी मेरे साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। यू बली लिखते हैं, शो बहुत ही फैंटास्टिक है, जय माता दी आनंद भाई। ये हमारे साथ सुजीत भंडारी जुड़े हैं सहारनपुर से, जोन रोजी पलविलीज भी मेरे साथ जुड़े हैं। गाइस बहुत सारे मैसेज हैं, डीके अरोड़ा जी चंदन नगर से जुड़ गए हैं, अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ चुकी हैं। एंड निकुंज भाई थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इमोजी, बड़ी कड़क फील दे रहा है आज की सुबह। चलिए गाइस अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, होगी मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह से वेरी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। गाइस ऐसे मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, रेडियो बजाते रहो। बाकी डिटेल्स के लिए फॉलो कर लो हमें सोशल मीडिया हैंडल पे। मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वो है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और मेरा अकाउंट आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद के नाम से। गुड मॉर्निंग खुशी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। लाइन पार से उन्होंने सही जवाब दिया। चलिए गाइस बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, बाय।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा।
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
8: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हाल चाल है हमारी मुरादाबादीज, बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पता है पूजा अर्चना आराधना कर सब अपने कामों में व्यस्त होंगे और कुछ आराम से रेडियो सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं लेकर आई हूँ आपका अपना फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। मैं क्या जी, की हाल चाल। 10 दो मैंने वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:29 और 15 अक्टूबर की तारीख है। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है थर्सडे का, गुरुवार का दिन। दोस्तों देखिए, थर्सडे की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी को ढेर सारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस और नई उम्मीद के साथ बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज बहुत कुछ खास भी है। क्या है सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस ब्यूटीफुल सुबह में। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। आज हम माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप हमें ममता, प्रेम, धैर्य और विश्वास का संदेश देता है। आज माँ के चरणों में प्रार्थना करें कि घर में पीस और हैप्पीनेस बनी रहे, हर दिल में पॉजिटिविटी हो और हर इंसान को अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति मिले। और दोस्तों आप भी इस प्यारी सी सुबह में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। कुछ श्रोताओं को तो हमारा नंबर मतलब इस तरह से याद हो गया है ना कि वो आंख बंद कर भी नंबर डायल कर देते हैं। और कुछ अभी न्यू लिसनर्स हैं जिन्होंने अभी ऑन किया है एफएम मुरादाबाद सुनना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए हम नंबर बता देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस पर आप अपने मैसेज पहुँचा सकते हैं आज की सुबह। और हमारे पास यहाँ पर तमाम मैसेज आ गए हैं तो मैं बिना किसी देरी के ना उनको शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें संदेश मिला है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, प्रेम जमुना साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह छत्तीसगढ़ से। गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीक्षा का, ये भी हमें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचाती हैं। आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये भी सरगांव छत्तीसगढ़ से है, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का नमस्कार पहुँचाते हैं आज की सुबह। आपको भी नमस्कार सर। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आज की मॉर्निंग,

हाय, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? निशा जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से। और उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। ये संदेश कहाँ से हमें पहुँचाया है? ये मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद, नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का। और आज की सुबह ये भी हमें जय श्री राम पहुंचाते हैं। आपको भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। और कहते हैं मैम, कार्यक्रम आपका बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आता है ये। आप सबकी मोहब्बत के लिए हम दिल से सल्यूट करते हैं आपको। और इन्होंने एक थॉट भी शेयर किया आज की सुबह, उसको अभी लौट कर आते हैं तो शेयर करेंगे आपके साथ। आप भी कुछ पहुंचाना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के आप पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके सभी संदेशों को शामिल करूंगी। और कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट जो आपको लगता है कि हाँ हमारे और भी जो दोस्त सुन रहे हैं उन तक पहुंचे, तो डेफिनेटली आप पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल सुनो अभी एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। एंड ये गाना सुनने के बाद ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज की सुबह ना अपने श्रोताओं को थोड़ा थिरका देते हैं। देखिए हम तो आ चुके हैं भैया अभी मुरादाबाद की गली, और आपके घरों में भी हम आ चुके हैं। आपके रेडियो सेट के माध्यम से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, तो समझो हम आप ही के पास हैं।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने गाने में गाना सुना तो है जिसमें वेट की बात हो रही थी। मेरी भी एक फ्रेंड है एंड प्रिया, और दोस्तों वो क्या करती है आपको मैं बताती हूँ। वो सोचती है चलो भाई अब तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके सामने गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी, गोलगप्पे और कोई टेस्टी सा फूड आ जाए ना, तो सारी प्लानिंग को बाय बाय कहती है। और फिर वो उस पर ना मतलब कहते हैं कि भैया फिर वो खाने पीने में लड़की नहीं शर्माती है। और दोस्तों ये सिर्फ ना लड़कियों की कहानी नहीं है, एंड लड़के भी कम नहीं होते हैं। सोमवार को फिटनेस का प्लान बनाते हैं और शाम होते होते दोस्तों के साथ चाट पकौड़ी की पार्टी शुरू करते हैं, है ना होता है ना ऐसा। और बोलते हैं कि यार मैं कल से पक्का डाइटिंग करूंगा, मैं ऐसी चीजें नहीं खाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए खाना पीना ठीक है, लेकिन हाँ अपने फिटनेस का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जो फिट है वो हिट है, और कभी कभार खाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर आप ये चीजें खा रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा खाने पर भी लगाम लगाओ, कंट्रोल करो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ, और बाकी सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6। अभी यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर आया है मैसेज जी गौरव जी का, और मैंने कहा था ना कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा थॉट आज की सुबह शेयर किया है हमारे साथ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका थॉट। कहते हैं कि जीवन में मूर्ख को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए, जीवन में मूर्ख को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए, और मित्र को कभी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये तो सीधा साधा है, लेकिन वो दिल का साफ इंसान होता है जो आपके हर सिचुएशन में हेल्प करता है, मदद करता है आपकी, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हो, हैप्पी हो, सैड हो, या फिर कभी किसी इमरजेंसी में किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की, किसी भी नीड, कोई भी मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका दोस्त आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी मदद करते हैं। और कुछ लोग होते हैं उसी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी दोस्ती ना कहीं नहीं मिलती है। जो इंसान शिद्दत के साथ, अच्छाई के साथ रिश्ता निभाता है, तो उसे कभी भी बेवकूफ़ मत समझिएगा। और बाकी यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज हमारे पास किन का आया है ये भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास अगला मैसेज जो हमें मिला है यहाँ पर, खुशी जी कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है आपके, बहुत ही अच्छे हैं हम तो, उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और ये कहते हैं एक गाना सुनना चाहते हैं, मोहसिन अंसारी जी एंड साथ में शाहिद अंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आया है। बनारस से अपना मैसेज आज की सुबह पहुंचाते हैं, और इन्होंने कुछ लाइनें भी यहाँ पर हमारे साथ मतलब हमें भेजी हैं, तो हम आप सभी को सुना देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी इन्होंने लिखी है लाइनें कि गुलाब खिलते रहें जिंदगी राहों में, गुलाब खिलते रहें जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में, खुशी की लहर मिलती है हर कदम पे आपको, खुशी की लहर मिले हर कदम पर आपको, देता है ये दिल दुआएं दुआएं बार बार आपको। क्या बात है जी, छा गए हो आप तो, सुबह सुबह ना सोना मैसेज भेज के ना मेरा दिल ही खुश कर देता तुसी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें रिहाना जी पहुँचाती हैं आज की सुबह रानी नागल से। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको मी डियर। और इन्होंने एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, हम बिल्कुल सुनवाएंगे आपको डियर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, वेरी गुड मॉर्निंग। निखत फातिमा जी हमें मैसेज पहुँचाती हैं, कैसी हैं आप, बहुत अच्छे हैं, आप सबका प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, और माता रानी जी की कृपा हमेशा सभी पर बनी हुई है, तो क्या हो सकता है। हाँ जी, और देखिए दुख सुख तो जीवन में चलते रहते हैं, ये जिंदगी के दो पहलू हैं जो बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, लेकिन हाँ आपको पेशेंस बनाकर रखना होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और ये कहती हैं आई लव यू डियर खुशी दी, आई लव यू टू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गी सैनी जी का और ये हमें मैसेज पहुंच रहे हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से और ये कहते हैं कि मैम माता रानी जी का कोई भी ट्रैक आप आज की सुबह सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सुनवाते हैं आपको, नेकी और पूछ पूछ ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए एवरीवन, मैं बस लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। अपने मैसेज लगातार यहाँ पर पहुंचाते रहिए, जो जिन्होंने पहुंचा दिया है वो थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आपका संदेश लौट कर आऊंगी तो शामिल करूंगी, और जिन्होंने नहीं पहुंचाया मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आप ना बेफिक्र होकर मैसेज पहुंचाइएगा, ठीक है, मैसेज करने का कोई टैक्स नहीं लगता है, तो जल्दी से मैसेज पहुंचाइएगा। नंबर मैं अगेन रिपीट करती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मुस्कुराने के लिए किसी ने मना किया है? पर इतना सोना सा आपका चेहरा है, क्यों इतना उदास होकर बैठे हो, थोड़ा मुस्कुरा लो जी।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 705070552।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश की प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु, शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
8: जब मातृ शक्ति सुरक्षित सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
7: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम, उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो गुड मॉर्निंग माय लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और वक्त हुआ है 11:01 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ उम्मीद की रोशनी कभी कम नहीं होती, और जहाँ सबूरी होती है वहाँ मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और आज हम श्रद्धा और सबूरी के संदेश देने वाले शिरडी साईं बाबा जी को नमन करते हैं। साईं बाबा जी की शिक्षा हमें प्रेम, दया, सेवा और इंसानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों आज साईं बाबा जी की पुण्यतिथि है। दोस्तों साईं बाबा जी का बहुत ही प्यारा सा संदेश है कि सबसे प्रेम कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और मुश्किल समय में भी अपना विश्वास बनाए रखिए। और दोस्तों आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, हर दिन बहुत स्पेशल होता है, बहुत खास होता है और हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक नया सवेरा, खूबसूरत सा दिन देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप लीजिए, किसी की मदद करें और किसी के चेहरे पर स्माइल लाएं और अपने व्यवहार में थोड़ी सी अच्छाई जरूर शामिल करें। इसी उम्मीद के साथ साईं बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में पीस, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी बनी रहे। और यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत संदेश भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम गुड, आप बताइएगा सर, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर निकुंज जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर कहाँ से आया है ये भी मैं जल्दी से शामिल करती हूँ, लेकिन निकुंज जी ने अपनी पूरी फैमिली को भी शामिल किया हुआ है और मुझे लगता है कि आप पूरे परिवार के साथ रेडियो की शो का आनंद ले रहे हैं। निकुंज जी ने मैसेज पहुँचाया है ट्रेडिंग कंपनी कटघर मुरादाबाद से और साथ में इनकी ब्यूटीफुल वाइफ भी हैं आयुषी एंड साथ में इनकी डॉटर है आराध्या और प्रगति, नाम बहुत ही प्यारे हैं दोनों के, आराध्या प्रगति। एंड नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमें पहुंचाते हैं एंड मेरी पूरी फैमिली को भी। तो आप सभी को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भरे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आई होप आपने भजन का आनंद लिया होगा और हमें भी बहुत पसंद आया सर, थैंक यू सो मच अपना लवली मैसेज पहुंचाने के लिए आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का और साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपको भी थैंक यू सो मच, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है और हमें आप सब बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी ये शिद्दत, इतनी शिद्दत से आप जो मोहब्बत करते हैं ना एफएम मुरादाबाद से, हर एक कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, फटाफट से मैसेज पहुंचा देते हैं, ये जो आपकी एफएम मुरादाबाद से दिल लगी है ना, अमेजिंग। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो खुशी जी, जय माता दी, कैसे हैं आप, देखिए बहुत अच्छे हैं, आपको आवाज से लग ही रहा होगा, खुशी तो खुश रहती है हमेशा। और बाकी यहाँ पर इन्होंने कुछ और लिखा है बड़ा खूबसूरत सा, सुजीत सिंह जी ने हमें मैसेज पहुंचाया है मुरादाबाद से और कहते हैं कि आपकी स्वीट आवाज मुरादाबादी के दिलों पर राज करती है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें आज की सुबह पहुंचाती हैं मीनाक्षी अग्रवाल गांधीनगर से, गुड मॉर्निंग हमें आज की सुबह विश करती हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम,
तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौटकर खुशी आती है करेगी आपसे बहुत सारी बातें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है, तो सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है ना। वैसे आप भी अपना ख्याल रखिए, ठीक है, पानी पीते रहिए और बाकी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। चेहरे पर स्माइल ना कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ बहुत प्यारा लगता है।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आज श्रीनी शाही बाबा जी की आज पुण्यतिथि है और हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। और अभी हम आपको एक अपडेट से रूबरू कराते हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, एंड उम्र नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों तो छोटी उम्र में भी बड़ी मिसाल कायम की जा सकती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मथुरा की कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा तनीषा की, जिन्होंने मिशन शक्ति के तहत एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को करीब से समझा। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने का हौसला बढ़ाना है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य के सपने देख रहे होते हैं, उस उम्र में तनीषा को जिम्मेदारी निभाने का अनुभव मिला, ये अनुभव उनके लिए कितना खास रहा होगा ना। और बहुत ही खूबसूरत सी बात भी है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और दोस्तों, इस खबर से हमें भी यही सीख मिलती है कि बच्चों को सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सपनों को पूरा करने का मौका भी देना चाहिए। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर जो खूबसूरत संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। मुझे पता है आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, गुड मॉर्निंग जिला रामपुर से, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं जिला रामपुर के टाना से मोहम्मद कामिल जी, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं लाइबा काजमी। और साथ में यहाँ पर इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। और इन्होंने साथ में एक शायरी भी लिखी है कि कितना प्यार है तुमसे ये जान लो, कितना प्यार है तुमसे ये जान लो, तुम ही जिंदगी हो मेरी इस बात को मान लो, तुम्हें देखो, तुम्हें देखने को मन मेरे पास कुछ भी नहीं है, अच्छा तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक जान है, जब चाहे मांग लो। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शायरी है आपकी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी आज की सुबह में संदेश पहुंचाते हैं। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं अभी कुछ खूबसूरत गाने, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मजा आएगा, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

देखिए दोस्तों, प्यार तो हम बहुत ज्यादा आप सभी से करते हैं और आप सभी हमसे करते हैं, नो डाउट। लेकिन हाँ, मैं ना आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप अपने मैसेज हमें पहुँचाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप सडनली बहुत सारे मैसेज करने लगते हैं कि मैम प्लीज़ हमारा मैसेज शामिल कीजिएगा। तो सर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सभी के मैसेज को टाइम पर मैं रीड करूँ, एंड जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है मैं सभी को प्ले करने का पूरा प्रयास करती हूँ एंड मेंटेन करने की सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारी चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि आपके ट्रैक को भी प्ले करना है, एड ब्रेक भी, न्यूज़ भी, अपडेट भी, सारी चीज़ों को हमें मेंटेन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए ना। हाँ चलो दोस्तों, अब हम ना आपसे एक सवाल मालूम कर रहे हैं, एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आज की सुबह, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी ऑडियंस हमें सुन रही है, इस सवाल का जवाब ना सभी के पास होगा, ठीक है। तो सवाल मेरा जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है? आप अपना सही जवाब पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो हम भी जरा जान लेते हैं कि कितने हमारी जो ऑडियंस है वो सबसे पहले कौन हमें इस सवाल का जवाब पहुंचाते हैं आज की सुबह। जब तक आप अपने सवालों हमारे सवाल का जवाब पहुंचाते हैं, आंसर पहुंचाते हैं, तब तक हम यहाँ पर जो संदेश आए उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वक्त भी ये कैसा कहते हैं कि वक्त भी कैसी पहली दे गया, उलझन को जिंदगी, समझने को उम्र दे गया। जयप्रकाश पंडित जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, बुद्धि बिहार कॉलोनी मुरादाबाद से। और अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट भेजी है सर ने। बिल्कुल सर, मैं प्ले करूंगी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रामपुर से शबनम जी का, साथ में लाइबा काजमी है, अफरोज फातिमा है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और साथ में इन्होंने लाइनें भी लिखी हैं कुछ कि डर है आग से कहीं जल ना जाए, डर है कहीं आग से जल ना जाए, डरते हैं ख्वाब से कहीं टूट ना जाए, लेकिन सबसे ज्यादा डरते हैं आपसे कहीं आप हमें भूल ना जाए। अरे ना ना ना ना, ये कभी ना होगा, कतई नहीं होगा, ये हम कैसे आपको भूल जाएंगे। हाँ, इतनी प्यारी लिस्नर है आप हमारी, थैंक यू सबनम जी अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नई मूल अक्रम जी सिरसा दोराहा से अपना संदेश पहुंचाते हैं आज की सुबह। और उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आजाद नगर करूला मुरादाबाद से शैयद शारिक अली जी, साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शाद अंसारी जी, और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, तेरी गलियों में आवारा शाम हूँ, अमेजिंग ट्रैक। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, आज की मॉर्निंग, ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो एवरीवन, आपने मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है अभी तक, जल्दी से अपना सही जवाब हमें पहुँचाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपना सवाल हमारे सवाल का जवाब भी पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए अभी एंजॉय कीजिएगा एक अमेजिंग ट्रैक ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। गुड मॉर्निंग।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और मुझे पता है कि आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद सिटी में क्या चल रहा है और आज का वेदर कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौसम की कि आज मुरादाबाद के मौसम का कैसा हाल रहने वाला है, कैसे मिजाज रहने वाले हैं। दोस्तों, आज का मुरादाबाद का जो तापमान है ना, वो रहने वाला है 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर में हल्की बारिश या गरज के साथ, हल्की मतलब वो कहते हैं ना बूंदाबांदी, वो हो सकती है। नमी के कारण उमस भी महसूस हो सकती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे अपडेट भी आपको मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है और त्योहारों को देखते हुए वाराणसी जम्मू तवी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन 19 अक्टूबर की रात 2:50 पर मुरादाबाद पहुंचेगी। और दोस्तों देखिए, साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकी, देर तक एक युवा ने 6,22,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉल आए अनोन नंबर से, तो कोई भी आपको कुछ भी डराए धमकाए कुछ भी बोले, तो आपको डरना नहीं है एंड आपको सतर्क रहना है। और अगर कोई भी आपके फोन व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी अनजान लिंक आए, तो उसको उस पर तुरंत टैप ना करें, तुरंत क्लिक ना करें, ठीक है। इन चीज़ों से अपडेटेड रहें। और अपने आपके घर में छोटे बच्चे भी होते हैं जो मोबाइल चलाते हैं अक्सर, उनको नहीं पता होता है, गेम्स वगैरह खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं या फिर स्टडी की वजह से भी फोन चलाते हैं, तो बच्चों को भी इन चीजों के बारे में आप बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं रामलीला अपडेट की। देखिए, शहरों के विभिन्न रामलीला जो है ना मैदानों में भगवान श्री राम की लीलाओं का मंच जारी है। तो आप भी हमारे नियर बाय रामलीला ग्राउंड में भी रामलीला देखने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रामलीला चल रही है और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर आइएगा। और मैंने आपसे आज की मॉर्निंग नहीं क्वेश्चन पूछा है, याद है ना आपको, भूले तो नहीं है ना आप, वेरी गुड, नहीं भूले। हाँ जी, तो देखिए जो आज की सुबह मेरा क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन मैंने आज की मॉर्निंग पूछा है आपसे। दोस्तों, मैंने मालूम किया है कि भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है। अपना सही जवाब हमें पहुंचाइएगा। वैसे हमारे पास बैक टू बैक बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे और भी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, शायद उनको भी मिल जाए गरबा पासेज और वो भी करें डांडिया गरबा, एंजॉय करें फेस्टिवल सीजन को। तो आप भी आज की सुबह हमारी इस शो में पासेज जीत सकते हैं, गरबा पासेज। तो उसके लिए आपको मैसेज तो करना होगा ना, अपना सही जवाब पहुंचाना होगा। तो बिना किसी देरी के पहुंचाइए अपना सही जवाब और हम आप तक पहुंचाते हैं एक हरियाणवी ट्रैक। इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है उमेश जी ने। तो चलिए अभी वन सुन लेते हैं ये ट्रैक, उसके बाद में लौट कर आती हूँ। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए। क्या बोला आपने, गुनगुनाते रहिए, वेरी गुड। तो सुनिएगा ये खूबसूरत सा गाना, मैं बस वापस आती हूँ अभी।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों एक और अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे हाथ में आने वाले एक रुपए के सिक्के को बनने में सरकार को कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रुपए का सिक्का बनने में लगभग 1.11 रुपए खर्च होते हैं, यानी एक सिक्के की फीस वैल्यू जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं उससे भी ज्यादा उनकी निर्माण लागत कहते हैं लागत बताई गई है। और इसकी जानकारी के अनुसार 2 रुपए के सिक्के को बनने में लगभग 1.28 रुपए 5 रुपए के लिए 5 रुपए के सिक्के में 3.59 रुपए और 10 रुपए के सिक्के में लगभग 5.54 रुपए की लागत बताई गई है। है ना दोस्तों, दिलचस्प जानकारी है ना। हम रोज इन सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन्हें बनाने की लागत के बारे में शायद ही कभी सोचते होंगे।

तो अगली बार जब आपकी जेब में ना खनखनाता हुआ सिक्का अगर आपके हाथ में आए तो उसे छोटी सी इंटरेस्टिंग सी जानकारी को जरूर याद कीजिएगा। और आपको पता है आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो एक दो रुपए तो लेते ही नहीं है। एक दो रुपए अगर देने की हम मतलब कोशिश करते हैं तो बच्चे ना मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो सीधा 10 रुपए का सिक्का चाहिए। और आजकल के बच्चे 10 रुपए का सिक्का लेते हैं तभी वो मानते हैं। 1 रुपया 2 रुपए तो अगर दो भी ना तो वो रिटर्न वापस कर दे देते हैं कि आप ही रखो। लेकिन दोस्तों आपको पता है कहीं जब हम फंक्शन में जाते हैं एंड जब हम शगुन का लिफाफा देते हैं तो वहां 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर शगुन होता है 1100 का, 2100 का, 101 रुपए का, 101 रुपए, 21 रुपए, ये बहुत ज्यादा यू नो 1 रुपए का बहुत अहम रोल होता है। अगर 1 रुपया नहीं वहाँ पे इंक्लूड करोगे ना तो पैसे अधूरे रह जाएंगे, चाहे आपके वो 1100 हो या फिर 101 रुपए हो। तो इस 1 रुपए के सिक्के को ना संभाल के रखा करो अगर आपके पास भी है तो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वन सेकेंड रिपीट करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने सही जवाब पहुँचाए, पार्टिसिपेट किया है। और आज की मॉर्निंग मैंने आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था। मैंने आपसे मालूम किया था कि भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है। और इसी का सही जवाब हमारे तमाम श्रोताओं ने पहुंचाया है, लेकिन विनर तो एक ही बनेंगी। और विनर बनाने से पहले ना हम क्या करते हैं, आपकी जो टेक्स्ट मैसेज आए हैं ना उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ ताकि हमारे वो दोस्त भी नाराज ना हो। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, हाय खुशी दी, गुड मॉर्निंग। शाकिब जी का मैसेज हमारे पास आया है, पर इन्होंने कहाँ से मैसेज हमें पहुंचा है ये तो नहीं बताया है। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, हाय क्यूटी जी, कैसे हैं आप, केम छो मजा मा, हाँ जी बहुत अच्छे हैं। अफरोज जी हमें मैसेज पहुंचाती हैं। और साथ में इनकी दोस्त भी हैं, लाइबा हैं एंड नजमा हैं, शबनम जी हैं, बिग थैंक यू पहुंचाती हैं। और एक गाने की रिक्वेस्ट भी भेजिए, हम जरूर प्ले करेंगे। अगला मैसेज हमारे पास आए, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। ये मैसेज हमारे पास हरीश कश्यप जी का है, बैंक कॉलोनी मुरादाबाद से, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना मैसेज पहुंचाया है। एंड आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये कह रही है, मैम मेरा नाम खुशी है और मेरा एड्रेस है लाइन पर। खुशी मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आपका मैसेज जो यहाँ पर आया है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर मिला है, अस्सलाम वालेकुम खुशी जी, कैसी हैं आप। वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ मैम। ये नेहा जी हमें मैसेज पहुँचाती है मुरादाबाद से, कहते हैं कि मैम मैं आपको रेगुलर सुनती हूँ पर मैसेज नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं मैम, जब आपको समय मिलता है तो आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसके लिए बिग थैंक यू। और ये गाना सुनना चाहते हैं, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। अरे आप तो क्वीन है मैम। और अगले मैसेज हमारे पास आया, हेलो दी कैसे हैं आप, मैं तो ठीक हूँ जी। नैना जी ने मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाया है आज की सुबह। और अब हम बात कर लेते हैं जो आज के शो के हमारे कौन बनते हैं विनर, एंड जल्दी से बिना किसी देरी के विनर बनाते हैं एक बड़े ही जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब पहुंचाया है आज की सुबह। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं मैसेज पहुँचाया है आज की मॉर्निंग,

अदिति कश्यप जी ने मैसेज हमें पहुंचाया है आज की मॉर्निंग, एंड सबसे पहले इन्होंने दिया है सही जवाब और ये बताती हैं राइट आंसर। तो मैं दोस्तों आपको भी बता देती हूँ, मैंने जो आज की सुबह सवाल पूछा था उसका सही जवाब अदिति कश्यप ने हमें पहुंचाया है। अदिति आप बनते हैं आज की सुबह हमारे शो के विनर, एंड इन्होंने सही जवाब पहुंचाया है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, आज इनकी जयंती है। दोस्तों 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती मनाई जाती है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर भी अपनी मेहनत, लगन और ज्ञान से असाधारण मुकाम हासिल किया जा सकता है। कलाम साहब का युवाओं को संदेश था कि बड़े सपने देखिए, ज्ञान हासिल कीजिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कीजिए। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए खूबसूरत सी बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, सपने बड़े रखिए, सोच सकारात्मक रखिए और मेहनत इतनी कीजिए कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हमारे पास यहाँ पर तमाम मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ, सभी के संदेशों को शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर उमेश कुमार जी ने भी हमें सही जवाब पहुँचाया है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैसेज हमें पहुँचाया है यहाँ पर गौरव फिलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से, ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नईमूल अकरम जी का सिरसवदोराहा से, और सर भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। निशा जी ने भी सही जवाब पहुंचाया है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या हाल है आपके, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी, हम आपका शो एंजॉय कर रहे हैं और साथ में कुछ दोस्त भी हैं हमारे। अरे वाह, दोस्तों के साथ शो सुनने का तो मजा ही कुछ और है। कहते हैं खुशी जी काम की व्यवस्था ओके, बिजी की वजह से बिजी थे आज, थोड़ा काम है तो मैसेज लेट कर पाए, बट कोई बात नहीं, देर से आया है, दुरुस्त आपका संदेश हमें मिला है। थैंक यू सो मच, आप हमारा शो सुनते हैं और अपना खूबसूरत संदेश आपने हमें पहुंचाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका सर। ये आसिफ जी हमें इटली से मैसेज पहुंचाते हैं, हमारे रेगुलर लिस्नर हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमें शमा जी पहुंचाती हैं रामपुर से, शमा थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए डियर। और एवरीवन आप सब ने आज की मॉर्निंग बहुत ही यू नो अच्छे अच्छे सही सही जवाब आपने पहुंचाए हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है। और आज की मॉर्निंग मैंने आपसे बताया कि आज की सुबह हमारी विनर बनती हैं अदिति कश्यप जी, नवीन नगर मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाती हैं। तो आपको मिलते हैं गरबा पासिस, आप जा सकते हैं डांडिया नाइट में, एंजॉय कर सकते हैं डांडिया गरबा में, एंड 24 को ये होने वाला है और आपको इसकी पासिस भी मिलने वाले हैं डियर। तो हमारी ओर से आपको कॉल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, लगातार सुनते रहना है फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये जोरदार तालियां आप सभी के लिए।

0: तो सारी अनु बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे अच्छे यू अपने आंसर सही आंसर पहुँचाए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन। और अतिथि को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलते हैं आज गरबा पासिस मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि आज आपने पासिस जीते हैं और आप डांडिया नाइट में सेलिब्रेट कर सकते हैं, गरबा कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो एवरीवन अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं आपसे मुलाकात करूंगी, सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वेन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
1: जब मातृ शक्ति सुरक्षित

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं हूं आपका रेडियो वाला आनंद और आप सभी को कहता हूं एक बार फिर से नमस्कार। जितने भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, आपको बता दें आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसका नाम है खेती किसानी। और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है, हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही खूबसूरत एक ऐसे लेजेंड जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है। हाँ जी, लास्ट टाइम भी उन्होंने तमाम सारी जानकारी दी थी हमारे किसान भाइयों को, तो मैं एक बार उनके बारे में बता दूं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के सीनियर मैनेजर श्री एके सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे
1: आनंद जी
0: में।
1: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुनेंगे और या सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा चंबल फर्टिलाइजर की ओर से और मेरी ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार।
0: क्या बात है सर, आपकी आवाज़ सुनते ना मतलब ऐसे मुझे पुराने वाला अपना आकाशवाणी रेडियो याद आ जाता है। उसमें वो कृषि जगत कार्यक्रम आता था ना, तो उसमें जो हमारे जो उद्घोषक होते थे बिल्कुल आपकी तरह एकदम ठहराव के साथ सारी बातों को मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना, जैसे ताकि हमारे किसान भाइयों को चीज समझ में आ सके। एक्चुअली
1: आराम से होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आगे बढ़ेंगे और आज हम श्रोताओं ढेर सारी बातें आपसे करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और सर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो अनिल सर, मैं सबसे पहले आपसे अपनी वार्ता के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का विषय बहुत खास रहने वाला है, भूमि स्वास्थ्य के सुधार के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे।
1: जी
0: तो सर, पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, इसके संबंध में आप जानकारी दीजिए जरा।
1: हाँ बिल्कुल आनंद जी, भारत सरकार और जो उर्वरक मंत्रालय हैं, अगर हम कहें तो भारत सरकार है, उनके अंतर्गत सारे ही मंत्रालय आते हैं, उनकी जो है सारी ही जिम्मेदारी है।
0: हाँ जी।
1: और उसमें खेती बाड़ी भी एक जो है अहम स्थान रखती है।
0: जी जी।
1: और क्योंकि खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, तो उर्वरक से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, सुझाव है, सलाह है, मार्गदर्शन है या सहायता है, वो किसानों को अच्छे से मिलती रहे, ये भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहता है। और जो इसी प्रयास के अंतर्गत अगर हम देखें तो जितने भी उर्वरक आज के समय में हमें उपलब्ध हो रहे हैं अपनी दुकानों पर,
0: जी जी,
1: वो सब भारत सरकार के द्वारा ही उपलब्ध होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब भारत सरकार सीधे तो नहीं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मांग जाती है।
0: हाँ जी।
1: हर एक सीजन की, जैसे कि हमारे यहाँ तीन सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद।
0: जी जी।
1: तो अभी क्योंकि रबी का सीजन आरम्भ होने वाला है, तो हर क्षेत्र से राज्य सरकार इकट्ठा करती है कि भाई कौन कौन सी फसलें लगेंगी और उसमें जो उर्वरकों की आवश्यकता है वो कितनी होगी और किस किस समय पे होगी, तो भारत सरकार उसकी संज्ञान लेती है और जहाँ जहाँ पर उर्वरकों का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर वो उसको एलोकेट करते हैं कि भाई आपने इस राज्य में अपनी फैक्ट्री से इतना उर्वरक इस समय पर इस स्थान पर भेजना है। अगर ऐसा लगता है भारत सरकार को कि जो मांग है हमारे जो सारे हिंदुस्तान की, उसमें अगर कोई और आवश्यकता है तो हम बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं। इम्पोर्ट मतलब अन्य जो उत्पादन के केंद्र है जो कि हमारे भारतवर्ष में नहीं है, जो कंट्री है उनमें है, वहाँ से लेकर आते हैं और समय पर जहाज आते हैं तो जहाँ हमारे पोर्ट है वहाँ पर वो उर्वरक उतरता है, उसकी पैकिंग होती है। और मैं एक चीज और बता दूं, अब जितने भी उर्वरक आ रहे हैं उस पे कोई ब्रांड नेम नहीं होता।
0: ओके।
1: आयतित जो कंपनी है उसका छोटा नाम होगा और जो है और जो उत्पादन है जहां उत्पादन हो रहा है उनका नाम होगा और सब जो चीजें होती हैं वो जो भारत सरकार के नाम से ही आती हैं। तो ये विशेष रूप से सभी किसान भाई ध्यान दें कि कोई ब्रांड नहीं है और उसके पीछे उद्देश्य भारत सरकार का ये रहा कि कोई खास ब्रांड को लेके अक्सर ऐसा होता, बोलते भाई ये तो फलाना ब्रांड है तो ये तो ऐसे ही बिकता है, वो चीज को उन्होंने खत्म किया कि क्योंकि सारे उर्वरक एक जैसे हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया अगर किसी भी कंपनी का आता है तो एक जैसा ही है, उसके अंदर उतने ही पोषक तत्व हैं, सभी के अंदर एक बराबर होते हैं। डीएपी आता है या कोई एनपीके आता है या अमोनियम सल्फेट आता है, तो उसके अंदर जो आपके पोषक तत्व है, चाहे वो ए कंपनी लाए या सी कंपनी लाए, पोषक तत्व उतने ही सभी में समान हो। तो ब्रांड के नाम पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है सुविधापूर्वक और समान जो रेट पर उपलब्ध होती रहे, इसलिए भारत सरकार ने ये प्रबंध किया। अब एक और खास योजना है जिसे हम पीएम केयर्स के बोलते हैं।
0: जी जी।
1: पीएम केयर्स के में अगर हम देखें तो भारत सरकार ने जितनी भी खाद के जो विक्रय केंद्र यानी खाद की दुकानें हैं,
0: जी जी,
1: उनको पीएम केयर्स के का नाम दिया है। इसके साथ साथ तो वहाँ पर वो जो दुकान है उसके ऊपर एक साइन बोर्ड भी होता है, इसमें पीएम केयर्स के लिखा होता है, प्रधानमंत्री जी का फोटो भी होता है। और वो इसलिए अहम हो गया है अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी हमारे किसानों को उपलब्ध होती हैं, जैसे खेती से संबंधित अगर उनको कोई सलाह चाहिए, जैसे कोई फसल उगानी है उसमें कौन सा बीज सबसे अच्छा है, कौन सा उर्वरक की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, कब कब उसका उपयोग करना है, इसके अलावा फसल में कोई अगर हरी बीमारी आ रही है, कीट आ रहे हैं या कोई रोग आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, अगर वो आ गया है हमारी जो मतलब खेत पे या मतलब फसल के ऊपर तो उसको कैसे जो है एक तरह से उसका प्रबंधन किया जाए जिससे कि हमारी फसल को नुकसान हो, ये सलाह मिलती है। और इन सलाह देने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि इनका साहित्य आपको मिल जाएगा, साहित्य मतलब जैसे लीफलेट होता है एक तरह से, कोई उस पर पूरी जानकारी लिखी होती है कि ये चीज है, ये उत्पाद है, ये इस चीज में पड़ेगा, ये खरपतवार नाशी है, इसकी इतनी मात्रा डालिए, इतना पानी मिलाइए, इस समय पर डालिए, तो ये पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध होता है, जैसे कि रबी फसलों के बारे में जानकारी है, वो राज्य सरकार की ओर से भी हो सकता है, या जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने अपने आदान लेके आती हैं उनके भी साहित्य होते हैं। तो ये एक तरह से स्थूल सलाह है, आप दुकान पर गए हैं और वो आपको उपलब्ध होगी, आपने वहां से ले भी ली और अपने साथ भी लेके आप आ सकते। इसके अलावा आज की तारीख में क्योंकि फोन का जो आपका समय है वो आप समय चल रहा है, इंटरनेट है, तो आप फोन के द्वारा भी ऑनलाइन भी बहुत सारी जानकारियां जो उपलब्ध हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और उनको देखकर आप समझें। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आदमी अपनी ओर से कुछ कह रहा है तो उसको ऐसे मान लें, उसको समझें जरूर, और अपने कुछ साथियों से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइटें जो कि भारत सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, कंपनियों की, वहां पर जो भी सलाह आपको दी जाती है वो पूरी तरह से प्रमाणिक हो, तो इस तरह से आपको सलाह मिलती है। दूसरा क्या है, संपर्क सलाह बोले हैं अगर हम इसको, तो संपर्क सलाह में ये है जो कृषि के वैज्ञानिक वो आपसे संपर्क करेंगे या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं और एग्रीकल्चर के स्कूल हैं, जो एग्रीकल्चर का जो जो, जो जो आपकी राज्य सरकार है उनका जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सभी जो है एक तरह से जानकार लोग हैं जो कि खेती के बारे में आपको और अधिक सही सलाह वहाँ से उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि हर सीजन में कोई न कोई योजना जरूर आती है, योजना से संबंधित जैसे कोई अनुदान की आपकी योजना है कि जैसे बीज पे अनुदान मिल रहा है या किसी जो जो उपकरण है उनका जो इस्तेमाल होता है उनके ऊपर भी अदला, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी जो अधिक चर्चा होती है आनंद जी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इतने लाख रुपए का एक यूनिट पे योगदान है, आप लगाइए, उसके लिए एक जो मतलब प्रोसीजर है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो आप उसका लाभ जो ले सकते हैं। तो पीएम केएसके के माध्यम से किसानों को सलाह और सही रेट पर उर्वरक और उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि ये जो पीएम केएसके की सेवाएं हैं इनका आप अवश्य लाभ उठाएं, जिनका खेती में लाभ होगा। और इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अगर कोई दुकानदार है जो आपको ये सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनसे अनुरोध करिए कि आप ये उपलब्ध कराइए, और जब आप उनसे कहेंगे तो वो जो भी और संसाधन है जहाँ से ये सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो अवश्य ही वहाँ से इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने का काम करें।
2: बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करी। और किसान भाइयों, ये जानकारी आपके लिए जानकारी नहीं है, वो चीज है जो आपको हमेशा उपयोग में आने वाली है, मैंने सही कहा ना एके सिंह जी?
1: जी बिल्कुल सही बात
2: जी। चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे सर, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा दूसरा, और आज के सवाल भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोताओं। अगला प्रश्न है हमारा एके जी से, प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप।
1: हाँ प्रधानमंत्री जी, ये सवाल अगर हम इस तरह लें कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में
2: जी जी
1: जो उर्वरक है उनके सही इस्तेमाल के बारे में कहा है, जो कि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो आपको इसी संबोधन में उपलब्ध होगी, उनका आपको उनका संबोधन उपलब्ध होगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी और स्पष्ट करना चाहूंगा
2: जी।
1: कि जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि हम देखते हैं कि कोई ने अगर अपने एक एकड़ खेत में इतना खाद डाल दिया तो मैं उससे ज्यादा डालूं तो मेरी फसल ज्यादा हो जाएगी, ये बहुत अनुचित है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि जैसे कि चार लोग रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं
2: जी जी,
1: हो सकता है उनकी उम्र एक हो, एक ही गांव से हो, लेकिन उनकी भूख अलग अलग हो सकती है,
2: बिल्कुल
1: उनके स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग हो सकती है, तो आप ये जब वो चार लोग हैं तो वो अपनी ओर से उनकी जो मतलब ऐसी कोशिश नहीं होती कि इसने अगर छह रोटी खाई है तो मैं भी छह खाऊंगा, वो देखते हैं भाई मेरा दो में पेट भर गया है और अब मैं नहीं खा सकता हूँ, तो वो रुक जाते हैं। लेकिन खेत के बारे में ये हम अगर कहें कि खेत में कोई आवाज तो सीधे आता नहीं है, तो हम देखते हैं कि जितना ज्यादा डाल देंगे उतना ज्यादा निकल आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, फसल उतना ही लेगी जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी वो बेकार चला जाता है।
2: सही बात है।
1: और जो चीज आपने जो पैसे से खरीदी है और वो बेकार चली जाए तो आप समझिए इसमें कौन सी समझदारी है।
2: बिल्कुल
1: कोई समझदारी। तो इसलिए उर्वरक का जो उपयोग है उसके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जितनी जरूरत है उतना डालिए, जब भी आप आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रासायनिक तत्व इनमें पोषण है और इनकी आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इनकी उतनी ही मात्रा डालें जो कि फसल को उसकी जरूरत। अब अक्सर सवाल उठ जाता है कि भाई उतनी मात्रा का कैसे अंदाजा लगे, तो इसका एक तो सीधा तरीका है कि आप खुद अपने यहाँ पे प्रयोग करें। जैसे सपोज आपके तीन खेत हैं या एक खेत के तीन टुकड़े कर लें, एक में आपने सपोज जो है उदाहरण लें एक बैग डाला, एक में सवा बैग डाला, एक एक में जो दो बैग डाला, अंतर देख लें। अगर एक बैग वाले में ही आपको अच्छी उपज मिल रही है तो फिर हम दो बैग क्यों डाल रहे हैं, एक ये तरीका है। दूसरा ये मिट्टी परीक्षण के द्वारा, आप जान सकते हैं कि हमारे खेत को मैं जो फसल में लेने जा रहा हूँ, जैसे कि मान के चले कि हम गेहूं की फसल लेने जा रहे हैं, उसका लगाने का समय हमें पता ही होता है, बीज की मात्रा पता ही है, तो प्रति एकड़ उसमें उर्वरक की कितनी जो आवश्यकता होगी। हम उदाहरण के रूप में ले लें कि यूरिया है, यूरिया की कितनी आवश्यकता होगी, तो जब मिट्टी की जांच होगी तो उसमें ये देखा जाता है कि खेत में कितने पोषक तत्व और फिर जो फसल हम ले रहे हैं उसको कितने पोषक तत्व चाहिए, तो उन दोनों का जब आकलन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक जो है जो सही मात्रा निकल के आती है कि गेहूं में कितना यूरिया हमें चाहिए, हम उसके हिसाब से चलें। तो ये दो तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। अगर मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध है आपके क्षेत्र में तो वो सर्वथा उचित है, उसको आप माने और उसके हिसाब से ही उर्वरक का उपयोग करें। तो आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि जो संबोधन है प्रधानमंत्री जी का
2: जी,
1: वो सभी किसानों को अवश्य सुनाए, उससे काफी उनको प्रेरणा मिलेगी। और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आपसे अनुरोध किया है कि आप उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो सही मात्रा में करें, क्योंकि जब भी आप अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे खेत की जो मतलब मिट्टी है उस पर बड़ा ही उसका खराब प्रभाव पड़ता है और खेत से संबंधित जितने जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है और अंतोगत है हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
2: पर फिर से स्टूडियो में एके सिंह जी मौजूद हैं। खेती के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, इस विषय में आज बात करेंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न होगा खेती के उत्पादन को बढ़ाने से क्या तात्पर्य है।
1: हाँ, अभी हम देखें तो भाई खेती का उत्पादन सभी चाहते हैं कि ज्यादा हो।
2: बिल्कुल सर,
1: लेकिन कैसे हो या उससे क्या तात्पर्य, आज के समय में ये जो मतलब विषय ये क्यों प्रासंगिक है
2: जी।
1: अगर हम देखें तो जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है और हमारी जो खाने की मांग है वो ज्यादा होती चली जा रही है। वैरायटी भी है उसमें, हमें अनाज भी चाहिए, हमें दूध भी चाहिए, हमें सब्जियां भी चाहिए, दालें भी चाहिए, फल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए,
2: सब कुछ चाहिए,
1: क्योंकि जागरूकता है, हम सब शिक्षित होते जा रहे हैं, तो संतुलित भोजन के लिए हमारी जिज्ञासाएं हमेशा रहती हैं और हम उनकी पूर्ति भी करना चाहते हैं। अब ये सब कहाँ से आएगा? भूमि के टुकड़े से ही आएगा, खेत की से ही हमें उपलब्ध होगा और किसान ही इसको उगाएंगे। अब इसके उलट अगर हम देखें तो परिपेक्ष ये है कि जो खेती से संबंधित जो जहाँ खेती होती है वो जमीनें भी धीरे धीरे कम, क्योंकि हमारे आवास की मांग जो है अधिक होती चली जा रही है। हमें ज्यादा मकान चाहिए, क्योंकि जो हमारे परिवार के लोग हैं वो अपना अलग मकान भी चाहते हैं।

0: अलग अलग हिस्से भी हो रहे हैं, तो उनको अलग घर चाहिए। अब घर कहाँ बनेंगे, वो भी खेती की जमीन ही लेंगे, तो वहाँ पर अब दोनों तरफ बोझ है कि आबादी बढ़ी, फैमिली साइज बढ़ा, तो खेती की जमीन के हिस्से हुए, टुकड़े हुए। तो जैसे पहले एक सज्जन थे, उनके पास 5 एकड़ जमीन थी, अब उनके 2 बेटे हो गए। अब जो 2 बेटे हुए हैं, अगर उनकी 5 एकड़ जमीन थी जो एक आदमी के पास थी, अब उनके पास 2.5 एकड़ होगी। अब मान के चले कि उनके भी जो पुत्र 1 के 2 हो गए, तो 2.5 के 1 के भी फिर टुकड़े हो गए, 1.75 एकड़ आ गई। तो खेती का आकार छोटा हो गया। अब उस छोटे आकार में से भी बहुत सारी जमीन है, जैसे हमारे हाईवे बन रहे हैं या मकान के लिए चाहिए, या बहुत सारे मॉल बन रहे हैं, शॉपिंग एरिया बन रहे हैं, उनमें कुछ हिस्सा चला जाए, तो जमीन का जोत का आकार धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है प्रति व्यक्ति। अब हर आदमी को भोजन चाहिए, चाहे वो शहर में रह रहा है, चाहे उसके पास खेती है या नहीं है। तो इसका क्या उपाय है कि हमें लगातार अपने जो फसलें हैं या जो सब्जियां हैं या जो फल हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि करनी हो, खेती में और ज्यादा सघनता लानी हो, और सघनता के साथ साथ हमें ऐसे उपायों का उपयोग करना होगा जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़े हिस्से से थोड़े समय में ज्यादा उत्पादन लेना होगा, और वो उत्पादन जो लेना होगा उससे हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी हो। तो ये समय की मांग है और इसकी हमें पूर्ति करनी होगी। तो अगर हम ये कहें कि उत्पादन हमें अधिक चाहिए या फसल उत्पादन बढ़ाना है, तो उससे तात्पर्य आज के समय में यही निकालना आता है कि हमें छोटे क्षेत्र से ज्यादा मात्रा में अच्छा फसल उत्पादन लेना आज की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे यहाँ कहीं न कहीं इसकी भोजन संकट की स्थिति में ज्यादा इजाफा हो सकता है या आ सकती है। अभी हम सबको अच्छे से मिल रहा है, भारत सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, राज्य सरकार है, उनकी पूरी निगाह रहती है, अच्छा सिंचाई का पानी हमें मिलता है, सारी चीजें हैं। तो इसके बाद भी हमें ज्यादा उत्पादन लेने के लिए प्रयास करना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि हमें, अब जैसे कि हम ये कहें कि भारत वर्ष में जो दालें हैं उनका उत्पादन अभी भी उतना नहीं है जितनी हमारी मांग, तेल के बारे में भी ऐसी, तो हमें देखना होगा कि हम इनकी कैसे पूर्ति कर सकते हैं। तो हम उत्पादन अपना बढ़ाएं और आत्मनिर्भर होने का, अनाज में हम आत्मनिर्भर हैं, बहुत सारी चीजों में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सा करना। ठीक है,
1: बहुत बढ़िया। सर एक और प्रश्न इसी बीच में मैं आपसे फटाफट पूछूंगा बिना किसी देरी के, खेती का उत्पादन बढ़ाना क्यों आवश्यक है?
0: हाँ, जैसा कि अभी बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैंने कहा भी कि हमारी एक तो जोत का आकार छोटा होता चला जा रहा है, तो जो खेती के अंतर्गत जैसे मान के चले उदाहरण के रूप में ले ले, पहले 100 एकड़ जो है जो हमारे पास जो स्थान था जहाँ खेती होती थी, अब वो हो सकता है कि उसकी जो रकबा है वो करीबन 85 एकड़ रह गया हो, तो करीबन 15% उसमें से हट गया। अब 15% जब हटा, तो आप मान के चलिए कि में जो उत्पादन उस समय अगर हम अच्छा उत्पादन जो ले रहे थे, उसमें जो कमी उतनी आपकी होनी चाहिए, लेकिन हमें उतनी कमी नहीं होने देना। उतनी कमी के साथ साथ भी हमें और ज्यादा वृद्धि करनी होगी। जो 100 एकड़ में होता था, अब वो 85 एकड़ में उतना तो लेना है और उससे ज्यादा भी लेना है, क्योंकि पहले अगर हमारी आबादी 100 करोड़ थी, आज की तारीख में लगभग भारत वर्ष की आबादी 150 करोड़ के आसपास होने जा रही है। आज की तारीख में क्योंकि संपन्नता धीरे धीरे अच्छी हो रही है, सारे लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो हर चीज को खरीदने की क्षमता रख, अच्छा भोजन उनको चाहिए, अच्छा पोषण उनको चाहिए। जैसा अक्सर होता है ना कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, रोग रहित रहना चाहते हैं, तो आप अच्छा पोषण जरूर लें, उससे बीमारियां कम आएंगी। तो हमें अच्छा भोजन चाहिए, अधिक मात्रा में भोजन चाहिए, क्योंकि हम अधिक लोग हैं, तो हमें इसकी आवश्यकता है कि हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, और जब हम इसके उत्पादन को अधिक करेंगे तो हमारी जो मांग की पूर्ति है वो अच्छे से हो जाएगी, और जो हमारे खेत का क्षेत्रफल अगर घट भी रहा है तो हमें उसका बोझ महसूस नहीं हो।
1: बहुत ही बेहतरीन, थैंक यू सो मच सर, आपने ये बहुत ही अच्छी जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों तक साझा करी। और इसी बीच एक और प्रश्न है, इन उपायों को किस तरह जो है उपयोग करें हमारे किसान भाई?
0: हाँ, अब ऐसा आता है कि भाई क्या करें हम जिससे हमारा फसल उत्पादन अच्छा हो और उत्पादन हमारा बढ़े। आपने देखा होगा कि खेती में जो अनाज हो रहे हैं वो भोजन के रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में भी आजकल उनका इस्तेमाल होने लगा है।
1: गॉट इट, सही कहा सर।
0: इथेनॉल बनता है, मक्का से बन रहा है, चावल से बन रहा है, गेहूं से भी बन जाता है। बहुत सारे जानवर हैं, उनके फीड होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। कुछ ज्यादातर हमारे इस्तेमाल होते हैं, कुछ बाहर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इम्पोर्ट भी करते हैं। सोयाबीन का है तो आप ये मान के चले, अच्छा बहुत से जैसे सोयाबीन का है, सोयाबीन से बहुत सारी चीजें जो ऐसे उत्पाद बनते हैं जो अनाज के रूप में नहीं समझे जाते लेकिन होता है, उससे तेल भी बनता है, प्रोटीन के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो हम ये कहें कि अब ये सारी चीजें कैसे बढ़े, तो उसके लिए हमें ऐसी खेती करनी होगी जो सघन हो। अब बात ये आ जाती है कि सघन खेती के बारे में तो हम कहते हैं कि हम अपने खेतों को आराम भी देते हैं। नहीं, आराम भी देना है लेकिन फिर भी सघन खेती हो सकती है। सघन खेती कैसे हो सकती है, जैसे कि हमें चार फसलें लेनी है तो वो चार फसलें हमें 8 महीने में या 9 महीने में लेनी है, है ना, या 11 महीने में ले, 1 महीने के लिए हम आराम देंगे खेत,
1: आराम देंगे बिल्कुल।
0: तो हम ऐसी व्यवस्था करें कि एक फसल हमारी तैयार हो रही है जो कि मतलब कटाई के लिए तैयार, और उसी खेत में दूसरी फसल भी हमारी लग गई है, उपज हो जो उसका अंकुरण हो गया और वो तैयार होने की वो करीब करीब 20-25 दिन निकाल चुकी है, ऐसा भी संभव है। इसको ऐसी व्यवस्था कह देते हैं जैसे कि कोई फसल आपकी जो है जो पकी हुई तैयार है उसी बीच में आपने बीज का इस्तेमाल कर दिया उस खेत में और अगली फसल उगने लगी और जो फसल लगी थी उसकी कटाई करके आप अपने घर ले आए, ऐसा किया जा सकता है, सघन खेती में आता है। इसके अलावा अंतर्वर्ती फसलें होती हैं, जैसे कि एक तरफ आपने कुछ जो नालियां अनाज की लगाई है तो उसी के बीच में कुछ सब्जी भी लगा दी है, अंतर्वर्ती फसल है, उससे भी हमें ज्यादा उत्पादन मिलता है और एक से ज्यादा फसलें हमें उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरा, हमें ऐसे बीज इस्तेमाल करने होंगे जिनसे हमें ज्यादा उत्पादन मिलता है। पोषण हमें ऐसा इस्तेमाल करना होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे जो खेत है वो ताकत जो एक तरह से ताकतवर रहे, स्वस्थ रहे और फसल अच्छे से पोषण लेके अपना अच्छे से विकास कर सके। अब इसमें आधुनिक तकनीकी भी जाती हैं। आधुनिक तकनीकी में जैसे मान के चलें कि खड़ी फसल में अगर उर्वरक का इस्तेमाल करना है तो हम जैसे कि स्थूल रूप में उर्वरक को फेंकते थे, उसका जो उर्वरक है अपना फेंका, लेकिन अब हम क्या करें, उसके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं घोल के उर्वरकों का, ऐसे उर्वरक आते हैं, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी हमें अधिक मात्रा में चाहिए तो उसके लिए पानी कम है तो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल, ये सारे संसाधन उपलब्ध है, इन पर राज्य सरकारें छूट भी देती हैं, अनुदान भी देती हैं, तो हमें अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा जब टेम्परेचर अधिक होता है तो उसकी जो है आपकी एक तरह से जो है सूरज की रोशनी उसको रोकने के लिए शेड भी बनाए जाते हैं और जो है ऐसी व्यवस्था होती है कि वो एक सही अवस्था तक उग जाती है और जब वो अच्छी हाइट ले गई या उसका अच्छा आकार हो गया उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इन सारी तकनीकों का प्रयोग भी हो रहा है, उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा सघनता की जरूरत है। अगर आप देखें तो आज सीजन के फल खूब मिलते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, तोरई, खीरा, ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं और सीजन में भी मिलती हैं। कैसे मिलती, क्योंकि लोग इन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, इनको अजमा रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, आर्थिक लाभ भी होता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है और सबको अच्छे से भोजन मिल रहा है और पोषण मिल रहा है और खेती का प्रयोग हो रहा है। नहीं तो एक समय सभी लोग सोचते थे कि अगर ये खेती की जो खेत है इनमें अगर मकान बन गए, हाईवे बन गए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, लोगों ने इसको जो जिम्मेदारी को समझा, उस पर काम किया। तो मेरा कहने का मतलब काम हो रहा है लेकिन और अधिक इसमें सघनता की आवश्यकता, और ज्यादा इसमें विचार करने की जरूरत है कि हम और ऐसे संसाधन अपनाएं जिससे कि उत्पादन हमारा और ज्यादा बढ़े, लेकिन साथ के साथ खेती का जो पर्यावरण है उसको कोई नुकसान न हो, खेत का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जल के संसाधन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतने ही हो लेकिन उनको इस ढंग से प्रयोग करें कि जिससे कि उनके कम इस्तेमाल से भी हमें ज्यादा फसलें मिल जाए, ज्यादा उत्पादन हमारा हो सके। जैसे कि मैंने उदाहरण के रूप में कहा था एक बार कि हम खेत में पानी लगाना है तो रात को छोड़ के चले आए और सुबह गए तो वो ट्यूबवेल भी चल रहा है, पानी भी फैल रहा है, ये बहुत नुकसान की बात। आप अगर हिसाब लगाते तो पूरी फसल पक जाती इसमें इतने ही पानी में, लेकिन आपने सिर्फ एक बार सिंचाई दी, कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ आप सोचिए कितनी कीमत होती है कि भाई एक घंटे के लिए आप पानी दे रहे हो तो मैं इतने पैसे आपसे लूंगा।
1: सच में
0: आदमी बिल्कुल अलर्ट खड़ा रहता है, एक बूंद पानी भी इधर से उधर वो नहीं होने देता। आप ऐसे क्षेत्रों में जहाँ या जहाँ जाए वहाँ क्यारियाँ इतनी छोटी छोटी बनाते हैं, क्यों कि जैसे ही वो भरी दूसरी में दे दिया जैसे, तो वो पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, कम पानी में फसलें हो जाए। तो हमें बहुत सारे ऐसे सारे समग्र जो उपाय हैं उनको अपना पड़ेगा। सघन खेती है, अंतर्वर्ती फसलें हैं, फसल चक्र है, अच्छे बीज हैं, अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा, और दवाइयों का तो मैं कहता हूँ हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे कि रोग बीमारियाँ कम से कम आए, बीज का उपचार हम करें, और इसके अलावा हम जो पौध लगा रहे हैं उनका उपचार कर लें तो रोग नहीं आता है। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम अगर करेंगे तो ये हो जाए।
1: किसान भाइयों, आपके काम की बात हो रही है, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद, और हमारे बीच स्टूडियो में आज मौजूद हैं चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के सीनियर मैनेजर एके सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ढेर सारी बातें हो रही हैं, और इसी बीच सर आखिरी प्रश्न होगा मेरा आपसे।
2: जी
1: जी सर, मेरा आखिरी प्रश्न है, खेती का उत्पादन बढ़ाने से क्या लाभ होगा?
0: हाँ, उत्पादन बढ़ाने से क्या लाभ होगा?
1: जी,
0: लाभ अगर हम गिने तो हम सभी को अच्छा भोजन मिलेगा, और जितना चाहिए उतना मिलेगा, किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं होगी, चाहे वो लोग शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं, सभी को अच्छे से मिल सके। अब आप कहीं कोई चीज लेने जा रहे हैं, आपने कहा मुझे 5 किलो चाहिए, 5 किलो मिल गई, 20 किलो चाहिए, 20 किलो मिल गई, ठीक है, कोई कमी नहीं होगी, अच्छा भोजन मिलेगा, स्वास्थ्य वर्धक होगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छा, ये तो एक समग्र रूप में बात होगी। सीधा इसका अगर फायदा देखें कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में चीज की गई थी कि किसी के पास 5 एकड़ थी, 2 बेटे हुए, 2.5 एकड़ हुई, उनके फिर इतने ही बेटे हो गए, 2 हो गए, 1.25 एकड़ हो गई। अब जो 5 एकड़ वाले की आमदनी थी वो 1.25 एकड़ वाले की होनी चाहिए,
1: होनी चाहिए
0: अगर, और उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब खर्चे ज्यादा है, फैमिली का खर्चा उतना ही है, बाहर के खर्चे ज्यादा हो गए, पहले जीवन थोड़ा सा सीमित सा था तो उतने खर्चे नहीं होते थे, तो 1.25 एकड़ में भी वो उतने से ज्यादा कमा सकेगा, ऐसी पूरी संभावनाएं होती हैं, लोग कमाते हैं। तो जब आप अच्छा उत्पादन लेंगे तभी कमा, और उत्पादन जब लेंगे, जब आप अच्छे उत्पादन से संबंधित सारे उपायों का उपयोग करेंगे, सघन खेती करेंगे, अंतर्वर्ती फसलें उगाएंगे, सिंचाई के जो आपका पानी उसका सही, आजकल तो मैं बताऊं आपको स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, वो इस तरह के हैं, टाइमर लग जाते हैं कि इस समय पर मेरे को ड्रिप स्टार्ट करनी है, आपके फोन में ऐप होती है, उसके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: खाद उसके द्वारा जो आपका इस्तेमाल हो जाता है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल हो जाता है, कोई अगर रोग आ रहा है तो उससे संबंधित अगर आपको कोई फफूंद नाशी का प्रयोग करना है तो वो उसमें प्रयोग हो जाता है, इतने सारे साधन हैं। अब इसमें एक मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, रकबा कम होने के क्या फायदे हो सकते, छोटी जगह है तो उसमें आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाती है, सिर्फ आपको तकनीकी का अगर आपने इस्तेमाल किया तो ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। जैसे मान के चलो कि 1.25 एकड़ के आपने 4 हिस्से कर लिए या 3 हिस्से कर लिए, है ना, 3 हिस्से में आपने 3 फसलें लगा ली, किसी में आपने कोई सब्जी लगा ली, किसी में कोई और चीज लगा ली, किसी में छोटा अनाज लगा लिया अपनी मांग के अनुसार, या कोई असाले मसाले वाली जो आपकी जो है जैसे जीरा है, सौंफ है, ऐसी चीजें आपने लगा ली, तो उनको संभालने के लिए आप छोटा क्षेत्र है तो आसानी से आप उनको संभाल सकते, उनमें जैसे कि पानी उड़े नहीं ज्यादा, उसके लिए आपको फूस बिछाना है नीचे, 1 घंटे में 1 क्यारी में या 2 क्यारी में आप आराम से ये काम कर सकते हैं, खरपतवार निकालने खुरपी से निकाल सकते हैं, आप उस खेत में जो फसल है उसको अच्छे से देख पाएंगे कि कोई बीमारी कीड़ा तो नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं है, आपको कोई स्प्रे करना है तो एक छोटी सी टंकी लेके जाएंगे आप, 1 घंटे में सारा निपटा के चला आएंगे, है, तो ये थोड़े थोड़े से है, सकारात्मक है, और कोई एक आदमी ही संभाल सकता, क्योंकि जब बहुत लंबा होता है तो बोलते यार इसके लिए तो 5 आदमी जो लगेंगे तो यार मैं अकेला क्या करूंगा, लेकिन जब बहुत छोटा होता है तो यार मैं अकेला कर सकता हूँ इसको, और वो आराम से आप जो कर पाते हैं, तो ये फायदे नुकसान दोनों हैं, लेकिन अगर इनको समग्र रूप में हम लेंगे तो ये संभावनाएं, क्योंकि अब क्षेत्र कम है ये हकीकत, लेकिन संभावनाएं जो हैं वो मैंने आपके साथ साझा की हैं, तो बहुत सारे लाभ हैं, अगर हम अधिक उत्पादन लेंगे, सघनता से लेंगे, तो उसके बहुत सारे लाभ हैं, और हम उन लाभों का लाभ उठा के जो ये समय है, वर्तमान समय है, उसकी मांग की पूर्ति।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक और नए एपिसोड में तमाम विषयों पर जो है जानकारी दी है, और आज का विषय भी बहुत अच्छा था, इस पर आपने तमाम सारी जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और एक बार फिर से हम नए,
0: आपका भी धन्यवाद आनंद जी
1: सर, एक बार फिर से एक और नए एपिसोड में एक और नई जानकारी के साथ और एक नई वार्ता के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे।
0: जी
1: नमस्कार सर,
0: धन्यवाद, नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ, दिल्ली रोड स्टूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना।
5: और मैं हूँ आपके साथ आपकी टीगन भाभी।
7: भाभी, आज एक बात शुरू करते हैं।
5: पूछिएगा।
7: कहते हैं ना, घर में बच्चे की हंसी गूंजती रहे तो घर खुशहाल लगता है।
5: बिल्कुल।
7: लेकिन बच्चा हंस तो रहा है, खेल भी रहा है, फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर को पूरा पोषण ना मिल रहा हो?
5: हो सकता है।
7: अच्छा, यानी सिर्फ देखकर ये तय नहीं कर सकते कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है?
5: बिल्कुल नहीं।
7: तो आज इसी पर बात करेंगे।
5: हाँ, आज बात होगी कुपोषण की। इसे समय रहते कैसे पहचाने, बच्चों को क्या खिलाएं, माँ के पोषण का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और घर के बाकी लोग इसमें कैसे मदद कर सकते हैं।
7: मतलब आज की बातचीत सिर्फ बच्चे की थाली की नहीं,
5: पूरी परिवार की जिम्मेदारी की है।
7: तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी, सबसे पहले बिल्कुल आसान सवाल, कुपोषण है क्या?
5: जब बच्चे को उसके शरीर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त और सही पोषण नहीं मिल पाता तो कुपोषण की समस्या हो सकती है।
7: यानी सिर्फ खाना कम खाना ही कुपोषण है?
5: नहीं, बात सिर्फ पेट भरने की नहीं।
7: ओहो,
5: बच्चे को ऐसा भोजन चाहिए जिससे उसे शरीर की बढ़त और विकास के लिए जरूरी पोषण तत्व मिल सके।
7: मतलब बच्चा रोज पेट भरकर खा रहा है, फिर भी अगर खाना बहुत असंतुलित है तो दिक्कत हो सकती है।
5: हाँ,
7: तो पहचानेंगे कैसे?
5: कुछ संकेतों पर ध्यान दिया जा सकता है।
7: जैसे,
5: सबसे पहले बच्चों का वजन और उम्र के हिसाब से बच्चा बहुत हल्का है या उसका वजन बढ़ नहीं रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
7: मतलब सिर्फ ये देखना कि बच्चा दुबला या मोटा नहीं,
5: बल्कि उसकी बढ़त और ध्यान दें।
7: ठीक है।
5: दूसरा संकेत, सुस्ती। बच्चा जल्दी थक जाता है, खेल में मन नहीं लगता और हमेशा सुस्त दिखाई देता है।
7: तीसरा,
5: बाल और त्वचा। बाल कमजोर, रूखे या झड़े हुए दिखाई दे सकते हैं और त्वचा सूखी हो सकती है।
7: चौथा,
5: भूख कम लगना। अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।
7: और पांचवा,
5: बार बार बीमार पड़ना, जैसे बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण।
7: तो पांच बातें याद रख सकते हैं, वजन, सुस्ती, बाल, त्वचा, भूख और बार बार बीमारी।
5: हाँ, और अगर ऐसी कोई चिंता दिखाई दे तो बच्चों को स्वास्थ्य कर्मी को दिखाना बेहतर होगा।
7: भाभी, अब एक घर की बात करते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, माँ परेशान, फिर बच्चा बोलता है मुझे बिस्किट चाहिए
5: और माँ कहती है चलो कुछ तो खा रहा है मेरा बच्चा।
7: बिल्कुल,
5: यही हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए।
7: क्यों?
5: क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ पेट भरना पर्याप्त नहीं है, उसे पौष्टिक और संतुलित भोजन भी चाहिए।
7: तो बच्चा क्या खाए,
5: उसकी उम्र के अनुसार भोजन देना जरूरी है।
7: चलिए शुरुआत बिल्कुल छोटे बच्चे से करते हैं। जन्म के बाद क्या?
5: जन्म से 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए।
7: और पानी?
5: इस उम्र में बच्चे के लिए माँ का दूध ही मुख्य पोषण है।
7: माँ का दूध इतना खास क्यों है?
5: क्योंकि इसमें बच्चों की जरूरत के मुताबिक जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसमें फैटी एसिड और एंटीबॉडी भी होती है जो बच्चे की बढ़ोतरी और बीमारी से बचाव में मदद करती है।
7: यानी माँ का दूध सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं?
5: बिल्कुल, बच्चे के शरीर और दिमाग दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
7: और 6 महीने के बाद?
5: तब माँ का दूध जारी रखते हुए बच्चों को ऊपरी आहार शुरू करना चाहिए।
7: अब आता है असली सवाल, 6 महीने के बाद बच्चे की थाली में क्या खाए?
5: शुरुआत में बच्चों को नरम और आसानी से खाने योग्य पौष्टिक चीजें दी जा सकती हैं, जैसे खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फल का गुदा।
7: और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए?
5: तब उसके खाने में दाल, सब्जियां, फल, अनाज और दूध दही जैसी चीजें शामिल करनी चाहिए।
7: यानी घर का सामान्य पौष्टिक खाना ही बच्चे के लिए बहुत काम का है।
8: बिल्कुल,
7: तो बहुत महंगी चीज जरूरी नहीं।
8: बात पौष्टिक और संतुलित भोजन की है,
7: मतलब हमारी रसोई में मौजूद

0: दूध, दाल, अनाज, सब्जी, फल जैसी चीजों को सही तरीके से बच्चे के खाने में शामिल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: हाँ
0: भाभी, एक बात मुझे हमेशा से दिलचस्प लगती है। हम खाना शरीर के लिए सोचते हैं, लेकिन क्या खाने का असर बच्चे के दिमाग पर भी पड़ सकता है?
1: बिल्कुल।
0: कैसे?
1: बच्चे के जन्म के बाद उसका दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है। इस विकास के लिए भी सही पोषण जरूरी है।
0: अगर सही पोषण ना मिले
1: तो बच्चे के सीखने और विकास पर असर पड़ सकता है।
0: तो माँ का दूध यहाँ भी महत्वपूर्ण है?
1: बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 6 महीने में माँ के दूध से बच्चों को जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडी मिलती है,
0: और 6 महीने के बाद
1: तब ऊपरी आहार भी बहुत जरूरी होता है।
0: जैसे
1: दाल, खिचड़ी, सब्जी, फल जैसी चीजें, इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल जैसे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के विकास में मदद करते हैं।
0: मतलब बच्चे का खाना सिर्फ पेट तक नहीं जाता,
1: उसके पूरे विकास से जुड़ा होता है।
0: अब भाभी, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर सवाल सुनकर बच्चे मुझे पसंद नहीं करेंगे?
1: क्यों?
0: क्योंकि बात होगी जंक फूड की।
1: अच्छा,
0: चिप्स?
1: हाँ।
0: बर्गर?
1: हाँ।
0: कोल्ड ड्रिंक?
1: अब आप बच्चों के दुश्मन बन गए हैं।
0: लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा।
1: ठीक है, पूछिए।
0: क्या जंक फूड नुकसान कर सकता है?
1: अगर बच्चे के भोजन में इन चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और पौष्टिक खाना पीछे छूट जाएगा तो समस्या हो सकती है।
0: क्यों?
1: क्योंकि बहुत ज्यादा तला भुना मीठा या अधिकतम प्रसंस्कृत भोजन बच्चों को जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता।
0: और फिर बच्चा क्या करता है?
1: धीरे धीरे उसे उसी स्वाद की आदत पड़ जाती है।
0: फिर दाल सामने रखो, नहीं चाहिए।
1: सब्जी दो, नहीं चाहिए।
0: फल दो, नहीं चाहिए।
1: और चिप्स का पैकेट दिखाओ, हाँ
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की रोजमर्रा के खाने में पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता मिले।
0: जंक फूड की आदत से क्या नुकसान हो सकता है?
1: बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से बच्चे में मोटापे का जोखिम बढ़ सकता है। ज्यादा मीठी चीजें दांतों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं।
0: और बच्चा फिर पौष्टिक चीजों से दूर?
1: हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता है।
0: तो बात ये नहीं कि बच्चे ने कभी कुछ स्वादिष्ट खा लिया तो सब खराब।
1: बात ये है कि रोज का भोजन पौष्टिक और जंक फूड उसकी जगह ना ले ले।
0: अब एक सवाल, हमने अच्छा खाना खा लिया लेकिन खाना खिलाते समय हाथ गंदे हैं, बर्तन साफ नहीं है, तो
1: पौष्टिक खाना होने के बावजूद बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।
0: इसीलिए साफ सफाई भी जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है।
0: क्या क्या ध्यान रखें?
1: खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ बर्तन में खाना खाना और बच्चों के आसपास का वातावरण क्लीन रखना।
0: यानी पोषण सिर्फ क्या खाया नहीं,
1: कैसे और किस महीने में खाया भी महत्वपूर्ण है।
0: भाभी, अब एक और बात, अगर हम बच्चे को अच्छा खाना दे रहे हैं तो क्या इतना ही काफी है?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है।
0: क्यों?
1: बच्चों को बीमारी से बचाने और उसकी सेहत पर नजर रखने के लिए।
0: मतलब अच्छा खाना, साफ सफाई, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच सब मिलकर बच्चों की सेहत को मजबूत करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब भाभी, एक सवाल जो घर के बाकी लोगों को सुनना चाहिए, बच्चे की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है?
1: पूरी परिवार की।
0: लेकिन अक्सर क्या होता है,
1: माँ से उम्मीद की जाती है कि वही बच्चे को खिलाए, वही खाना बनाए, दूध पिलाए, वही घर संभाले,
0: और बाकी लोग
1: कहते हैं तुम संभाल लोगी।
0: अरे,
1: बच्चों की परवरिश में परिवार की मदद भी बहुत जरूरी होती है।
0: कैसे?
1: पिता, दादा दादी और घर के दूसरे सदस्य खाना बनाने में मदद कर सकते हैं।
0: बच्चे को खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं।
1: माँ को आराम का समय दे सकते हैं।
0: और घर के साफ सफाई में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मतलब माँ की मदद करना सिर्फ माँ की मदद नहीं है,
1: बच्चे के पोषण में मदद करना भी है।
0: अब तक हमने बच्चे की बात की, लेकिन बच्चा आने से पहले
1: बहुत अच्छा सवाल,
0: गर्भवती महिला का खाना क्यों क्यों महत्वपूर्ण है?
1: क्योंकि गर्भवती माँ का पोषण सिर्फ उसके शरीर के लिए, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण होता है रीना।
0: तो उसके थाली में क्या होना चाहिए?
1: दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही और अनाज जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा भी शामिल होना चाहिए।
0: और अगर परिवार में अंडा या मछली खाई जाती है
1: तो उसे भी भोजन में शामिल किया जा सकता है।
0: और बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार
1: कम रखना चाहिए।
0: पानी,
1: साफ पानी पर्याप्त मात्रा में भी जरूरी है।
0: अब एक बात तो गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर अक्सर बताते हैं,
1: आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ।
0: हाँ,
1: गर्भ अवस्था में शरीर की जरूरत बढ़ जाती है। आयरन खून बनने में मदद करता है।
0: और अगर आयरन की कमी हो जाए
1: तो अनीमिया हो सकता है। महिलाओं को कमजोरी, थकान, चक्कर जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
0: और इसका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है।
1: हाँ, बच्चे का वजन कम हो सकता है, समय से पहले जन्म का खतरा हो सकता है और गंभीर स्थिति में माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है।
0: और फॉलिक एसिड?
1: फॉलिक एसिड बच्चों के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए जरूरी है।
0: इसीलिए डॉक्टर जो आयरन फॉलिक एसिड की गोली देते हैं उसे अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए।
0: अब बच्चा पैदा हो गया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, अब माँ के खाने में क्या खाना होना चाहिए?
1: माँ को खुद भी संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए।
0: कौन कौन सी चीजें?
1: दाल, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, दही और अनाज जैसे गेहूँ, चावल और बाजरा।
0: मतलब माँ खुद कमजोर होकर बच्चे को मजबूत नहीं बना सकती।
1: बिल्कुल नहीं, माँ की अपनी सेहत भी उतनी ही जरूरी है।
0: और परिवार को यहाँ क्या करना चाहिए?
1: माँ को पौष्टिक खाना मिले, समय पर मिले और उसे पर्याप्त आराम भी मिले। परिवार को इसमें सहयोग करना चाहिए।
0: अब दो चीजों पर थोड़ा विस्तार से, हरी सब्जियाँ क्यों?
1: हरी सब्जियाँ शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर देती है।
0: और दूध दही?
1: इनमें कैल्शियम मिला होता है जो हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है।
0: तो माँ के खाने में ये चीजें सिर्फ स्वाद के लिए नहीं,
1: पोषण के लिए हैं।
0: अब एक सवाल थोड़ा अलग है, जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या स्तनपान करने वाली माँ के लिए मांस, मछली या अंडे का क्या फायदा हो सकता है?
1: इन चीजों में प्रोटीन होता है जो शरीर की ताकत और बच्चे की बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण होता है।
0: और आयरन?
1: कुछ मांसाहारी खाद्य पदार्थ आयरन के भी अच्छे स्रोत हैं।
0: और विटामिन B12?
1: मांस, मछली और अंडे में भी विटामिन B12 भी शामिल है जो शरीर और नसों के लिए जरूरी है।
0: लेकिन हर परिवार मांसाहारी नहीं करता।
1: बिल्कुल,
0: तो शाकाहारी माँ क्या करे?
1: शाकाहारी भोजन से भी अच्छा पोषण मिल सकता है।
0: कैसे?
1: मैं आपको बताती हूँ। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और सूखे मेवे जैसे विकल्प भोजन में शामिल किए जा सकते हैं।
0: दाल और पनीर
1: प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।
0: दूध दही
1: कैल्शियम और अन्य पोषण तत्वों के लिए उपयोगी हैं।
0: हरी सब्जियाँ
1: विटामिन, मिनरल और आयरन सहित कई पोषण तत्व होते हैं।
0: तो ये बात सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि मांसाहार है या नहीं।
1: बिल्कुल, जरूरी है कि भोजन विधित और पौष्टिक हो।
0: अब मैं घर के पापा, दादा दादी, भाई बहन सबको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर घर में गर्भवती महिला है या छोटा बच्चा तो आप क्या कर सकते हैं?
1: बहुत कुछ,
0: जैसे
1: खाना बनाने में मदद,
0: बच्चों को खाना खिलाने में मदद,
1: माँ को आराम देना,
0: साफ सफाई का ध्यान रखना
1: और ये देखना कि माँ और बच्चों को पौष्टिक खाना मिल रहा है।
0: मतलब मदद करने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी नहीं।
1: बिल्कुल नहीं,
0: घर के काम में हाथ बटाइए
1: और माँ बच्चों की सेहत मजबूत बनाने में योगदान दीजिए।
0: चलो भाभी, आज का छोटा सा खेल खेलते हैं।
1: क्या खेल है?
0: सही या गलत।
1: चलिए,
0: बच्चा खेल रहा है और हंस भी रहा है, इसीलिए उसमें पोषण की कमी हो ही नहीं सकती।
1: गलत।
0: क्यों?
1: बच्चे की बढ़त और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है।
0: दूसरा, जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए।
1: सही बात है।
0: तीसरा, 6 महीने के बाद बच्चों को माँ का दूध बंद कर देना चाहिए।
1: गलत। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार शुरू करते हुए माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए।
0: चौथा, जंक फूड पेट भर सकता है, इसीलिए वही रोज का मुख्य खाना हो सकता है।
1: गलत।
0: पांचवा, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है, जरूरी है।
0: छठा, माँ और बच्चे की सेहत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल गलत।
0: सही जवाब,
1: पूरे परिवार का सहयोग जरूरी है।
0: और आखिरी, अगर गर्भवती महिला शाकाहारी है तो उसे अच्छा पोषण नहीं मिल सकता।
1: गलत।
0: क्यों?
1: दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे जैसे कई पौष्टिक विकल्प हैं।
0: भाभी, अगर आज की पूरी बातचीत को हम एक थाली में रखें तो कैसे होगा?
1: अच्छा सवाल है आपका।
0: बताइए फिर।
1: उस थाली में विविधता होगी,
0: दालें होगी,
1: सब्जी होगी,
0: फल होंगे,
1: अनाज होगा,
0: दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ होंगे,
1: और परिवार का ध्यान भी होगा,
0: साफ सफाई,
1: वो भी
0: समय पर टीकाकरण
1: जरूरी है,
0: स्वास्थ्य जांच
1: जरूरी है,
0: और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ
1: उनका पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: तो भाभी, आज की इतनी लंबी बातचीत से अगर श्रोताओं को सिर्फ तीन बातें याद रखनी हो तो,
1: पहली, बच्चे के बढ़त पर ध्यान दें और कुपोषण के संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें।
0: दूसरी,
1: 6 महीने तक केवल माँ का दूध, उसके बाद माँ का दूध जारी रखते हुए उम्र के अनुसार पौष्टिक ऊपरी आहार भी जरूरी है।
0: और तीसरी,
1: बच्चे के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ के पोषण का भी ध्यान रखें और इनमें पूरे परिवार का सहयोग हो।
0: और इसमें एक बात जोड़ूंगी।
1: क्या?
0: जंक फूड को रोज पौष्टिक खाने की जगह मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, आज हमने जाना कि कुपोषण सिर्फ खाने की कमी का नाम नहीं है।
1: सही और संतुलित पोषण, साफ सफाई, स्वास्थ्य जांच और परिवार की देखभाल सब मिलकर बच्चे की अच्छी सेहत का योगदान। सही और संतुलित पोषण, साफ सफाई, स्वास्थ्य जांच और परिवार की देखभाल सब मिलकर बच्चे की अच्छी सेहत में योगदान देते हैं।
0: हमने जाना कि बच्चों का पोषण शरीर के साथ साथ उसके विकास के लिए भी जरूरी है,
1: और माँ का पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वे गर्भवती हो या बच्चों को स्तनपान करा रही हो।
0: इसीलिए घर में अगर बच्चा है
1: तो सिर्फ बच्चे की थाली मत देखिए,
0: माँ की थाली भी देखिए
1: और परिवार का सहयोग भी देखिए,
0: और स्वस्थ परिवार यही तो है असली खुशहाली। जाने से पहले आइए लेते हैं अपनी सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और इसके लिए दूसरों को भी हम जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखेंगे,
0: क्योंकि जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
1: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: याद रखिए,
1: सेहत सही तो लाभ गई।
0: मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना,
1: और मैं थी आपकी टीकन भाभी।
0: मिलेंगे फिर सेहत से जुड़ी एक और जरूरी बात के साथ।
1: स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
0: मिलेंगे फिर हम आपको एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: हाँ जी दोस्तों, कैसे हालचाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी, तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर, और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
5: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम हाँ। अभी थोड़ी नई नई है इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि

0: उतनी ही खतरनाक भी हैं। जो सही कहा ना मैंने,
1: सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
0: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बार। तो श्रोताओं आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या बात है। मतलब बच्चन साहब और रेखा जी पर पिक्चराइजेशन, बड़ा ही प्यारा गाना था। आपको कैसा लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पे व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक, और कहीं स्नैपचैट, और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है, जरा ये बताओ। तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: एक्चुअली मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है गाइज, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ। मैम दीदी जी, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो। फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग बेबी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल ना जमाना बड़ा डिजिटल हो गया, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, जी नहीं, मेरी
0: हाँ, शादी हो गई तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ अरे वाह, बताओ बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है।
0: True.
1: या बॉयज के साथ भी हो जाता
0: True,
1: है।
0: ट्रू ट्रू, आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट,
0: ये भी बहुत हो रहा होता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: अयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल इसे जोक सपाट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगे, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी,
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन
0: हाँ,
1: इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए घातक भी हो सकता है।
1: जी आप पैसे निकाल लें एटीएम से, तब आप ऑनलाइन है, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन, एग्जैक्टली फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे जो अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है। दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना हमें, कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है।
1: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोग क्या हाल होगा,
1: आधी दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: क्या गाना था यार, मजा आ गया किशोर दा की आवाज सुन के। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल बताओ, कल का तो नहीं पता, लेकिन आज भी अगर आपने चीजों को सही से मैनेज नहीं किया तो बिल्कुल कल का कुछ पता नहीं चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी का खुली बात के साथ स्वागत है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सोशल मीडिया सिक्योरिटी। बहुत जरूरी है आजकल, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर कोई इस्तेमाल करता है। इस सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है, थोड़ी नहीं पूरी सावधानी बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही है कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसे लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
1: ये गाना तो बहुत अच्छा था और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी हाँ खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए?
0: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियां हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे, हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है। ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है, और कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमजोर बनाते हैं, कई बारी अपना फोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं, और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना OTP नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
1: शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे OTP को लेकर?
1: OTP को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, हमारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के ऐप्स के जो भी होते हैं उसका OTP आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी ID बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। OTP तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, OTP वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, only to person, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है, और आप इसका सही इस्तेमाल करें, और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया सुरक्षा की, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है, क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रैवल प्लान। रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है, तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए? क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा, किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली, उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें। फोटो और वीडियो सोच समझ कर शेयर करें, ब्लैकमेल होने पर चुप न रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 MHz से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रांग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा न करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहाँ पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे की लेन देन के बारे में बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसाते हैं, तो उन चीजों से बच कर रहें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
0: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू कीच वन, आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो कुम, आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती है, नहीं आती है तो हम बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार मेरी पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
1: जी हाँ, बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती है, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा सोच के। अच्छा, मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आप भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
0: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
1: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
0: अच्छा?
1: तो बोला था मतलब? कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
0: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
1: सुपर बाइक।
0: सुपर बाइक या केटीएम बाइक?
1: नहीं, सुपर बाइक थी वो, एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था, उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
0: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार। तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
1: नहीं, भैया ने बोला कि आप हमारे पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
0: ओके, तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड। तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए
1: जी,
0: है ना। दोस्तों ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं, और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं 10,00,000 रुपए का लॉटरी पैकेज, इस पे लिंक पे क्लिक करें एंड अपने अकाउंट में जल्दी से विड्रॉल करें पेमेंट, तो आपको ना ये बेवकूफी नहीं करनी है, आपको सावधान और सतर्कता के साथ स्मार्टनेस के साथ काम करना है, आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे आया था रिक्वेस्ट में, बट मैंने उसको डिलीट किया, और मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने कोई लॉटरी खेली नहीं है तो हम जीतेंगे कहां से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, अगर आपने जाने जाने में ऐसे लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो बॉस आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी कैसे लूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच से बचिए और समझदारी को अपनाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल एफ

0: अहमदाबाद 89.6 FM की ओर से ये आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पर नहीं रहना है। स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाए, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा। क्यों
1: जी? राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है जिससे कि आप खो ना जाएं और लिंक पे क्लिक ना कर जाएं।
0: फिलहाल तो हम दोनों खोने वाले हैं अभी एक खूबसूरत गाने में, उसके बाद हम दोनों लेंगे जाने की इजाजत। लेकिन जाने से पहले कुछ और अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं मैं और कुमकुम।

0: बिल्कुल जी, मैं भी यही कहता हूँ अक्सर अपने इंस्टाग्राम को देख के कि तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के बिना तो यार बड़ा अधूरा सा लगता है यार कुमकुम। अगर एक दिन भी रील ना डालो, फोटो ना डालो, तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मिस था आज के दिन में। बट वही चीज अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो वो हमारे लिए घातक भी हो जाती है। रिसेंटली किस्सा बताता हूँ, मेरे पड़ोस में एक फैमिली के यहाँ पे शादी थी और वो लोग बाहर जा रहे थे शादी सेलिब्रेट करने, बट उनका एक बेटा जो भाई साहब सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालता है, मतलब छोटी छोटी अपडेट, अब ये अपडेट उनके ऊपर भारी पड़ गई। उन्होंने सारी लोकेशन वगैरह सब डाल दी कि हम दो दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, ये वो। अब उसके बाद जो उनके हेटर्स हैं, या यू कह सकते हैं जो मौके की फिराक में थे, उन्हें मौका मिला, घर में जाके चोरी कर ली। अब उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया परिवार को जब ये पता लगा। तो सिर्फ किस वजह से हुआ? सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना गाइस, जितना आपको हैपनिंग और प्यारा साउंड करते हुए नजर आता है, जितने हम खुश दिखाई देते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको लिटरली बताऊं कुमकुम, कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखावा चल रहा है ना?
1: आजकल दिखावे की दुनिया है।
0: है, आई नो दैट, बट इस दिखावे की दुनिया में जो फेक चीजें उनसे भी बचना है यार, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और चलते चलते मैं और कुमकुम जो है बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। एग्जैक्टली, तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। AI का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं आरजे आनंद लेता हूँ आपसे इजाजत, अनुमति, और कुमकुम आप भी चलो बाय करो।
1: बाय।
0: बस भी इतना ही बोलेगी, अब इसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है, इसने प्यार से बोला बाय। चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ। अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो। अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। एक तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा। मेरा चश्मा कहाँ गया यार? कुमको मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये, हाँ। तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए, और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: आपके हाथ में
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो। चलो बाय गाइस।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
0: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड स्टूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रासो हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं, उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं।

0: नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूं साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि हम घबराने लग जाते हैं, गलत भ्रांतियां हैं जो हम उनको सुन लेते हैं और उसको ही अपने लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचे और तभी आप फॉलो कर पाएंगे। सो इसी से रिलेटेड हम बात करने के लिए आज मैं आई हूँ विमेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर सोना मैम कनेक्ट है। तो मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी पहले तो आपके बारे में।
1: नमस्कार रीना जी, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ, महिला जिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था आखिरकार होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती
1: है? देखिए, किशोर अवस्था एक बहुत ही उम्र का ऐसा पड़ाव है जब एक बच्चा अपने उसका बचपन खत्म हो रहा है और वो वयस्क होने के रास्ते पर है। तो अभी उसका बचपन पूरा खत्म नहीं हुआ है, शरीर में और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत से बदलाव आते हैं। शारीरिक तौर में बहुत सारे हॉर्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं जिससे वो एडल्टहुड में प्रवेश करता है, और मानसिक बदलाव भी इसलिए आते हैं कि बच्चा खुद नहीं समझ पाता है, उसके अंदर बहुत नए तरीके के विचार आते हैं, बहुत नए तरीके से वो दुनिया को देखता है, दोस्तों से उसकी बातचीत होती है। तो वो ना बचपन में है, उससे बच्चों से उसको ज्यादा पता है, और ना वो भी वयस्क हुआ है
0: जी।
1: उसको लगता ये है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये ट्रांजिशन फेस है, बदलाव वाला है, बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हॉर्मोन्स क्योंकि बदल रहे हैं तो इसलिए जो भी विचार उसके मन में आते हैं वो ये जज नहीं कर पाता है कि ये चीजें जो मुझे नई बातें पता चल रही हैं ये सही है या नहीं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ये किशोरावस्था रहती है, टीनेज, जिसमें बच्चे एक बीच वाले एज की स्टेज में है, अपने बचपन उनका खत्म हो रहा है और वयस्क होने के, जवान होने के उसमें आ रहे हैं,
0: मतलब 12 के प्लस होने के बाद।
1: हाँ,
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे के शरीर के साथ साथ उनके व्यवहार में, सोच में अचानक बदलाव क्यों आने लग जाते हैं और इससे वो कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि अचानक मेरे अंदर ऐसे चेंज क्यों आने लग गए हैं?
1: बिल्कुल घबरा जाते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उनके हॉर्मोन्स का है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों अपने एडल्ट फेज में जाते हैं तो शरीर में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। वो बदलाव का जो टाइम है वो यही किशोरावस्था के दौरान ही शरीर में सारे बदलाव होते हैं, उनसे दिमाग पे हॉर्मोन्स के लेवल पे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, और मानसिक तौर पे इसलिए वो घबरा जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बचपन से ज्यादा उनको चीजें पता है, आजकल इंटरनेट का भी जमाना है, बच्चे आपस में बात करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें उनको पता चलती है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि ये ज्ञान जो है वो उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, अभी अधूरा ज्ञान है। और नई चीजों के बारे में पता चलता है तो बच्चों के मन में क्रेज बहुत होता है, बच्चों के मन में क्रेज बहुत ज्यादा रहता है, और उनको ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम वो थोड़ा माँ बाप से भी अपनी चीजें शेयर करने में हिचकिचाते हैं कि माँ बाप कहीं ऐसा ना हो, समझे ना, उनको गलत ना समझ लें
0: जी,
1: ये चीजें रहती हैं।
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा अपने शरीर में बदलाव को लेकर डर रहा हो, शर्म महसूस कर रहा हो, अपने माता पिता से, उनके जो माता पिता है उनकी हेल्प कैसे करे?
1: माता पिता सबसे पहले तो ये पहले से समझ लें कि बच्चा जिस बदलाव से गुजर रहा है वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, तो बच्चे का व्यवहार

0: बच्चों के मन में भी आ रही होंगी। तो अगर हम इनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो ये दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेंगे जानकारी के लिए,
1: जी, जी,
0: जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे बड़े जो शुभचिंतक है वो उसका परिवार ही होता है। तो माँ बाप को थोड़ा फ्रेंड्स की तरह बच्चों से ट्रीट करना चाहिए, उनको एकदम उनकी किसी बात को सिरे से नहीं नकारें, उसको समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें। बच्चे अगर डरेंगे नहीं कि ये बात करने से हमारे अपने माता पिता से डांट पड़ सकती है, अगर उनको लगेगा कि माता पिता डांटेंगे नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं, तो बच्चे अपनी बातें माँ बाप से शेयर करेंगे। और हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चे किसी गलत चीज में ना पड़ जाए, हमसे वो बात करेंगे तो हम उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं।
1: लेकिन मैम अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा बच्चे के साथ मतलब बातें शेयर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये बातें अभी तक बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
0: यही बातें तो उनको समझनी है, और आपका रेडियो तो इस माध्यम से एक बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा ये चीज टॉपिक देखा है कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है। इससे माँ बाप होता क्या है, माँ बाप अपने काम में लगे हुए हैं, वो बच्चे के बारे में बहुत मन से सब अच्छा चाहते हैं, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा एक सोशल फैक्टर होता है कि माँ बाप के जो साथी लोग हैं, कई बार वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, अरे उसको छोड़ो, वो इस तरीके से कर रहा है। तो बहुत चीजों से माँ बाप के विचार गवर्न होते हैं कि आसपास की सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे जरूरी है। बच्चे एंग्जाइटी टेंशन से भी डील कर रहे हैं आजकल माँ बाप। फोन और इंटरनेट के आने के बाद से बच्चे माँ बाप से थोड़ा कम बात करते हैं, माँ बाप भी कम बात करते हैं, क्योंकि वो भी फोन पे सब लोग होते ही हैं। और रील्स फोन ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके हाथ में फोन आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ निकल गया।
1: ये करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी मैम अब तो वैसे बता दे कि रील्स पर हर कोई बिजी रहता है, वहीं से गलत धारणाएं मिल जाती है उनको, तो उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर माँ बाप से बच्चा देखे, ये क्यूरियोसिटी वाली एज है, उसके शरीर में भी चेंजेस हो रहा है, उसके सोच में भी चेंज हो रहा है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव हो रहा है, वो ये कैसे जानेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और वो बस सब तरफ से जानना चाह रहा है। अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन माँ बाप से नहीं मिलेगी तो वो दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, वो दोस्तों से मिलेगा। सब जगह से सब चीज सही नहीं पता चल सकती, क्योंकि उसके पीयर ग्रुप में जो दोस्त हैं वो भी उसी उम्र के हैं,
1: जी जी,
0: उनको भी तो नहीं पता सही क्या है।
1: मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे जरूरी हो कि बच्चे पूछे मम्मी पापा से,
0: माँ बाप को इनिशिएशन लेना चाहिए। माँ बाप भी इनिशिएशन ले सकते हैं, जब उनको पता है कि बच्चा उस दौर में प्रवेश कर रहा है, तो माँ बाप को भी धीरे से खुल के बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब तुम जिस उम्र में हो तुम्हारे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कहाँ जाना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर माँ बाप उनसे उनके हालचाल भी जाने कि तुमको स्कूल में कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं, आप बच्चों की चीज में इंटरेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ घर का काम करना या अपना प्रोफेशन का काम करना है, घर में भी आप उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि बच्चे को जीवन तो माँ बाप ने दिया है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है। उन्हें उस चीज पे देखना पड़ेगा कि बच्चे के जीवन में जो कुछ हो रहा है उनसे जो बन पड़ रहा है वो बच्चों से बात करें। बात करना बहुत जरूरी है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि फोन हर किसी के पास है, हर कोई फोन में लगा हुआ। तो फिलहाल मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन से बदलाव सामान्य होते हैं और कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें बच्चों को पता होना चाहिए, या तो वो अपने पेरेंट्स से पूछे या डॉक्टर से पूछे।
0: देखिए, बदलाव शारीरिक और मानसिक इमोशनल सब तरीके के बदलाव है। शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो जेन्युइन बदलाव है, वो सबके अंदर आते हैं। हालांकि हाँ, अगर वजन बहुत बढ़ रहा है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वजन अगर चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर वजन बढ़ता है उससे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं
1: जी
0: उनका लेवल बहुत गड़बड़ हो जाता है।
1: उनसे
0: आगे चल के उनमें बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे महिलाओं में या चेहरे पे बाल आ जाते हैं।
1: जी जी जी,
0: माहवारी अभी शुरू होती है लड़कियों की, तो शुरू में माहवारी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 6-7 महीने रेगुलर नहीं होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और उसका भी एक फिक्स एज नहीं है कि

0: माहवारी किसी एज में आनी चाहिए। पहले माहवारी 12-13 साल में आती थी, आजकल माहवारी 9 साल में भी शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, जो चीजें उनको पता है इंटरनेट से, बहुत चीजें बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है और दो दो तीन तीन महीने का डिफरेंस आ रहा है, वजन बहुत ज्यादा है, या लग रहा है कि लड़कियों की आवाज भारी हो रही है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये कंडीशंस हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और संकेत क्या है जिसमें घबराने की जरूरत है, या जिसमें आपने पूछा कि ध्यान रखने की जरूरत है? थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अकेले ज्यादा रहना चाह रहा है।
1: बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद अकेले महसूस करते हैं।
0: हाँ, लेकिन एक चीज आजकल देखिए, डिप्रेशन बहुत आ रही है। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, तो सारे बच्चे आपस में ही खेलते कूदते रहते थे। आपने देखा होगा कि पहले डिप्रेशन इतना नहीं होता था,
1: कहानी सुनते रहते थे,
0: नानी सुनते रहते थे, नानी दादी से आपस में लड़ भी रहे हैं, तो उन्हें पता है कि ये सब तो चलता रहता है दुनिया में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है ज्यादातर, माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, अपना पढ़ाई में प्रेशर है, कई तरीके की परेशानियां हैं, तो कन्वर्सेशंस खत्म हो रहे हैं।
1: जी
0: ठीक है, तो बच्चों में प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी फर्स्ट आ रहा है, या मेरे 99 ना होके मेरे 97 ना हो गए इस नंबर हो गए, इसमें भी बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें ये लक्षण देखने की, ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चा ठीक था, अब अचानक से वो अकेले कमरे में रहना पसंद कर रहा है, या इतना हमें ऊपर से ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छी कंपनी में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। और बच्चा कोई बहुत एडवेंचरस चीज तो नहीं हो गया है, एडवेंचरस काम तो नहीं करना चाह रहा है कि आज मुझे कोई रिस्की काम ना करना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीजें हैं जो, या नॉर्मल बात में बच्चा सामान फेंक रहा है, कान बंद कर रहा है।
2: डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है, इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
3: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
3: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
3: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
6: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिन्दू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
7: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
3: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
8: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
9: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
8: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूर दराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
10: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
11: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
10: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारूमित्से से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्राजो हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
4: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश की प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
5: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
4: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: हेलो, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजेरीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। आप सभी को पता है कि देखिए जब भी हम आते हैं ना तो दोनों कुड़िया साथ में ही आते हैं गप्पे शप्पे करने के लिए, आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भैया, सच में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि हर किसी इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो उसके लिए हमेशा खास होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उसकी एक मैसेज, एक कॉल देखकर ना हमारे चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। मतलब वो इंसान हमारे लिए बेहद खास होता है। आई नो कि आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो बेहद और बहुत ज्यादा खास भी होगा। कहते हैं ना, जिंदगी में भीड़ बहुत मिलती है, लेकिन उस भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो बाकी सबसे अलग होता है, जिसके सामने आपको अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है, दुख छुपाना भी नहीं पड़ता है। वो बस देखकर समझ जाता है कि आज मन ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपका सबसे पुराना दोस्त हो या परिवार का सदस्य ही हो। कभी कभी कोई इंसान अचानक जिंदगी में आता है और धीरे धीरे बहुत खास बन जाता है। आपके लिए भी ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जिसके बारे में सोचते ही चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ भाई खुशी, तुम बताओ तुम इतनी टहल क्यों रही हो, ये बताओ पहले।
7: टहलना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं टहल रही हूँ। और मैं बताती हूँ कि जिंदगी में ना सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद वही होता है जहाँ आपको हर बात बोलकर समझानी नहीं पड़ती, सामने वाला आपकी चुप्पी से भी समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। एक बात, एक छोटा सा सवाल, क्या हुआ, और अचानक लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे पूछने वाला है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में किसी गिफ्ट से कम नहीं होते, और हो सकता है आप रोज उनसे बात ना करते हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उनका एक मैसेज भी बहुत बड़ी उम्मीद दी जाता है। ऐसे इंसान को संभाल कर रखिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा इंसान समझने वाला नहीं मिलता।
6: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और उस वक्त का साथ ये बहुत जरूरी होता है। अच्छे समय में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, असली पहचान तो तब होती है जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और जब चेहरे पर स्माइल नहीं होती, बस कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और जब लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है तब कोई एक इंसान अगर आपके पास खड़ा रहता है तो उसकी जगह जिंदगी में बहुत खास हो जाती है। उसने शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो, लेकिन उसने आपको अकेला महसूस नहीं होने दिया। और कई बार इंसान को सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि कोई उसके साथ खड़ा है।
7: और रीना, तुम्हें पता है, पुराने दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे महीने

0: पाते ना हूँ, लेकिन जब फोन पर बात शुरू होने लगती है ना, तो जैसे कल ही मिले थे, ना कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन, ना कोई हिसाब किताब, बस वही पुरानी हंसी, वही पुराने किस्से और वही बेफिक्री बातें। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारी यादों में वही के वही रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना दोस्त है जो आज, उसे एक छोटा सा मैसेज जरूर देना, यार याद आ रही थी। हो सकता है सामने वाले का पूरा दिन ही बन जाए। तो आप भी अपने दोस्त को मैसेज कीजिए ना, जिनसे आपने महीनों बात नहीं की है, शायद आपका मैसेज का वो इंतजार कर रहे हो और उनका पूरा दिन बन जाए। या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपके पास ही मैसेज कर दे, है ना दोस्तों। ये दोस्ती का रिश्ता ना बहुत खास होता है, चाहे आप दूर हो या आप नजदीक हो। तो इस दोस्ती के रिश्ते को ना हमेशा संभाल कर रखिए, और बीच बीच में वीकली मंथली जब आपको टाइम मिले तो जरूर टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से मिलें जुलें, उससे रिश्ते और ज्यादा खूबसूरत होते हैं।
1: हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। कभी वो माँ होती है, कभी पापा, कभी भाई बहन, कभी दादा दादी, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपकी बात ध्यान से सुनता है। उसकी खासियत ये नहीं कि हर समस्या का हल जानते हैं, उसकी खासियत ये है कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करते हैं। परिवार की यही छोटी सी खुशी हमें बाहर की बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है। इसीलिए अपने घर के उस खास इंसान को कभी कभी बता भी दिया कीजिए कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी इंसान खास हो ना, वो आपके लिए बेहद आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
0: कभी कभी दोस्तों हमारी जिंदगी में ना ऐसा वक्त आता है जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन तभी कोई एक इंसान बोलता है, तू कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस ये चार पांच शब्द अंदर से कुछ बदल देते हैं, क्योंकि किसी का आप पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होता है। हो सकता है दुनिया आपकी कमी दिख रही हो, लेकिन वो इंसान आपकी पोटेंशियल दिख रहा होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपकी क्षमता पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है, तो समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं। हाँ हाँ, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप ही को बोल रही हूँ, वो लकी पर्सन आप ही हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और साथ ही साथ आजकल बहुत से रिश्तों में मतलब ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ खड़े रहते हैं। ना उन्हें बदले में कुछ चाहिए, ना कोई फायदा, बस इसीलिए साथ है क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। ऐसे लोग शायद ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जब जरूरत होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और सच कहे तो जिंदगी में ऐसे लोगों की कीमत किसी महंगे गिफ्ट से ज्यादा कहीं ज्यादा होती है। और जब आपके पास ऐसे इंसान है तो मैं कहती हूँ उसको संजो कर रखिए, अपने पास से कभी दूर मत होने दीजिए। चाहे आप बात ना करें, लेकिन जब भी मिले तो आपको मिलकर ऐसा ना लगे कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं।
0: दोस्तों हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहते, वो हमें बदल भी देते हैं। कोई हमें कॉन्फिडेंस देना सिखाता है, कोई खुद के लिए खड़ा होना, कोई मेहनत करना, और कोई ऐसा समझाता है कि जिंदगी में हार के बाद भी उठना जरूरी है। हो सकता है वो इंसान आज आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसकी कही हुई कोई बात आज भी आपके साथ चल रही हो। ऐसे लोग हमारे सफर का हिस्सा भले ही कम समय के लिए बने हों, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। क्यों दोस्तों, होता है ना ऐसा? आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए।
1: मतलब बात तो वही है ना कि जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपके अंदर कोई कमी है तो उसको बताते हैं कि इस कमी को ठीक करो, तुम ऐसे करो तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन जो इंसान आपसे मतलब के लिए रिश्ता रखता है, मतलब के लिए दिखावे रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन काम गलत कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कभी इंटरफेयर नहीं करता वो आपके लाइफ में। लेकिन जो आपके सच्चे मित्र होते हैं, वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं और आपकी गलतियों को हमेशा बताते हैं। किसी खास इंसान की पहचान हमेशा बड़ी बड़ी यादों से नहीं होती, कभी उसकी याद किसी छोटे से काम से आ जाती है। कोई गाना सुनकर, कोई जगह देखकर, कोई चाय की खुशबू या फिर कोई पुराना डायलॉग सुनकर अचानक मन कहता है, अरे ये तो वो कहा करता था, और चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। यही तो खास रिश्तों की खूबसूरती है। इंसान दूर हो सकता है, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में कभी ना कभी, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं।
0: सही समय पर सही इंसान का मिल जाना, साथ देना अपने आप में ब्लेसिंग्स फुल होता है एवरीवन। कभी कभी ना जिंदगी में कोई इंसान ऐसे समय पर आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी एक बात, एक सलाह, एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए कितना बड़ा था। जिंदगी में हर इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर आकर ना हमें संभाल जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते की उम्र नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी किसी इंसान का कुछ समय के लिए आना भी जिंदगी में बहुत मायने रखता है।
1: जो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है। आपने कभी नोटिस किया है, खास इंसान वही नहीं होता जो आपके लिए बड़े काम करे। कभी कभी वो इंसान खास इसलिए होता है क्योंकि उसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। आपको कौन सी चीज पसंद है, किस बात से आपको बुरा लगता है, आप परेशान होने पर चुप हो जाते हैं। ऐसी छोटी बातें याद रखना बताता है कि सामने वाला आपको ध्यान से सुनता है, और आज के बिजी समय में किसी को इतनी अटेंशन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है श्रोताओं। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, और इसके बाद फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, रेडियो किसी बिल्कुल नहीं घुमानी है, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें एंजॉय करते रहिए। आपके लाइफ में ना कोई पर्सन तो ऐसा जरूर होगा, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896।

0: एवरीवन वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और अभी आपने ये हैपनिंग ट्रैक एंजॉय किया एंड अब हम बात करने वाले हैं हंसी वाले इंसान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ना हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस की तरह होते हैं। इनके साथ 5 मिनट बैठो और मूड अपने आप ठीक होने लगता है। वो कोई जादू नहीं करते, बस अपनी बातें करके आपको हंसा देते हैं। कभी बेवकूफी वाली बात, कभी पुराने किस्से, और कभी ऐसी जोक कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे इंसान जिंदगी में ना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हर दिन सीरियस रहने के लिए नहीं बना है एवरीवन। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको बिना किसी वजह के हंसा सकता है, तो उसे जरूर संभाल के रखिए। क्योंकि दोस्तों, तकलीफ देने वाले ना हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुशियां देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और अगर ऐसे पर्सन आपके पास है तो संभाल के रखो और खुश रहो।
1: दूर रहकर भी करीब, ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना हर कोई आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और हमेशा के लिए एक साथ रहते भी नहीं है। तो कुछ रिश्तों में दूरी सिर्फ जगह नहीं होती, दिल की नहीं। इंसान किसी दूसरे शहर में हो सकता है, रोज बात ना होती हो, लेकिन जरूरत पड़ते ही कनेक्शन वही महसूस होता है कि फोन कॉल, एक मैसेज, और लगता है जैसे दूरी खत्म हो गई। ऐसे रिश्ते हमें बताते हैं कि किसी के करीब रहने के लिए हमेशा उनके पास रहना जरूरी नहीं। अगर दिल में जगह है तो हजारों किलोमीटर की दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती है। और चाहे आप कितने भी दूर रहो, और जब कॉल आती है ना तो भाई लगता ही नहीं है कि हम कब मिले हैं, यानी कि लगता है कि बस जस्ट अभी तो मिले हैं। और कैसे वही, यानी कि अनप्रोफेशनल वाली बातें हम करने लग जाते हैं, जैसे हम मिलते थे, बात करते थे, मतलब सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या बोले क्या ना बोले, मतलब जो दिल में आता है हम बोल देते हैं। तो वो होती है असली इंसानियत और असली दोस्ती।
0: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। उस वक्त अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तुम कर सकते हो, तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि कई बार हमें अपनी ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने वाला उसे पहचान लेता है। ऐसा इंसान सिर्फ दोस्त नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की वजह बन जाता है। और आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है, हमारी लाइफ में भी ऐसे पर्सन है जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं हर दिन। वो हमें कभी कभी ऐसा होता है, माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं कि कुछ चीजें होती हैं लाइफ में कि हम हिम्मत हार जाते हैं, अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं जब कोई इंसान आए और वो हमें संभाल ले, हमें प्यार से दो शब्द कह दे कि आप कर सकते हो, विश्वास रखो खुद पर, तो एवरीवन यकीन मानिए, वो छोटी सी कही हुई बात ना इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है।
1: खास होने के लिए रिश्ते जरूरी नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत खूबसूरत है किसी इंसान का खास होना, हमेशा किसी रिश्ते के नाम पर डिपेंड नहीं रहता। जरूरी नहीं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई टीचर, कलीग, पड़ोसी, या कोई पुराना जान पहचान वाला आपकी जिंदगी में ऐसे जगह बना लेता है, मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं वो भी आपकी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेता है जिसे शब्दों में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता चाहे जो हो, अगर उस इंसान की मौजूदगी आपको बेहतर महसूस कराती है, तो वो इंसान आपके लिए बेहद खास होता है।
0: दोस्तों, आज के टाइम में सच्चा अपना कौन है, इसका एक छोटा सा टेस्ट है। आप अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कंपैरिजन के, ना उन्हें जलन होती है। सच्चा अपना कौन है, इसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। आपकी अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, ना उन्हें जलन होती है, ना वो आपकी खुशी छोटी करने की कोशिश करते हैं। वो सच में कहते हैं, मुझे तो तुम पर गर्व है। ऐसे लोगों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है। आपकी खुशी में ना हर कोई खुशी होने वाला हर कोई इंसान नहीं होता है। वो पर्सन बहुत लकी होते हैं, और वो पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपको खुश, आपकी खुशियों में वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जब आप एक छोटी सी भी कोई अचीवमेंट अचीव करते हैं ना, तो वो प्राउडली उनका, जो कहते हैं ना कि गर्व से उनका सर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, और हर एक छोटी छोटी चीजों को वो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत को आप प्लीज जाया मत होने दीजिएगा। आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करें, और जो भी आपके ड्रीम है आप उनको पूरा करें।
1: इसको कहते हैं निस्वार्थ प्यार, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार होता है ना, वो निस्वार्थ होता है। शायद आपको भी अपने जिंदगी का कोई ऐसा दिन याद हो जब सब कुछ ठीक नहीं था, मन परेशान था, आंखों में आंसू थे, और किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन कोई एक इंसान था जिसने उस वक्त आपको अकेला नहीं छोड़ा। शायद उसने सिर्फ आपकी बात सुनी थी, शायद कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी काफी थी। जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स और ऐसे लोग कभी भूले नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हमें उस वक्त संभाला जब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे इंसान आपकी ताकत बनते हैं, और मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ खड़े रहते हैं, तो आपको भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ देना चाहिए।
0: अब दोस्तों, एक मैसेज की ताकत पता है ना, जब एक मैसेज आ जाता है तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारे चेहरे पर, कहाँ हमारा मूड कभी कभी सैड होता है, लेकिन जैसे ही एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। कभी कभी किसी खास इंसान का सिर्फ एक मैसेज पूरे दिन को बदल देता है। कैसे हो, खाना खाया, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, या बस एक सिंपल सा मैं हूं ना। शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि असली बात मैसेज की नहीं होती है, असल बात होती है किसी ने आपको याद किया है, और जिंदगी में याद किया जाना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। देखो, हम भी आपको याद करते हैं ना, तभी तो आपसे मुलाकात करने आते हैं एवरीडे।
1: और साथ ही साथ एक ऐसा पार्ट जब कोई आपकी कहानी का हिस्सा बनता है। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, इसमें बहुत सारे किरदार आते हैं, कुछ कुछ पन्ने तक रहते हैं, कुछ नई चैप्टर तक, और कुछ पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हर किरदार की अपनी जगह होती है। कोई हमें हंसाता है, कोई सिखाता है, कोई संभालता है, और कोई हमें मजबूत बनाकर चला जाता है। इसीलिए हर खास इंसान को उसकी जगह और उसके योगदान के लिए याद करना चाहिए हम। और कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी मौजूदगी में मन शांत हो जाता है, और ना कोई प्रेशर, ना कोई जजमेंट, ना खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत रियल होते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपको खुद को बदल कर नहीं बल्कि खुद बनकर रहे कम्फर्ट मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए बेहद खास है। और श्रोताओं, हम, मुझे लगता है कि अब म्यूजिकल में ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि

बातों के साथ साथ गानों का तड़का लगता है तो और भी मजा आ जाता है। तो बस हम लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: नहीं
1: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
0: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं पूछा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, क्यों बुलाई?
1: साले इतनी हंसी आ गया, तू कुछ गया?
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
1: क्यों?
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
1: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: एवरीवन, हमारी लाइफ में ना ऐसे इंसान भी होते हैं जो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज हमेशा सलाह नहीं होती, कभी कभी बस किसी का साथ चाहिए होता है। ऐसा कोई जो बोले चल मैं तेरे साथ हूँ ना, उसने आपकी परेशानी खत्म नहीं की लेकिन उसने आपका डर कम जरूर कर दिया। और यही किसी रिश्ते की असली ताकत होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने आपके कठिन समय में आपका हाथ नहीं छोड़ा, तो शायद वो आपके जीवन के सबसे खास लोगों में से एक है।
1: और श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक याद आने वाला इंसान बहुत स्पेशल होता है। चाहे आप बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं और अचानक उसकी याद आती तो प्यारी से स्माइल आपके चेहरे पर आ जाती है और उस टाइम आपकी खुशी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल वाला होता है। दिन भर हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन दिन के किसी भी वक्त अचानक किसी एक इंसान का ख्याल आता है, कोई वजह भी नहीं होती, बस याद आ गया। यही बताता है कि वो इंसान हमारे मन में कहीं खास जगह बना चुका है। वो हो सकता है हम उसे रोज ना बताते हो लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी तस्वीर जरूर होती है, उसकी यादें जरूर होती है, जो हमेशा उसकी याद कहीं ना कहीं कोई भी मोमेंट हो आ ही जाती हैं।
0: हमारी लाइफ का, जिंदगी का टीचर, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ना हमारी टीचर इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी सिखाई। उन्होंने बताया कि लोगों को कैसे समझना है, मुश्किलों में कैसे खड़े रहना है और खुद की वैल्यू कैसे पहचाननी है। हो सकता है उस वक्त उनकी बातें समझ ना आई हूँ लेकिन सालों बाद वही बातें जिंदगी में काम आती हैं। ऐसे इंसान सिर्फ याद नहीं रहते, उनकी सीख हमारे साथ चलती रहती है। दोस्तों, हमारी कॉलेज की बात है, मेरी एक टीचर थी और वो मुझे हमेशा, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे को संस्कृत सब्जेक्ट मिला हुआ था और संस्कृत में मेरा इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था लेकिन वो मैम मेरे को जबरदस्ती संस्कृत पढ़ाती थी और हमेशा वो मेरे को संस्कृत पढ़ाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था, उस टाइम भी मेरे को लगता था कि मैम क्यों मुझे जबरदस्ती फोर्स करके पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे आज समझ आता है अगर वो मुझे उस टाइम पर ज्ञान नहीं देती, वो मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाती तो मैं लाइफ में शायद बहुत कुछ मिस कर जाती।
1: देखिए, पता है खुशी क्या होता है, हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है।
0: Exactly.
1: जो इंसान सामने वाला होता है वो देखकर हमें जज कर लेता है। इनफैक्ट जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारी मेहनत लगन देखकर वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा इस चीज में आगे है और तुम आगे एक दिन जरूर बढ़ोगे। वो इस चीज को हमेशा कहते भी हैं और कभी कभी आप परेशान होते हो तो वो संभालते भी हैं, क्योंकि एक गुरु ना निस्वार्थ होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बस यही चाहते हैं कि जो मेरे पढ़ाए बच्चे हैं वो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो।
0: कहते हैं ना रीना कि हीरे की कीमत जोहरी को ही पता होती है।
1: अरे वाह, कहाँ कहाँ से लेकर आती है लड़की ऐसी ऐसी लाइनें।
0: जिंदगी का अनुभव है।
1: ओह माय गॉड,
0: सीख रहे हैं अभी, पूरी जिंदगी सीखने के ही।
1: राइट,
0: जिंदगी का नाम ही सीखना है। तो हर दिन सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ
1: और मुझे लगता है कि सीखना बहुत जरूरी है, हर रोज सीखिए। और अब हम बात कर लेते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि कभी समय मिले तो अपने खास लोगों को बताएंगे कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी बहुत बिजी है और कभी अक्सर आता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है या सुकून मिलता है तो आज ही उसे बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा गिफ्ट दे, बस इतना कह दीजिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
0: वो गाना है ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके,
1: हाँ,
0: मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार बनके।
1: सदा बहार बनके।
0: तो वही है, कुछ लाइफ में होते हैं ऐसे इंसान जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी लाइफ में सबसे अच्छा कौन है? हमारा रेडियो, जो हमारी लाइफ को एवरीडे खूबसूरत बनाता है। आप सबसे मिलने का, बात करने का मौका हमें मिलता है।
1: हाँ, मतलब हम देखा कितने भी परेशान हो लेकिन जब रेडियो पर आते हैं ना, एक तो बिंदास हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो सारा
0: टेंशन। वो खुशी ना हम शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एवरीवन, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है ना, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग।
1: तो श्रोताओं हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती हैं। तो जी मैडम क्या कहना चाहती हैं?
0: तो दोस्तों आज की बात यहीं से आप तक पहुंचाते हैं। जिंदगी में ना भीड़ बहुत है, कॉन्टेक्ट की लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन दिल के बहुत करीब लोग शायद गिने चुने ही होते हैं। कोई ऐसा जो आपकी खुशी देखकर खुद खुश हो जाए, कोई जो आपके दुख में बिना बुलाए आ जाए, कोई जो आपकी चुप्पी समझ ले, या कोई जो बस इतना कह दे मैं हूँ ना। अब सवाल आपका है, आपकी जिंदगी में वो खास इंसान कौन है? नाम मत बताइए तो भी चलेगा, बस मन ही मन उसे याद कर लीजिए, और अगर मौका मिले तो उसे आज बता भी दीजिएगा कि वो आपके लिए कितना खास है। ठीक है, छुपाइए मत, बता दीजिएगा उनको कॉल करके, और शर्माने की भी बात नहीं है, जो है वो है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, एंड आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो आज दिल की बातें कह देना, और अब हम भी अब आपको कहना चाहेंगे बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ये खूबसूरत सा रिश्ता हमारे साथ बनाए रखिए, दिल से दिल का।
2: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ, दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस मुरादाबाद।

और दोस्तों बाहर का मौसम इतना खूबसूरत है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये सुहाना सा मौसम, बस मन करता है कि गर्मा गर्मी कप चाय हो जाए और हाथ में मोबाइल हो और उस पर अपना फेवरेट गाना चल रहा हो।

0: वो मौके पे चांस आपने लगा लिया है। हाँ जी
1: मैंने मौके पे चौका मार
0: हाँ,
1: दिया
0: मौके पे
1: तो
0: चौका। या एब्सोल्युटली राइट। तो बताइएगा कैसे हैं आप डियर।
1: बहुत अच्छी हूँ मैम। आज मेरी छुट्टी तो मैंने सबसे कॉल कर ली जाए।
0: अरे वाह क्या बात है, छुट्टी का पूरा फायदा उठाया है आपने। हाँ
1: हाँ बिल्कुल मैम, जब छुट्टी लग जाती है ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे प्रोग्राम में कॉल करनी चाहिए।
0: जी बहुत अच्छा किया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी।
1: जी बहुत अच्छे हाल चाल है। आप बताओ भाई कैसे हो, बारिश वारिश हो रही है वहाँ पे?
0: हाँ जी मौसम बहुत ही औसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है हमारी सिटी में। आप बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है।
1: मेरी यहाँ मानसून से बारिश हो रही है।
0: अच्छा आज मॉर्निंग से बारिश हो रही है,
1: हाँ
0: ओके अच्छी बात है, मौसम कूल है। और आपको वैसे भी आपने कहा था ना कि मुझे कूल वेदर पसंद है।
1: शाम मुझे मतलब सर्दी का मौसम थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ
0: और अब बारिश होने के बाद तो थोड़ी सर्दी लगी रही है ना।
1: मतलब थोड़ा थोड़ा कह रहा है कि मैम जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे सर्दी आएगी,
0: हाँ जी हाँ
1: वैसे वैसे
0: जी
1: मौसम अच्छा होगा।
0: राइट एग्जैक्टली। और बताइएगा आप क्या कर रहे थे आज। लाइबा छुट्टी है आपकी, पूरा दिन कैसे मतलब आपका गुजर रहा है बताइएगा हमें।
1: और चुप बोल तो मैम, अगर मैं सच बताऊं तो मैं 12 बजे तक तो सोई हूँ।
0: ओके
1: उसके बाद मैंने घर का काम किया एंड फिर वही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया एंड अब 3 बजे तो मैंने सोचा कि मुझे कॉल करनी चाहिए। भाई ये भी मेरी एक फैमिली का पार्ट है।
0: हाँ हाँ एब्सोल्युटली। और अच्छा लगता है जब अपने फेवरेट शो में कॉल लग जाए तो होए दिल खुशी से झूमने लगता है।
1: अलग ही वाली बात है कि हाँ मेरी कॉल लग गई एंड क्या है ना कि मेरी दोस्त भी कॉल करेगी, दोस्त ने मुझे बोला है कि आप कॉल लगाओ फिर मैं लगाऊंगी। मैंने कहा
0: अरे
1: ठीक है लगा
0: वाह
1: के देखते हैं किसकी पहले लग जाती है। मैम
0: हाँ, तो आपकी कॉल पहले लगी है, बताइएगा लाइबा आप क्या सुनेंगे आज।
1: मूवी का नाम है आज का अर्जुन
0: हाँ
1: और उसमें एक सॉन्ग है गौरी है कलैया पिना दे मुझे हरी हरी चूड़िया।
0: अरे वाह, तो ला दी मुझे हरी हरी चूड़ियां, बिल्कुल हम आपको गिफ्ट करेंगे, टेंशन ना लो आप।
1: यस मैम, वैसे भी मतलब बारिश हो रही है तो मुझे लगता है कि एक अलग ही यूनिक सॉन्ग रहेगा।
0: हाँ हाँ बहुत प्यारा है। और बात अगर आपने चूड़ियों की है तो जब हाथों में बैंगल्स पहनती हैं तो खूबसूरत लगते हैं ना।
1: हाँ यस मैम, मैं डाल लेती हूँ, मैं सिर्फ मतलब एक या दो दो डाल लेती हूँ मैम। वैसे
0: हाँ
1: आपको क्या पसंद है मैम?
0: मुझे भी अच्छा लगता है, पर कहीं मैं इवेंट पे जाती हूँ या कोई फंक्शन होता है तभी मैं पहनती हूँ, एंड नॉर्मल तो नहीं पहनती हूँ।
1: मैम कहीं शादी वगैरह में जाना होता है तो मैं डाल लेती हूँ,
0: या
1: अदरवाइज घर में नहीं डालती। अरे
0: हाँ या फेस्टिव सीजन होता है तब सजना संवरना अच्छा लगता है।
1: वैसे भी आप तो मैम इतनी ब्यूटीफुल हो, आपको सही नहीं समझने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही बढ़िया
0: हाय
1: लगती हो।
0: होए इतनी तारीफ। हाँ जी ठीक है कि...
1: देखिए मैम मैं आप पे लाइन मार रही हूँ।
0: ओह माय गॉड, सारी ऑडियंस सुन रही है भैया, लड़की ने साफ साफ हमें क्या बोलते हैं
1: यस
0: प्रपोज कर
1: मैम
0: दिया।
1: देखियो, मैं मैम कभी भी मतलब ऐसे नहीं सोचती कि अगर सब सुन रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ ना बोलूं। बिल्कुल
0: जो दिल में है वो बयां कर ही देती है, आप लफ्जों पे आ ही जाते हैं, आपके
1: मैम
0: होठों पर आ ही जाती है दिल की बात जुबां पे। हाँ
1: यस मैम, जो कहते हैं ना कि कभी भी मैम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अगर मन में कोई बात है हम उसको जाहिर ना करें, सामने वाले को बता देना चाहिए, अच्छा फील होता है मैम।
0: अच्छा फील होता है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने ये बातें बोली ना, तो मैं कैसे खुशी को इसको बयां करूं, मैं सब खुद नहीं समझ पा रही हूँ।
1: अरे नहीं मैम सच में मुझे आप पता नहीं, मतलब जब से मैंने आपसे बातें करी और जब से मैंने आपको देखा है मुझे अक्सर कर फ्रोज ही भेजती है फोटो, तो मुझे
0: अच्छा
1: मतलब आप बहुत अच्छे लगते हो। मतलब मैं इंस्टा वगैरह तो यूज नहीं करती
0: हाँ
1: लेकिन वो ही भेज देती है मुझे फोटो वगैरह, तो मुझे वाकई में आप बहुत अच्छे लगते हो। लाइक आपकी स्माइल बहुत प्यारी है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, आप भी बहुत क्यूट हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, एंड लुकिंग भी आपकी बहुत प्यारी है।
1: हाँ ये मैम ये तो मुझे सब बोलते हैं कि वॉइस अच्छी है लाइव वाली।
0: हाँ वॉइस भी अच्छी है, लुकिंग भी बहुत प्यारी है, एंड देखने में भी लड़की बहुत क्यूट है। अब दोनों एक दूसरे की तारीफ
1: देखिए
0: करते
1: हाँ
0: रहेंगे।
1: बिल्कुल, लोग आगे समझेगी एक दूसरे में तारीफ हो रही है। नहीं
0: हाँ नहीं जो रियलिटी है वो तो है लाइबा, है ना।
1: मैम सब भी बहुत अच्छे हैं, जो भी
0: या
1: रेडियो पे जुड़ता है वो भी अच्छा है और जो नहीं जुड़ता वो भी बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं
0: हर
1: अपने में।
0: इंसान बिल्कुल दुनिया में हर इंसान बहुत प्यारा है। कहते हैं ना जब इंसान खुद अच्छा होता है तो उनको सब अच्छे लगते हैं।
1: हाँ मैं तो सबको अच्छा मानती हूँ, मैं किसी को ये नहीं पूछती कि इसका कलर ऐसा है तो ये मेरा दोस्त नहीं है, नहीं सब इक्वल है मेरे लिए
0: इक्वल है
1: तो। मैम
0: एग्जैक्टली, और अच्छा इंसान वही होता है जो किसी में भेदभाव नहीं करता है। तो मुझे ये
1: हाँ
0: बताओ लाइबा, आज आपने इस गाने को किसके साथ

0: सुनना चाहते हैं आप, कौन है आपके दिल के करीब?
1: मैम मेरे दिल के सबसे करीब फिलहाल तो एक ही बंदी है,
0: हाँ,
1: मैं सपोज फातिमा।
0: ओके, अरे वाह,
1: हाँ वो यहाँ से मेरे सबसे स्पेशल है फिलहाल, रेलियो की अगर देखी जाए तो।
0: हाँ,
1: उसके अदरवाइज मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ वरना वो बुरा मान जाएगी।
0: चलिए चलिए बताइएगा हमें।
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर से मैम मोहम्मद कामिल, अफरोज फातिमा, शबनम बी, रक्षा फातिमा, रुकैया, आसिया। एंड मैम आप और कितने भी सब सुन रहे हैं आज उन सभी के लिए स्पेशल सॉन्ग है।
0: ठीक है, तो सभी के साथ आपको सुनवाते हैं प्यारा से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए डियर।
1: मोस्ट वेलकम मैम, बाय
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए देखिए, हमारी प्यारी सी लिसनर से बातचीत हो गई है और फर्स्ट कॉलर बनी है हमारे शो की, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। वैसे एवरीवन आपको भी मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो बिल्कुल मिस ना करें आप। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896, इस पर जल्दी से कॉल लगाइए और अपना फेवरेट गाना खुशी को बताइए। खुशी यहाँ पर प्ले करेगी इस मौसम के अकॉर्डिंग। फिलहाल अभी सुनो एक खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी आशिक अर्जुन।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज का मौसम बड़ा ही सुहाना सा है, एकदम कूल मौसम हो गया है। और समय मैं आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है 3:23। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो,
4: हेलो फरमाइश,
3: हाँ जी हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका?
4: सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
3: आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
4: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नाम है सौदा मोहम्मद इशरत, आपसे बात कर रहा हूँ।
3: जी इशरत जी, बताइएगा कैसे हैं आप? सो
4: मैम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छे हो जाते हैं। मैम हमारे रामपुर में बारिश हो रही है, आपकी तरह मौसम कैसा?
3: हाँ जी, हमारे यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
4: मैम काफी नुकसान है इस साल किसानों को, धानों की फसल उठी नहीं रही मैम खेतों में से, बारिश नहीं टूक रही है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है तो कहीं बहुत हल्की है, लेकिन इस समय फसल जो है वो खेतों में तैयार है, धान की फसल।
4: जी, मैं देख रहा हूँ खेतों में फसल, मतलब धान की फसल काफी सड़ चुकी है मैम।
3: हाँ जी, वो पानी की वजह, पानी में गिर गई है ना तो वो खराब हो जाती है।
4: जी मैम जम जाती है ना, पानी में गिर जाती है।
3: हाँ जी हाँ जी, तो आपके यहाँ पर भी खेती होती है?
4: जी मैम बहुत होती है।
3: अच्छा, तो आपके यहाँ पर किस चीज़ की खेती करते हैं सर?
4: मैम इस टाइम तो धान की ज्यादा है।
3: अच्छा, धान की ज्यादा है,
4: चारों तरफ धान ही धान है।
3: अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ पर फसल कटी है अभी? नहीं
4: मैम, थोड़ी बहुत कटी है, बाकी सब खड़ी है खेत में।
3: अच्छा अच्छा ओके, तो इशरत जी बताइएगा,
4: बारिश नहीं होती तो मैम सभी फसल निबट सकती है अब तक?
3: हाँ जी हाँ जी, अभी खेतों में पानी वगैरह होगा ना इस वजह से।
4: जी
3: जी, तो मुझे आप बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं?
4: मैम आज मूवी का नाम है जीना मरना तेरे संग।
3: हाँ जी,
4: और गाने के बोलते मैम मैंने आपको बतला दिए हैं।
3: जी सर,
4: और कुछ सुनने वाले हैं?
3: जी बताइएगा।
4: मैम सबसे पहले ये ग्राम बीवीपुर से मकसूद हुसैन, ग्राम खेड़ा टांडे से मोहम्मद कामिल, स्वार्थ से विजय राठौर, साथ में आप और सभी सुनने वाले मैम।
3: ओके, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना आपको, आपकी पसंद का।
4: जी मैम थैंक यू, नमस्कार।
3: मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं इशरत जी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गाना, और आप भी मुझे कॉल लगाना मत भूल जाना। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896।

0: मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना अनुराधा पाटवाल साथ में कुमार सानू जी की आवाज में, फ्रॉम द मूवी जीना मरना तेरे संग। और अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहां से कनेक्ट हुए उन्हीं से बात कर जान लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार। जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताएगा आपका क्या नाम है सर?
1: मेरा नाम सचिन शर्मा है।
0: सचिन शर्मा जी, बताएगा कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया मैम, बढ़िया।
0: नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम।
0: जी
1: लगने था,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आज जो फाइनली आपकी मेहनत रंग लेकर आई है, आपको सफलता मिली, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मैडम
0: जी। आप रेगुलर कार्यक्रम सुनते होंगे और आपने बहुत सारे श्रोताओं की आवाजें भी सुनते होंगे, तो आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि काश मेरी आवाज भी रेडियो पर आए, है ना? हाँ जी, तो देखिए आपकी आवाज भी सभी ऑडियंस सुन रही है, आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैम राजा हिंदुस्तानी का फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
0: जी बताइएगा।
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है। ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। जी ओके सर, नमस्कार। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं सचिन शर्मा जी की रिक्वेस्ट पर ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से। और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस मौसम में प्यारे प्यारे गानों का आनंद लीजिए। हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार एंड नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगेन, 9837896896 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और खुशी के साथ ढेर सारी बातें करनी है, तो आप बिना किसी देरी के ना कॉल लगा सकते हैं।

0: ना अभी आपने सुना, और आप गाने सुनने के साथ साथ उसको फील भी कर रहे थे और गुनगुना भी रहे थे, है ना? ओहो, और हौली हौली मुस्कुरा भी रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये मुस्कुराहट ऐसे ही चेहरे पर बरकरार रखिएगा। और अभी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी, તમે કેમ છો?
0: મજામાં, તમે કેમ છો?
1: મજામાં
0: જી, બતાઈગા આપને નામ?
1: જી, મેં અક્કા ફિકનપુર જિલ્લા મુરાદાબાદ સે આપકી દોસ્ત અફરોઝ ફાતિમા બોલ રહી
0: હું। અફરોઝ ફાતિમા જી, યે બતાઈગા સબસે પહેલે કેસી હૈ આપ?
1: મે બહોત અચ્છી હું દી, ઓર આપસે બાત હો રહી હૈ તો ઓર ભી અચ્છા લગ રહા હૈ કે ઓર સબસે ઝ્યાદા અચ્છા તો ઇસ વજહ સે લગ રહા હૈ ક્યોંકિ આજ મેરી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કી કોલ આઈ તો મુજે બહોત અચ્છા લગ રહા હૈ દી।
0: हाँ, वो तो खुशी आपकी बातों में झलक ही रही है। जब बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाए और जब वो ऑन एयर रेडियो पर अपने दोस्त का नाम लेती है ना, तो दिल अलग ही यू नो खुशी के, मतलब कह सकते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है ना।
1: दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
0: दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हाँ, बताएगा
1: फैमिली में सब कैसे?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। अफरोज, आप बताएगा आपके यहाँ पर सब ठीक है?
1: हाँ, मेरे यहाँ पे भी सब ठीक है
0: जी। और बताइए, मौसम कैसा है अभी करंटली बाहर का वेदर?
1: मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है दी, क्योंकि आज लग रहा है कि हाँ सर्दियाँ आ गई है।
0: अच्छा, स्टार्ट हो गई है, ऐसा सुहाना सा मौसम है। अभी कैसा है, मतलब बादल है या फिर धूप खिली है?
1: बादल छा हुए हैं और कुछ टाइम पहले मतलब बूंदाबांदी हो रही थी।
0: अच्छा, बादल आसमान में है। तो बताइएगा अफरोज, इतना प्यारा सा मौसम है, आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी, आज मैं सॉन्ग सुनूंगी दामिनी मूवी का।
0: हाँ, अच्छा, अरे वाह, आप कहने वाली थी खुदा गवाह है, वो एक ट्रैक भी खुदा गवाह है ना
1: दीदी? कभी-कभी हो जाता है ऐसा।
0: हाँ, ऐसा हो जाता है बिल्कुल। हम कहना कुछ और चाहते हैं बट जुबान कुछ और बयां कर देती है। फिसल जाती है, जैसे हम बनाना खाते हैं और उसका छिलका हम फेंक देते हैं, फिर किसी का भी पैर उस पर पड़ता है तो वो इंसान स्लिप हो जाता है। ऐसे कभी कभी जुबान में फिसल जाती है ना।
1: लेकिन हमें बनाना खा के इस तरह से छिलका फेंकना
0: नहीं चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। और पता है आपको, उस बनाने जो हम बनाना खाते हैं उसका जो छिलका है वो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, पता है कैसे? हम उसको ना स्किन पर अपनी लगा सकते हैं एंड उससे हमारा जो स्किन है ना वो यू नो ब्यूटीफुल हो जाता है एंड मॉइस्चराइजर मिल जाता है स्किन को, जिसके मैंने कहा जो छिलका होता है ना बनाना का, उसको ना आप फेस पर रब कर सकते हैं, जिसकी स्किन ड्राई होती है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। या हाँ, मैंने तो लगाया है। मैं तो कोई भी चीज़ को ऐसे ही यू नो ख़राब नहीं करती हूँ। एंड जैसे हम ऑरेंज खाते हैं संतरा, तो उसके जो छिलके होते हैं ना उनको हल्का सा यू नो सुखाने के बाद हम ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और जब कोई फेस पैक लगाना होता है तो उसको भी उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वो स्किन के लिए अच्छा होता है। और प्रकृति की कोई भी चीज़ होती है ना तो वो ख़राब नहीं होती है डियर, उसको हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए।
1: या हर किसी को नहीं आता ना ये इस्तेमाल करना भी
0: है। हाँ, ये भी है, डिपेंड करते हैं ना हमारी स्किन कैसी है, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो हाँ। उसी अकॉर्डिंग चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, है ना? या हाँ। तो आप मुझे बताइएगा, आपने इतना प्यारा सा गाना सुनना चाहा है और किसके लिए सुनना चाहे ये तो बताइए, कौन है वो दिल के करीब आपके?
1: दीदी, ये तो बस एक ही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा।
0: हाँ, ओ, जिनका अभी अभी कॉल आया था।
1: हाँ दी।
0: कैसा लगा आपकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया, फर्स्ट कॉलर वही हमारे शो की बनी?
1: बहुत अच्छा लगा दी, और मुझे मतलब मैं सोचा नहीं था कि फर्स्ट कॉल उनकी होगी।
0: हाँ,
1: आवाज सुनी रेडियो पे तो बहुत अच्छा लगा।
0: अरे वाह, आपको सरप्राइज मिल गया। हाँ
1: दी।
0: अच्छा,
1: मजा ही कुछ और
0: होता है। हाँ जी, और फ्रूज आज कोई शायरी वगैरह सुनाना चाहते हैं आप?
1: हाँ दी बिल्कुल, मैंने एक शायरी खुद से लिखी है। अरे
0: वाह, क्या बात है, इरशाद इरशाद फरमाइए मोहतरमा।
1: उम्मीद करती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद आएगी ये।
0: डेफिनेटली, आपने इतनी शिद्दत के साथ लिखा है और उसको आप इतने खूबसूरत अल्फाजों में बयां कर रही हैं तो अच्छा ही लगेगा।
1: गुलाब के फूलों की महकती है तेरे गालों की लाली, गुलाब के के फूलों की महकती है, तेरे गालों की लाली, तेरी एक मुस्कान से उठती खिल उठती है दुनिया सारी। खुदा से दुआ है बस मेरी, खुदा से बस दुआ है ये मेरी, कभी फीकी ना पड़े तुम्हारे चेहरे की ये लाली।
0: अरे वाह, क्या बात है, आप तो बिल्कुल नहीं फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि आपने इतने प्यार से जो उनको बोला है ना, अब वो उनके जो चीक्स है वो और शाइन कर रहे हैं।
1: तो मैं शायरी और अर्ज करना चाहती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल सुनाइएगा।
1: बोलती है दोस्ती और चुप रहता है प्यार, बोलती है दोस्ती और चुप रहता है प्यार, हंसती है दोस्ती और रुलाता है प्यार, मिलती है दोस्ती और जुदा करता है प्यार, मिलती है दोस्ती और जुदा करता है प्यार, फिर भी लोग क्यों दोस्ती को छोड़कर करते हैं प्यार।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, कमाल ही कर दिया आपने तो। हाँ और बताइएगा फ्रूस, और कौन सुनना चाहते हैं आपके साथ में ये प्यारा सा गाना?
1: दीदी जैसे कि मेरे साथ में मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा।
0: हाँ जी।
1: नजमा, ओके, राबिया, रुकैया, आशिया और रामपुर से है शबनम दी। अगर शबनम आपकी हो सही हो तो वो कॉल कर ले आज, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम दोस्तों की कॉल शामिल हो रही है तो हमें मतलब मैं सोच रही हूँ कि उनकी कॉल भी आ जाए तो और मतलब बहुत अच्छा लगेगा, सो मच चार टाइम लग जाएंगे।
0: अरे वाह क्या बात है, अब तो वो शिद्दत के साथ कोशिश कर रही होंगे कि अब तो कॉल लगा कर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आपने इतनी प्यार से बोला है तो वो भी कॉल लगाने कॉल लगा रही होंगी, ट्राई कर रही होंगी, तो चलो ये प्यारा सा। हाँ जी डेफिनेटली राइट डियर, अभी सुनिएगा ये खूबसूरत गाना।
1: उन्होंने बोला था ना,
0: हाँ
1: उन्होंने बोला था सबनम आपकी ने कि लाइबा और अफरोज फातिमा कॉल करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब वो कॉल करती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, अब तो पक्का कॉल लगाने में बिजी हो गई है और आज उन्होंने ठान लिया है कि कॉल लगा कर ही रहूंगी। चलो आप गाना एंजॉय करो एंड शायद नेक्स्ट कॉलर वही हमारे शो की बन जाए, है ना?
1: थैंक यू दी, मोस्ट वेलकम,
0: मोस्ट वेलकम डियर, बाय। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और शो का नाम है हेलो फरमाइश। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना फेवरेट गाना सुनने का आपको मौका यहाँ पर मिल रहा है, तो क्यों मिस करना है इस चांस को। नंबर मैं आपको बताती हूँ, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:57। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मोहम्मद रिजवान, जिला मुरादाबाद।
0: हाँ जी, हेलो सर, हम तो ठीक हैं, आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: एक गाना सुनेंगे, इक्का राजा रानी मूवी का गाना है, छन छन करती है ये नीली पीली चूड़ियां।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत ट्रैक, लौट कर आते हैं हम, आप भी हमें कॉल लगाइएगा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
3: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
2: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: हाई विवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुनाई प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी एक राजा रानी से, और इस खूबसूरत गीत को गाया था उदित नारायण जी ने, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ जी, आवाज आ रही है।
0: हाँ जी, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी, राजस्थान सलमानगंज डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी, नाम बताइएगा अपना।
1: हाँ जी, बबूल सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा आप सर, राजस्थान का वेदर कैसा है?
1: हाँ जी, आज तो मौसम बढ़िया है, मतलब बारिश हुई थी कल।
0: अच्छा, ओके, राजस्थान में भी बारिश हुई है आज?
1: हाँ जी,
0: ओके सर, बताइएगा।
1: बढ़िया ठंडा मौसम अभी फिलहाल तो।
0: ओके, वेदर अब चेंज हो गया है तो मुझे आप ये बताइएगा सर, आप क्या करते हैं,
1: मतलब
0: आप क्या करते हैं प्रोफेशनली लाइफ में?
1: कुछ नहीं, मतलब करते रहते हैं और काम करते हैं नहीं फिलहाल तो।
0: अच्छा, ओके, तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: अभी कर्म उजला का सॉन्ग सुना दीजिए सर, जो न्यू शो हो गया है।
0: ओके, अभी न्यू ट्रैक, राइट?
1: हाँ जी, नया
0: ठीक है सर,
1: उसको आप सुना दीजिए।
0: ओके ओके, आप एंजॉय कीजिएगा, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: ठीक है
0: जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं करण औजला जी का न्यू ट्रैक, एंड बहुत ही प्यारा गाना है, आप एंजॉय कीजिएगा एंड मुझे कॉल भी लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।
2: Well, let's change that, shall we?
3: A splendid idea, sir.

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फ्रिक्वेंसी आपको याद है ना, 89.6। तो चलिए भी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं? हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी? जी बताइएगा, कौन सा गाना आपको सुनना है? अच्छा फर्स्ट टाइम कॉल लगाया आपने। एफएम कब से सुन रहे हैं आप? नहीं, मैंने आपसे मालूम किया है कि आप कब से सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, कितना समय हुआ आपको? अच्छा अच्छा, अभी टाइम नहीं मिल पाता है काम के सिलसिले की वजह से। बचपन में आपने बहुत ही ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, अभी भी आप सुन लेते हैं, समय मिलता है आपको। तो बताइएगा आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? अच्छा ये गाना आप सुनना चाहते हैं? ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए विवान, सर ने ट्रैक की रिक्वेस्ट की है, तुम याद ना आया करो, लेकिन हम तो देखिए याद भी आते हैं और रोज आपसे बातचीत भी करने आते हैं। एंड देखिए, मुझे पता है कि आप भी हमें कॉल लगा रहे हैं। कुछ तो श्रोता सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं मैम से बात करूं। तो ना उसके लिए आपको बहुत सिंपल काम करना है। आपको क्या करना है, जो आपका मोबाइल है ना, उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर आपको डायल करना है। और हमारा मोबाइल नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896938 3786। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है एंड आप इसे डायल कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा। फिलहाल सुनिए प्यारा सा गाना।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसी 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: देखिए दोस्तों, या तो हम आएंगे ही, अगर हम याद नहीं आएंगे तो आप हमें फोन कैसे लगाएंगे, है ना। तो हम याद भी आएंगे और स्टूडियो रेगुलर हम आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं एवरी इवनिंग, आपकी इवनिंग को, आपकी दोपहर को खूबसूरत बनाने के लिए आफ्टरनून। एंड अभी वक्त मैं आपको बताती हूँ, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:24 और गाना बहुत प्यारा सुना आपने, तुम याद ना आया करो। देखिए रियल में ना सही, लेकिन यादों में तो आना चाहिए ना, क्यों। चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो, क्या नाम है आपका सर? उमेश कुमार प्रजापति जी, लोधीपुर मुरादाबाद से बात कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
0: ओके बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम जी एक सॉन्ग सुनवा देना।
0: जी बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: सॉलिड बॉडी।
0: अच्छा, आपको हरियाणवी गाने बहुत ज्यादा पसंद है ना? तभी उमेश जी हमें हरियाणवी गानों की ज्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे गाने हरियाणवी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए हम सुनवाते हैं ये गाना, आप इंजॉय कीजिएगा। ओके
1: ठीक है
0: सर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं उमेश जी की रिक्वेस्ट पर ये अमेजिंग ट्रैक। और सॉलिड बॉडी बनाने के लिए भैया आपको भी अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, रोज बाहर का जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आपकी भी सॉलिड बॉडी बन पाएगी, क्यों रीना?
2: यस
0: यस। चलो एवरीवन, मैं आती हूँ वापस, आप कहीं मत जाइए, कॉल लगाइएगा हमें।

0: हाँ जी एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक सॉलिड बॉडी. और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. हेलो फरमाइश. हाँ जी सर, नमस्कार. जी बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा आप कैसे हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी एफएम सुनने वालों को भी बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं.
0: जी अपना शुभ नाम भी बता दीजिएगा.
1: माता रानी सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए.
0: बिल्कुल, जब इतने सच्चे मन से सच्चे भक्त प्रार्थना करते हैं तो माता रानी तो एक्सेप्ट करती ही है.
1: सही बात है.
0: हाँ जी बताइएगा अपने नाम से और कहाँ से बात कर रहे हैं आप.
1: मैं गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ मैम.
0: अच्छा वही गौरव जी हैं जो सुबह मॉर्निंग में मैसेज पहुँचा देते हैं.
1: जी जी जी
0: जी बताइएगा.
1: यहाँ खुशी होंगी वहाँ तो गौरव टेलर जरूर मैसेज करेंगे.
0: अरे वाह क्या बात है सर. और बताइए कारोबार कैसे चल रहा है आपका.
1: कारोबार ठीक चल रहा है, तो होने वाला है.
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अभी फेस्टिवल सीजन भी नवरात्रि स्टार्ट हो गया, अब शादियाँ भी शुरू होने हो जाएंगी.
1: शादियाँ भी शुरू हो जाएंगी.
0: जी जी जी तो बताइएगा सर आज क्या सुनना चाहते हैं आप.
1: आज सुनना है मैम गाना दाग दे फायर का, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया.
0: ओहो ढूंढ कर लेके आते हैं चलिए हम.
1: जी जी
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको.
1: धन्यवाद.
0: मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत से गाना एंड मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, आप कहीं मत खो जाइएगा. ठीक है हमारा ऑफिशियल हमारा नंबर है 9837898968.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में, साथ में कुमार सानू जी दे रहे थे साथ। और अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, हमारे साथ कौन कहां से कनेक्ट हुए हैं उन्हीं से बात करके जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, राधे राधे।
0: राधे राधे आपको भी। क्या नाम है आपका सर?
1: सर
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी बढ़िया है, बस मौज आ रही है ऊपर वाले की कृपा की और नवरात्रि के नवदुर्गा।
0: हाँ जी हाँ जी, नवरात्रि के नवरात्रि का आज पांचवा दिन है और आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर।
1: जी जी आपको भी।
0: जी बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: हाँ, आज मैंने कॉल किया है और माता रानी के ऊपर ये जाना है, फिल्म का नाम है अवतार और गाने के बोल है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, ये वाला गाना है।
0: अरे वाह।
1: और मैं अपने परिवार के कुछ लोगों के नाम दे सकता हूँ?
0: हाँ जी हाँ जी, ले सकते हैं सर।
1: हाँ, जैसे मेरे परिवार के सदस्य हैं मीना, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आकल, आकांक्षा, आकाश और पंजी राय संभल से हैं, छोटे अंसारी और नूरियत राय संभल से हैं, बिक्की और आंचल सैनी, ये हम सभी लोग सुनना चाहते हैं गाने।
0: जी जी बिल्कुल, सभी के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।
1: जी राधे राधे।
0: राधे राधे। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी और हम भी माता रानी को याद करते हैं। चलिए इस प्यारे सी हाजिरी के साथ।

0: हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पीस मेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
1: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
0: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आप यही सोच रहे होंगे ना कि ओहो आज जरीना कैसे बीच में टपक गई है। भैया देखिए, जब भी मेरे को मौका मिलता है ना तो मुझे लगता है कि आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। हेलो फरमाइश शो चल रहा है और समय की बात की जाए तो 4:43 हो चुके हैं और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। देखिए खुशी जी बहुत जल्दी कनेक्ट होंगी, वो थोड़ा सा काम आ गया तो उनको जाना पड़ा है। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी मैम बोलिए, नमस्कार।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो? और एफएम मुरादाबाद में सभी लोग कैसे?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हमारे एफएम मुरादाबाद में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका?
1: जी रिदीमा, रामपुर से शबनम भी बात कर रहे हैं आपसे।
0: ओके जी, बताइए रामपुर का वेदर कैसा है इस टाइम?
1: इस टाइम रामपुर का तो मौसम का मुझे नहीं मालूम दीदी, इस टाइम तो संभल से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा आप रामपुर में, क्या आपका घर है, मायका है?
1: जी।
0: ओके तो बताइए कौन सा?
1: यहाँ का तो मौसम बहुत अच्छा, अभी बारिश हुई थी, अब बादल हुए।
0: ओके तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी दीदी, गाने को बोल है तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार। और दीदी मैं कुछ कहना चाहूंगी फातिमा जी से।
0: जी बोल बोलिए
1: जी, मैं उनसे कहना चाहूंगी, उन्होंने जो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके डाली थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी शायरी और उनकी बातें बहुत प्यारी लगी थी। और मैं यही कहना चाहूंगी, उन्होंने बोला था मुझसे आप ही मेरा नाम बोला करें और वो मुझे आप ही बोलती है, ये तो चिटिंग हुई हमारे साथ।
0: दोनों इसी बात में पंगा करती रहो आप दोनों। हाँ जी,
1: सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम सलाम मोहतरमा, बताइए क्या हाल है आपकी?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा। आप अपने दोस्त के बारे में इतना आज प्यारा प्यारा बोल रही हो, रीना जी के बारे में बताइए कुछ दो अल्फाज।
1: और मैं खुशी जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मतलब उन्होंने आपके पास बात डाली थी और आपने मेरे तक पहुँचाई।
0: अरे ये तो हमारा काम है मैम, खुशियाँ बांटना खुशी का काम है
1: जी। और मैं कहना चाहूंगी आप अगर सुन रही है ना, तो अगर वो अपना नंबर बोल लेती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता।
0: ओहो
1: हो सके तो
0: वो भी ओनियर बुलवा रही हो, देख लो।
1: नहीं ऐसे नहीं बुलवा रही हूँ, मतलब वो खुशी तक पहुँचा दे, वो डाल देंगे मेरे पास।
0: ओके अच्छा ये बताइएगा आप कहाँ डाक खाने में डालना है क्या? मैम ये बताइए, मैंने आपसे जानना चाहा है शबनम जी, बाहर इतना खूबसूरत मौसम है तो आपने इस खूबसूरत से मौसम में क्या बनाया है आज अभी इवनिंग में?
1: जी दीदी, इस टाइम तो मैं मूली की भुजी बना रही हूँ।
0: अरे वाह वाह क्या बात है,
2: खुशबू को खुशबू आ गई है इसे।
0: अच्छा तो बताइए शबनम जी, हम भी आ जाए आपके यहाँ पर?
1: जी बिल्कुल दीदी, आपको तो बुलाते हैं हम लेकिन आप आती कब हो?
0: ओहो हम भी तो आपको बुलाते हैं लेकिन आप भी तो नहीं आती हैं।
1: जी मैं तो आ ही जाऊंगी क्योंकि मेरा तो निकलना बनना रहता
0: है। तो आ ही जाइए, तो बस आ ही जाइए एक दिन, रीना जी भी कह रही हूँ और देखिए मैं भी कह रही हूँ, तो हम दोनों की रिक्वेस्ट है आप आइए फिर हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है
1: जी, मैं तो आऊंगी जरूर लेकिन आप भी आना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल हम भी आएंगे।
2: अरे आओ और लेके चलो हमें
1: दीदी, आपसे तो मेरे सपनों में बात होती रहती है।
0: सपनों में हाय।

0: ना
1: सपने में तो नहीं
2: आपके इतने सपने आते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ सपनों से। मैं कहती हूँ हकीकत में तो बात हो नहीं पाती है, सपनों में आती हूँ फिर दीदी। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ?
0: क्योंकि मैम जिनसे हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, तो हम मतलब वो हो जाती हैं चीजें जो हमारे माइंड में चलती रहती है ना, ड्रीम में भी वही आता है
2: जी।
0: तो मुझे बताइएगा शुभनम जी, आप क्या सुनना चाहेंगी आज?
2: दीदी आज एक गाना है, तेरी मेरी दोस्ती और तेरा मेरा प्यार। और ये गाना मैं सबसे पहले तो खुशी जी को और अफरोज फातिमा जी को डेडिकेट करूंगा।
0: ओहो हो, क्या बात है, डेडिकेट करना चाहती हैं प्यारा से गाना। बहुत बहुत शुक्रिया शुभनम जी, आपने हमें कॉल किया।
2: सबसे पहले तो यह है लाइबा काजमी, अफरोज फातिमा, अनम भी, आप और हम।
0: ठीक है मैम, सभी के साथ सुनवाते हैं गाना, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार। अमेजिंग खूबसूरत ट्रैक, और अब इंजॉय कीजिएगा। मैं वापस आती हूँ इस गाने के उस पार।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 5:03 एंड अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार। एंड दोस्ती ना बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का, और जिनको सच्चे दोस्त मिल जाते हैं ना वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। अगर आपके पास भी आपकी सच्चे मित्र है ना, तो उनको मैं आपसे कहना चाहूंगी कि उस दोस्ती को ना हमेशा बरकरार रखिएगा एंड किसी की नजर ना लगे, बस आप ऐसे ही खुश रहिए। बाकी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, हमारे साथ कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं एंड उनका यहाँ पर तो चलिए एवरीवन, अभी तो हमारे पास एक कॉलर हमारे जुड़े हैं एंड क्या उनकी रिक्वेस्ट आई है वो हम उन्हीं से जानते हैं और बातचीत कर लेते हैं।

0: से बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो फरमाइश। अच्छा, मैंने कब कहा कि आप इंडिया से बात नहीं कर रहे हैं? अपना नाम तो बताइएगा।
1: मेरा नाम है यहाँ से वहां तक।
0: सर प्लीज नाम बताइए ना अपना।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताइएगा।
1: हेलो
0: हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपको?
1: यस मैम, बोलिए।
0: जी ओके, बताइएगा कौन सा ट्रैक आज आप सुनना चाहते हैं?
1: तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता।
0: अच्छा ठीक है, ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो चलिए विवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं आपसे मुलाकात करूंगी मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपका कॉल नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर गानों को इंजॉय कीजिएगा, हैप्पी रहिए, आपको ये मौका कल भी मिलने वाला है। ठीक है, तो बस आप ये प्यारे प्यारे गाने सुनते जाइए, बाकी हैप्पी रहिए और वंस अगेन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। टेंशन नहीं लेनी है आपको, हैप्पी रहना है।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी अर्जुरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं और समय की बात की जाए तो 5:10 और अगले 2 घंटे तक आप सभी के साथ इवनिंग मस्ती शो में मैं कनेक्ट रहने वाली हूं और करेंगे ढेर सारी बातें आज के स्पेशल डे के बारे में और मौसम के बारे में। तो आपको कल ही पता चल गया था ना जब मैंने बताया आपको, लेकिन ये मौसम ना अभी 2-4 दिन ऐसे ही रहने वाला है। अलग अलग इलाके में बताई जा रही है कि 25 राज्य में ये बारिश की संभावना और मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। तो बस अब देख लीजिए कि देखिए ठंड ना बर्फ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ना दस्तक दे गई है, बस अपनी तरफ रह गई है, वो भी मिल जाएगी आपको ठंड बहुत जल्दी। आज तो वैसे भी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ भैया बाहर जाने ना तो मन ही नहीं करा बाहर जाने का, क्योंकि फुल स्लीव के कपड़े पहनने के लिए आपको मजबूर कर दिया जाएगा आज। इसी के साथ आज के स्पेशल डेज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आप सभी के बीच में।

0: हाय हाय, ये गाना भैया बहुत ही ज्यादा ट्रेल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। इंस्टाग्राम आप जब भी ओपन करके देखेंगे तो कोई स्टोरी बना रहा है, कोई रील बना रहा है, हर कोई इस गाने के दीवाने हो चुके हैं। जो भी गाना नया रिलीज होता है ना, बस जब तक उस गाने को सुन सुनकर बोर ना हो लेना, तब तक उस गाने को सुनते ही रहेंगे। इतना सुनते हैं कि अगली बार सुनने की वो मौका ही नहीं छोड़ते हैं, भाई इस गाने को इतना सुनते हैं। वैसे ही ये गाना इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और रील्स की तो बात ही मत करो। और साथ ही साथ आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। समय की बात की जाए तो 5:19 हो चुके हैं और आज की तारीख 15 अक्टूबर अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और नवरात्रि का 5वां दिन है। स्कंद माता की पूजा की जाती है आज के दिन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी की जो कृपया है ऐसी आप सभी के ऊपर बरसती रहे, हमेशा उनका साथ बना रहे आपके जीवन में। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि ऑफिस से निकलने का समय हो गया है और साथ ही साथ अभी बहुत से जो हैं उनकी जो छुट्टी हुई है 8 होने वाली है सो, और बहुतों की नाइट शिफ्ट भी शुरू होने वाली है, तो बस घर में खाना वाना की तैयारियां चल रही है जिनकी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली है। तो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे, जब भी आप ट्रैफिक में जाए तो हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए और हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि ये पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पहनते हैं तो आप सेफ रहते हैं और साथ ही साथ मौसम ने करवट ले ली है, यानी कि अपने मुरादाबाद का टेम्परेचर 27 है आज और बाहर ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही है, यानी कि आज ठंडक वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन बहुत जल्द यानी कि ठंड भी दस्तक देने वाली है। पहाड़ों में तो ठंड दस्तक दे गई है बर्फ के साथ साथ, और जरा अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना भैया, जहाँ पर पानी सड़कों पर भर जाते हैं तो वहाँ गाड़ी आपने स्लो चलाना है, ये नहीं कि दूसरे वाले के ऊपर छींट आपने गाड़ी इतनी तेज चलाइए कि छींटी लग जाए, इसलिए इस चीज़ का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि उनके भी कपड़े खराब ना हो और फिर वो आपको कुछ बोले भी ना, तो प्रॉपर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हेलमेट और सीट बेल्ट तो भैया कुछ भी हो जाए इसको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, मैं ये कहती हूँ जब भी आप निकले तो इन चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि हाँ भैया पहली प्रायोरिटी हमारे लिए हेलमेट और सीट बेल्ट है। आप इन्हें को पहनते हैं तो आप सेफ रहते हैं, अपने घर भी सेफ पहुंचते हैं। और इसी के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूं और करेंगे हम यहां पर ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज सच बताऊं ना बहुत ही स्पेशल डे है और जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूं ना, उनका सपना कुछ और था लेकिन गए वो किसी और फील्ड में। कहते हैं ना भैया जिनका जो सपना होता है ना उसे आपको बढ़कर मिलता है, जो आप सोचते हो जो आपको नहीं मिलता है ना, लेकिन उस भगवान ने सोचा होता है कुछ आपके लिए अच्छा ही, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बात करेंगे इसके गाने के बाद।
1: माँ ने, माँ, पहला लबियां भरियां बाज तो ना आ भी जंगल।

0: डांस बसंती।
1: बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, डांस बसंती। और इसी के साथ आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है श्रोताओं। और जो ये टेम्परेचर आज मुरादाबाद का है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये मौसम अभी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 17 तारीख तक मौसम ऐसे ही डगमगाने वाला है। यूपी के 23 राज्यों में बारिश आंधी की संभावना जताई जा रही है, साथ ही साथ 75 की रफ्तार में हवाएं चलने वाली हैं। सो अपना ध्यान रखिए। और देखिए, ठंड अब बढ़ती जा रही है, तो आप शाम को बाहर जाते हैं तो फुल स्लीव के कपड़े ज़रूर पहनिए, क्योंकि कहते हैं ना, आता ठंड और जाता ठंड, ये हमें बीमार करके जाता है। और आप देख भी रहे होंगे, जब मौसम चेंज होता है तो बहुतों को कोल्ड हो जाता है, खांसी जुखाम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भैया वो बाहर निकलने के लायक ही नहीं रहते हैं। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए। और इस मौसम की बारिश में अगर आप गीले हो जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप घर जाकर कपड़े जल्दी हो सके चेंज करिए, अदरवाइज़ आप ज़्यादा देर तक गीले में रहेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि इस जब बदलता मौसम है ना, आप इसमें ही आपने ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे ध्यान रखना है। अगर आपने इस टाइम अगर ध्यान नहीं रखा तो भैया पढ़ सकते हैं बीमार। ठीक है जी, तो अपना ध्यान रखना है। और कुछ मैसेज भी आए हैं, जरा मुझे लगता है कि शामिल करना बहुत जरूरी है। हेलो रीना जी, गुड टू हेयर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। और इनका कहना है कि हम दोनों फ्रेंड जिन्होंने एक साथ कंसीव किया था और हमने एक साथ जॉब भी किया था साथ ही में। और इनका कहना है कि मैम मिठाई खिलाने आएंगे, एड्रेस शेयर कर दीजिए। देखिए अभी एड्रेस हम आपको शेयर नहीं करेंगे। अब आप ये पूछिए एड्रेस क्यों नहीं मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा चल रहा है फास्ट, और फास्ट में आप बाहर का खाना बोलेंगे मिठाई बोलेंगे तो ये तो मतलब दावत में थोड़ी सी कच्चापन रह जाएगा। इसीलिए जब मेरा फास्ट खत्म हो जाएगा तब आप आइएगा, तब मैं आपको एड्रेस शेयर करूंगी। अभी नहीं, अभी 19 तारीख तक मेरा फास्ट रहने वाला है, तो अभी कोई पार्टी नहीं करने वाले हम। हाँ जी बिल्कुल, मिलते हैं हम आपको 20 तारीख के बाद, करेंगे ढेर सारी बातें। और आप भी हमेशा खुश रहिए, बहुत प्यारी हैं आप। शर्मिला जी, मतलब आपका नाम मैं थोड़ा भूल रही हूँ, मुझे देखना पड़ेगा।
2: जाने जाना मेरी जाने मन, बॉडी तेरी लगे लाइक अ डायमंड, वन इन अ मिलियन बेबी गर्ल, देखो तुझे तो मेरा निकले है दम।
1: आप ही मैसेज कर दीजिएगा, मैं ना प्रिंसी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रिंसी जी मेरे दिमाग से ना स्किप हो गया था। और थैंक यू सो मच कि आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हमें कनेक्ट किया और रेडियो आप सुन रही हैं। आई होप कि आप विद फैमिली के साथ बहुत हैप्पी होंगी, बहुत खुश हैं आप, क्योंकि आपका मैसेज आया तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आपका मैसेज आया है और आप यूं ही खुश रहिए। और जो आपने गाना बताया ना, वो गाना मैंने जस्ट अभी प्ले किया है, तो एक्चुअली मैं वो गाना दोबारा रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो आप सुनना चाहती है कोई और गाना मुझे मैसेज कर सकती है मैम, क्योंकि हम दो गाने, मतलब जो गाना मैंने प्ले कर दिया वो रिपीट नहीं कर सकती हूँ। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी, जय श्री राम, गौरव टेलर नवीनगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, वेरी गुड इवनिंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। और इसी के साथ मेरा आज आपसे एक क्वेश्चन भी है, जिन महान विभूति के बारे में बात करने वाले हूँ तो ये क्वेश्चन तो पहले आपसे पुट अप करना बनता ही है। ये क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही आसान वाला है। अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं होता तो क्या आप सपना देखना छोड़ देंगे? मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आपको हमें मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि अगर आप कोई सपना देखते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो क्या आप सपना देखना भूले जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं? ये क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, आप फटाफट हमें मैसेज करके बताइए। और जुड़े रहिए आर्जेरीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए जी, फिलहाल तो कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम है।
3: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
6: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती हैं लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। जय माता दी। और आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। स्कंद माता की पूजा की जाती है और समय की बात करूं तो 5:40 हो चुके हैं। और आज की तारीख 15 अक्टूबर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जन्म जयंती, यानी कि एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रेरणा जिनके सपने आज भी भारत को आगे बढ़ने की राह दिखाती है। तो आज मैंने आप सभी से ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा भी है कि अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं होता तो क्या आप सपना देखना छोड़ देंगे या फिर मेहनत करेंगे, या आप सोचेंगे कि चलो इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है तो अपने लिए बैकअप भी कुछ आप रखेंगे, क्योंकि कभी कभी जिस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं वो हमारे नसीब में नहीं होता है और भगवान उससे बढ़कर हमें देता है। तो हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस आप करिए, अच्छी बात है। जब आप बार बार उसमें नहीं सफल हो पा रहे फिर भी मेहनत करिए, और जब आपको लग रहा है कि रास्ता बंद है तो बैकअप दूसरा तैयार करिए, क्योंकि हमें कभी हार माननी नहीं चाहिए। चलिए, तो आज इनकी जयंती है और इनके बारे में बात करते हैं। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी पायलट बनना चाहते थे। उनका सपना था कि मैं पायलट बनूं, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए, अगर वो हार मानकर बैठ जाते तो क्या हम उन्हें भारत के मिसाइल मैन कह पाते, नाम दे पाते उनको? नहीं ना। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। कलाम साहब ने अपनी असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। अपनी मेहनत, लगन और ज्ञान के दम पर उन्होंने विज्ञान की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया कि पूरा देश उन पर गर्व करने लगा। तो आज सभी बच्चों से और जो अपने जिंदगी में हार मान गए उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, और हमारे अब्दुल कलाम जी भी, तीन लाइन बड़ी उनकी जिंदगी का प्यारा लाइन है और वो हमसे एक ही सीख देते हैं कि उनकी जिंदगी में हमें तीन बातें हमेशा सीखनी चाहिए। पहला वो क्या कहते हैं, बड़ा सपना देखो, हमें हमेशा अपनी औकात से ऊपर सपना देखो, जो भी हो जाए देख लेंगे लेकिन हमेशा खुद के औकात से ऊपर सपना देखिए। दूसरी बात, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। जब आप औकात से बाहर सपना देखेंगे तो मेहनत भी औकात से बाहर ही करनी पड़ेगी आपको, मतलब ऐसा मेहनत करो कि दुनिया देखती रह जाए आपको। सिर्फ इसलिए याद ना किया जाए कि बहुत मेहनत करता था लेकिन हो नहीं पाया, आपको इसलिए याद किया जाए कि इसने मेहनत किया और हासिल उस मुकाम तक पहुंचा है, तो आपने इस हद तक मेहनत करनी है। तीसरी बात ये कहते हैं, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता तलाशो, क्योंकि कोशिश करना मत छोड़िए। जब आपको लग रहा है कि मुझे बार बार इसमें नहीं मिल पा रहा है परिश्रम, तो दूसरा रास्ता अपनाओ। क्योंकि सोचिए, अब्दुल कलाम जी अब पायलट बनने की सपना देख रहे थे, उनका सपना था, अगर वो छोड़ देते कि चलो यार मैं पायलट ही नहीं बन पा रहा हूँ तो मैं कुछ और करूँगा ही नहीं, मैं हार गया जिंदगी से, अगर वो हार जाते तो हम मिसाइल मैन उनको कभी नहीं कह पाते, कभी नाम ही नहीं दे पाते उनको। तो इसीलिए जिंदगी में हार जीत तो है ही, यही जिंदगी, असली जिंदगी, लेकिन आपने हिम्मत कभी नहीं हारना है। याद रखिए, परीक्षा में नंबर कम आना, किसी प्रतियोगिता में हार जाना या किसी काम में असफलता होना आपकी जिंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि जिंदगी की नई राह, नई शुरुआत होती है। आपकी आज की असफलता कल की सफलता की शुरुआत बन सकती है। इसीलिए आप जिस फील्ड में हैं, आप चाहे हजार बार गिरिए लेकिन उठिए, क्योंकि उठता वही है जिसमें हिम्मत और कुछ कर दिखाने की जज्बा होता है। तो बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? उस सपने को पूरा करने के लिए आज से ही कदम उठाइए, क्योंकि जब आप कोई सपना देखते हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ उसके बारे में सोचिए मत, उस चीज को करिए, और कल के, परसों के, तरसों के ऊपर कभी डिपेंड ही मत रहिए कि भैया हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि ना कल आता है ना परसों आता है, ये जिंदगी में हमारे कभी आते ही नहीं है। तो इसीलिए जितना आप मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को घिसेंगे, उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, जो धूप में चलना सीख जाता है, छाव उसके इंतजार करती रहती है। तो छाव आपके इंतजार कर रही है कि आओ पेड़ के नीचे बैठो, लेकिन उसके लिए आपको धूप में चलना तो पड़ेगा, अदरवाइज छाव कहाँ ढूंढ पाएंगे। पहले मेहनत करिए, धूप में चलना सीखिए, पाँव को कष्ट देना सीखिए, खुद को कष्ट देना, मेहनत करना सीखिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और मेरे पास प्यारे प्यारे मैसेज भी आ गए हैं, तो उनको भी मैं शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है। और आज का मेरा आप सभी से क्वेश्चन यही है कि अगर आपने कोई सपना देखा और वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो क्या आप हार मान लेंगे या कुछ और कदम उठाएंगे? सोचिए, या फिर उस सपने के लिए आप बार बार मेहनत करेंगे? आपने हमें मैसेज करके बताना है, नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए लौट कर आती हूँ भी मैं।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात की जाए तो 5:50 हो चुके हैं और आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आ गए, उनको भी तो शामिल करना है ना। और साथ ही साथ आपको ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर अब सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है, वो क्या है? अरे सुनिए, जरा सुनकर जाइए। तो अब सरकार का भैया ये फैसला है कि आप कोई भी सामान लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर रेट लिखा हुआ था ऑलरेडी पहले से ही। अगर आप उस रेट के अलावा एक्स्ट्रा आप 2 रुपये 10 रुपये बढ़ा कर लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, अभी बताऊंगी। अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको क्योंकि ऐसा हुआ है और अब सरकार चाहती है कि बेटा हमसे ज़्यादा तुम गेम नहीं खेल सकते हो। ऐसा होता है बहुत से, आप दुकान में जाएंगे ना तो भैया ये बोल दिया जाता है कि उस पर लिखा होता है 25 और बोलेंगे नहीं नहीं 30 दो क्योंकि 5 रुपये हम भी तो कमाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। लेकिन उससे पहले हमारे पास मैसेज है, वो भी शामिल कर लेते हैं। मैसेज की बात की जाए तो आरजे रीना सिस्टर जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपको भी जी नमस्कार। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत काशाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य काशाना, कार्ट रोड लदावली, मुरादाबाद से। और अगले मैसेज की बात की जाए तो जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गे सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। और मैसेज की बात की जाए तो ये गौरव टेलर जी लिखते हैं, मैं गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से। नहीं ऐसी बात नहीं रीना जी कि हम सपने देखे और वे पूरा ना हो पाए, तो सपने देखना छोड़ दे, हम अपने अंदर झांक कर देखें कि आखिर हमारी मेहनत में कमी कहाँ रह गई जो कि हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे। और जो कमी पूरा कर पाओगे दोबारा तो उसे मुझे यकीन है, मतलब ये तो आपने बिल्कुल सही लिखा है सर कि हम जो भी गलतियाँ होती हैं एक बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए कि हम गलती कर तो कर कहाँ रहे। और इनका कहना है कि हम सपने पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल जी सही कहा आपने, सपना हम पूरा कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हौसला भी उतना ही होना चाहिए और मेहनत भी उतनी होनी चाहिए। जब आप बार को लग रहा है कि मैं इसमें असफल हो रहा हूँ तो एक बार उस चीज़ को देखिए कि मैं हो तो हो कहाँ रहा हूँ, आखिर गलती हो तो हो कहाँ रही है मुझसे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इनका कहना है कि सपने हमें वही देखना चाहिए जो हम पूरे कर सके, क्या बात है जी। और कोशिश हमेशा करते रहिए, कभी हार मत मानिए, जय माता। मैसेज की बात की जाओ अगले तो रीना जी, मेहनत करते रहो, कम काम पर फोकस करो और मंजिल आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल जी सही कहा आपने, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ होता है। अरे क्या बात है जी, सपने देखो लेकिन मेहनत भी डबल करो भैया। देखो मेहनत करना बहुत ज़रूरी बात है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी, गुड इवनिंग पहुँचाती है, वेरी गुड इवनिंग सर। अगले मैसेज की बात की जाए तो ये हमारे साथ, इन्होंने नाम तो नहीं बताया लेकिन सीधा भैया बोला कि गाना प्ले कर दो। देखिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप उसका आंसर देते तो आपको गाना ज़रूर सुनने को मिलेगा क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अगले मैसेज की बात करूँ तो नैना मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं और ये भी गाना सुनना चाहती है। देखिए हम गाना सुनवाने के लिए हैं आपके पास, लेकिन जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो भी तो आप आंसर दीजिए उसका, क्योंकि थोड़ा तो दिमाग पर जोर डालिए तभी तो आपको आंसर में मिल पाएगा ना। हम गाना बिल्कुल सुनाएंगे लेकिन जब तक नहीं सुनवा पाएंगे जब तक आप राइट आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि हम भी तो देखते हैं ना भैया, आप हमारे इतने प्यारे प्यारे श्रोता हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर भी आप पता नहीं क्यों आंसर, मतलब जो हम पूछते क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं, बस गाना हमें सुना दो। अरे गाना हम सुनाएंगे आपको लेकिन जो हमने क्वेश्चन पूछा है उस पर भी तो थोड़ा दिमाग खर्च करिए, तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा ना कि आप कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं। अच्छा सोचना चाहिए, मुझे पता है कि आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो क्वेश्चन पुटअप होता है उसका भी तो आंसर चाहिए जी। चलिए इसी के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद हम कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमेरिका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad, 89.6 FM.
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

Hoi hoi. हेलो जी, गुड वाल इवनिंग है। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात की जाए तो समय हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:11। और आप आर्चर रीना के साथ कनेक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप शॉपकीपर हैं, आप जो भी सामान बेचते हैं और रेट जो लिखा हुआ है उससे अधिक आप दाम लेते हैं, जैसे लिखा हो कोई भी आप सामान लेते हैं 25 रुपये और उसके बदले आप लेते हैं 30 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा, इनफैक्ट आप 2 रुपये भी एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो आप

के ऊपर 1 लाख का चार्ज, तो ऐसा काम ही क्यों करना है भैया, जो रेट है उस पे उसी पर दाम पे दीजिए, आपने फालतू नहीं बढ़ाना है। बहुत से कहते कि अरे मैडम हमें बचेगा ही हमारा क्या, अगर हमने इतने रुपए लिए तो इतने रुपए तो करेंगे ना ताकि हमारा बच सकता है, ये कहा जाता है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, आप दुकान पर जाते हैं, बहस होता है, जो रेट लिखा हुआ है उससे एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाता है, तो आप केस कर सकते हैं और एक्शन है ना वो एकदम लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है, और आप सभी से विनम्र विनती है, जो भी दुकान है आपकी, चाहे कपड़ों की है चाहे परचून की है, अभी जो रेट लिखा हो उसी रेट पर बेचिए, ताकि आप भी सेफ रहेंगे और आपका दुकान हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। माता रानी की रहम कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। और आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, और मैसेज की बात की जाए तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। हेलो गुड वाली प्यारी प्यारी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग जी, आई होप कि आप बहुत अच्छी होंगी और यूं ही अच्छे रहते रहिए, और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक और शानदार गाना सुनाते हैं आप सभी को।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो

0: एडवेंचर कल्चरल और लग्जरी कल्चरल। तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। अर्जुरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओ, और समय की बात की जाए तो 6:21 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर साइबर फ्रॉड की बात की जाए तो हर दिन, हर प्रतिदिन आप अलग ही अलग अपडेट सुनते होंगे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, या फिर इंस्टा व्हाट्सएप पर आपके पास कोई लिंक, कोई मैसेज आता है और आप उसको प्रेस करते हैं। तो आज के टाइम में ऐसा फ्रॉड हो चुका है भैया कि आपको OTP भी शेयर नहीं करेंगे, और अगर आप लिंक पर प्रेस करते हैं तो आपके अकाउंट से कब पैसे कट जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है अनजान मैसेज से, या फिर कोई अनजान, मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं, वो इस तरीके से आपके साथ ट्रीट कर रहा है जैसे कि आप उनको जानते हो, और बोले कि हमसे बात करो, आप जान जाओगे, इस लिंक पर शेयर करो, आप हमें पहचान जाओगे, तो आप वहाँ सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बैंक बैलेंस को संकट में डाल सकते हैं। जो मेहनत की कमाई आपने सेव करके रखा है ना, वो कब चुटकियों के अंदर उड़ जाएगा, खाली हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। कोई भी लिंक मैसेज आता है तो आपने उसको ओपन नहीं करना, बस उस पर प्रेस करना है और डिलीट कर देना है। इससे ज़्यादा आपने कुछ और करना ही नहीं है, उस मैसेज को ओपन करना ही नहीं है। जब भी कोई मैसेज आता है आपके पास व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर और या फेसबुक पर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो आपने जैसे लिंक आता है तो उसको ओपन मत कीजिए, सीधा उस पर थोड़ी देर प्रेस करिए, डिलीट का ऑप्शन आता है, उसे डिलीट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेफ रहेंगे, आपके बैंक बैलेंस भी आज सेफ रहेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा फ्रॉड चला है, OTP देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। साथ ही साथ हमारे साथ एक और मैसेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारी के लिए जी, गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो गुड इवनिंग मस्ती रेगुलर सुनते हैं, आई नो सर, मुझे पता है कि आप रेगुलर सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और इसमें गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं आप, और उसके साथ साथ बहुत सी जानकारियाँ भी आपके शो के माध्यम से सभी लिसनर्स तक पहुँचता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। बस यही छोटी सी कोशिश रहती है कि आप सभी तक अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचती रहें, और आगे भी हम ऐसी जानकारियां आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। बस आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए, और इसी के साथ मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ एक कड़क क्वेश्चन। और कड़क क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं रहने वाला है, वो तो आपको सुनकर ही और पता लगेगा, बिना सुने तो बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। तो चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु, शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
4: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
3: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात की जाए तो 6:33 हो चुके हैं और अब आगे अपने शो में बढ़ते हैं। आप आई नो, मुझे पता है कि रामलीला ग्राउंड में मेला देखने तो आप सभी आते ही होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब जो रामलीला ग्राउंड में जो भी मेला देखने आते हैं और जो यूट्यूबर है वहाँ पर आते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अब उनको अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके वजह से आज जो भी व्यवस्था है उसमें थोड़ी परेशानी आ जाती है। अब वो होता इसलिए है कि देखिए, जो पब्लिक बाहर बैठी हुई है, जो देख रही है, अगर उनको आगे का जो रामायण है वो नहीं दिखेगा तो फिर पब्लिक का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अब ये फैसला ले लिया गया है कि जो जितने भी यूट्यूबर हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा और जो भी व्यवस्था है उसको जारी रखा जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि, अब सोचिए, जो यूट्यूबर है जिसकी वजह से हमें सोशल मीडिया पर अपडेट मिलती हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसी के माध्यम से हमें अपडेट मिलता रहता है, और अब उनको ही अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो अपडेट हमें नहीं मिल पाएगा। अब सोचिए, एक गलती की वजह से जो और भी यूट्यूबर है उनको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। वो होता है ये है कि जब आपको अंदर आगे जाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है तो आपने उस रूल को फॉलो करने के साथ साथ अपने पीछे वालों का भी ध्यान रखना होता है और जो भी वहाँ पे प्लानिंग चल रही है उसका अस्त व्यस्त नहीं करना होता है। अब जो इंसान गलत होते हैं ना, उसके साथ जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो भी पिस जाते हैं चक्की में। तो इसका प्रॉपर ध्यान रखिए। ये जो डिसबैलेंस हुआ है इसकी वजह से ही बोला जा रहा है कि जो यूट्यूबर है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब सोचिए, जो अच्छे हैं, जो जिनकी आप प्रोफाइल देखेंगे, जिनकी वीडियो देखेंगे, तो आपको मन करेगा नहीं यार और अच्छे से देखो क्या आगे की क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो अब भैया, औरों की वजह से दूसरों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ एक और मैसेज है हमारे पास। गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। जी बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और ये इनका कहना है कि ये काम में थोड़ा व्यस्त हो गए थे इसके वजह से। फोन यानी कि रेडियो नहीं सुन पा रहे थे। कोई बात नहीं सर, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए काफ़ी टाइम के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और आप बस यूं ही कनेक्ट होते रहिए। कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है जिसके वजह से आप रेडियो के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही आप सभी को समय मिलता है आप

तो चलिए इसी के साथ मैं लेने का लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क क्वेश्चन। और कड़क क्वेश्चन क्या होने वाला है वो तो आपको सुनकर ही पता लगेगा।

0: शी डोंट नो, दुनिया जीने दे क्रेजी। लेकिन क्रेजी के साथ साथ आरजे रीना फिर से आप सभी के साथ कमबैक कर
1: छोड़ रहा हूँ,
0: और कमबैक इसलिए मैंने किया है कि अब आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ मैं कड़क क्वेश्चन।
1: तुझको मैं चेज़ बेबी।
0: तो हमारा कड़क क्वेश्चन ये है, देखिए आज नवरात्रि का पांचवा दिन है।
1: राकेश बेबी, शरीफ हूँ मैं, देख मेरा फेस।
0: और आप सभी को जय माता दी। और आज का हमारा क्वेश्चन ये है, APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है? एक उनका नाम बड़ा ही फेमस है, काम की वजह से वो उनको नाम मिला और उस नाम से वो फेमस है। तो अब वो उनका नाम आपने हमें मैसेज करके बताना है, नंबर है 9837896896 पर, कि अब्दुल कलाम जी को, APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है। आई नो कि आपने मेरा अगर शो सुना होगा समथिंग 5:35 के अराउंड, तो आपने आंसर मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने उनका नाम बोला था अपने शो में लिंक में। तो अगर आप मिस कर गए हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और बाकी जिन्होंने मेरा शो सुना है 5:35 के अराउंड में, तो मैंने उन्हीं के बारे में बोला था आप सभी को, उन्हीं के बारे में उनकी कहानी बताई थी और वो किस नाम से पॉपुलर है वो नाम भी मैंने मेंशन किया था। तो आप सोच सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं। तो सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 पर। लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
3: हेलो जी, गुड वाल इवनिंग है, आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात की जाए तो 6:46 हो चुके हैं। गुड वाल इवनिंग है जी, जय माता दी। और साथ ही साथ देखिए, नवरात्र का आज 5वां दिन है और बताया जा रहा है कि अगर आज की जम्मू कटरा की अगर अपडेट में बताऊं तो एक दिन यानी कि 5वें दिन कम से कम 2 लाख प्लस श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि नवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप वैष्णो देवी जाने के प्लानिंग बना रहे हैं भैया, तो वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और आप ये सोचेंगे कि गर्भ गुफाओं के हम दर्शन करके आ जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। और इस टाइम तो वैसे ही दर्शन के लिए लाइन लग रही है, क्योंकि एक एक दिन में 2-2 लाख प्लस श्रद्धालु हैं माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, माता भी वहीं है, जम्मू कटरा भी वहीं है, जब नवरात्रि खत्म हो जाए तब आप जाइएगा विद फैमिली के साथ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पाए, क्योंकि माता चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन इस सभी से आपसे यही कहना चाहेंगे कि भीड़ से थोड़ा सा आपने बचना है और उसके बाद आप जा सकते हैं घूमने के लिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। सो आज का मेरा कड़क सवाल भी बहुत आसान, मैंने आप सभी से पूछा है कि APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है। आपने हमें मैसेज करना है, नंबर है 9823789689 पर हमारे पास मैसेज आ गए हैं। बाकी आपकी बारी है भैया कि आपको क्या पता है कि APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जानते हैं, आखिरकार कौन सा नाम उनको दिया गया है जो कि बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। सोचिए और मैसेज करिए, एक मतलब अभी आपके पास मौका है मैसेज करने के लिए। तो चलिए गाना सुनते हैं।
4: Lambda Interior.

हाँ जी, क्या है बात है, हरियाणवी गाने भैया सुनने को मिल जाए ना तो अलग ही मजा आ जाता है सच में। और आप बताइए, आपका कहाँ का रंग चढ़ चुका है भैया? हर किसी का एक फेवरेट प्लेस होता है जिसको वहाँ पर जाके ना बड़ा ही खुशी महसूस होती है, मतलब उसको वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा अपना है, चाहे कुछ भी हो जाए या मैं कुछ भी करूँ, मतलब एक फेवरेट वाला प्लेस बन जाता है उसका। और इसी के साथ आप सभी के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज का हमारा कड़क क्वेश्चन यही था कि आखिरकार APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं भैया किनका आंसर हमारे पास राइट आया है। हाँ जी, दुर्गेश सैनी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, राइट आंसर के साथ ये कनेक्ट होते हैं। इनका कहने की मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, क्या बात है। मुझे पता है सर आपने लास्ट तक शो सुना है और तभी आपको आंसर मिल गया है। अगले मैसेज की बात करूँ तो APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। गौरव टेलर नवीन नगर से कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ। अगले मैसेज की बात करूँ तो विक्की सागर जी ठुमके वाले स्टिकर हमारे तक पहुंचाते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो ये मोहम्मद आसिफ जी कहते हैं भैया वेरी नाइस सॉन्ग, लेकिन आंसर नहीं मिल पाया, इनको आंसर नहीं पता है क्या? ओके, कोई बात नहीं, हम हैं आपको बताएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद लाइन पार से ये हमारे साथ खुशी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि हाय रीना मैम, जो APJ अब्दुल कलाम जी ने यानी कि रॉकेट के नाम पर नाम उनको मिला था, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, कोई बात नहीं, मिसाइल मैन है, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको कभी, देखिए अगर आप एग्ज़ाम भी देने जाते हैं ना तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर आप कहीं इवेंट में हैं और आपको गेम खिलाया जा रहा है तो उस टाइम भी इस तरीके की ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको उस टाइम कंफ्यूज ना होना पड़े, एकदम आपको याद आ जाए हाँ ये क्वेश्चन तो दोबारा पुटअप हो चुका है तो मेरे को पता है इसका राइट आंसर, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। फिलहाल दीपक जी मैसेज करते हैं हमारे साथ गुड इवनिंग राइट आंसर के साथ। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अंशिका जी राइट आंसर के साथ, और इनका कहना है कि मजा आ गया आपका शो सुनकर और गाने जो लास्ट में आपने प्ले किया ना हरियाणवी, ओह क्या ही बात है मैडम जी, फिर से दोबारा की तरह जैसे आप हरियाणवी तड़का शो लेकर आती थी ना, प्लीज उसको शुरू कर दीजिए, बहुत मजा आता था सच में। मेरा वेट उस टाइम 10 किलो कम हो गया था, मतलब मैं जो कभी कभी वेट कम नहीं कर पाती थी, मतलब डांस कर करके, मतलब हरियाणवी गाने होना मैडम तो डांस अपने आप करने लग जाते हैं, तो आप फिर से शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, ये मेरे हाथ में नहीं है शो चेंज करना, वो तो हमारे बॉस ही कर पाएंगे, और बाकी आपको इसमें भी मजा आने वाला है, मैं हरियाणवी गाने बीच बीच में प्ले कर देती हूँ। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये पूजा जी कनेक्ट होती हैं राइट आंसर के साथ, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। फिलहाल दुर्गेश सैनी जी हमारे शो के विनर बन चुके हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले राइट आंसर दिया है। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल सेम टाइम एंड सेम जगह।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
6: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं और मजबूत होंगी।
7: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रूपये से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत में सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ, वहीं शहरी महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ बहुत देखने।
3: हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या चीज़?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खाके देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनेगी। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं। धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आँच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नज़ारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार कारण पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, रिटेन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति

0: और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें। उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु, शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
4: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
3: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
6: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
5: थैंक यू सर,
6: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
5: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
6: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस,
5: लाइक
6: थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
5: क्या बात है।
6: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
5: जी जी, प्लीज।
6: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
5: क्या बात है।
6: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
5: जी,
6: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
5: हाँ जी।
6: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
5: हाँ जी।
6: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
5: Alright.
6: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। तो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
5: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
6: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
5: जी जी।
6: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं।
5: जी जी जी।
6: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
5: जी जी जी।
6: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
5: ओके सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
6: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
5: हाँ
6: तो
5: हाँ
6: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
5: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
6: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
5: ऑलराइट,
6: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
5: जी हाँ जी,
6: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है, तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, तो
5: जी जी।
6: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
5: ओके,
6: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
5: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
6: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता होता है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध। तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले। क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
5: हाँ जी,
6: उसमें
5: हाँ
6: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना, उसको अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
5: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
6: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: है ना,
5: बिल्कुल।
6: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
5: कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
6: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
6: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
5: ठीक है, बहुत
6: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
5: जी,
6: है
5: जी, जी,
6: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें बच्चों।

0: कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से क्लियर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर, आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं। अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है, तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म से जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात कर रहे हैं, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेरेंट्स पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कत करते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर, और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना
1: है। जी।
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: क्योंकि
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अश्विन कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: करना यार।
1: तो साहब नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आपकी शाम भी शानदार हो रही होगी। और मैं हूँ आपका अपना अखिल और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो दिल से दिल तक अखिल संग। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़, ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक का प्रेशर और जिंदगी की हजार परेशानियों को कुछ देर के लिए ना साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब वक्त है मुस्कुराने का और दिल की बात कहने का, थोड़ी शायरी करने का भी और जमकर मौज मस्ती करने का। तो कहते हैं ना, दिन कैसा भी गुजराओ अगर शाम अच्छी मिल जाए तो दिल को सुकून मिल जाता है। तो चलिए आज की शाम को बनाते हैं यादगार इसी शायरी के साथ जो होगी आपके और हमारे बीच, क्योंकि जब शायरी एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में टकराया जाता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, टकराने का मतलब है दिल से दिल मिलता है, कुछ बातें ऐसी हो जाती। कुछ पल अपने लिए भी निकाल लिया करो, चेहरे पर मुस्कान के फूल खिला लिया करो, जिंदगी हर रोज इम्तिहान लेती है, कभी बेवजह भी हंस लिया करो। तो दोस्तों बताइए, मुस्कुराए या नहीं? हाँ जी, थोड़ा सा तो कहते हैं ना कि जब कुछ सुना है तो कहीं ना कहीं तो उसका जवाब निकलना चाहिए। तो चलिए अब एक सवाल आप सभी से, अगर आपको आज शाम किसी एक इंसान के साथ बैठकर दिल की सारी बातें करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? हाँ हाँ, 9837896896 पे ज़रूर बताएं। आपका दोस्त होगा, आपका प्यार होगा, आपका भाई होगा, या आपकी बहन होगी, या फिर वो खास इंसान जो बिना बोले आपकी बातें समझ जाता है। तो हमें अपना जवाब भेजिएगा। आज की शाम आपकी है, आपकी कहानियों की है और आपकी फरमाइशों की है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अखिल के साथ आज दिल भी बोलेगा और मस्ती भी होगी। तो बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और करेंगे खूब सारी बातें।

चलिए, ये तो मजाक और बातें चलती रहेंगी। अब करते हैं एक छोटी सी कहानी, जैसे हम कहते हैं ना हर बार अपनी छोटी सी कहानी शेयर करते हैं, तो एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है एक कप चाय और पापा की मुस्कान। हाँ जी हाँ, एक लड़का था, नाम था रोहन। नौकरी के लिए दूसरे शहर में रहता था। हर दिन काम, मीटिंग और मोबाइल की दुनिया में इतना व्यस्त रहता था कि घर फोन करना भी कई बार भूल जाता था। एक शाम उसके पापा का फोन आया। पापा बोले, बेटा खाना खा लिया क्या? तो रोहन ने कहा, जल्दी में एकदम, हाँ पापा खा लिया है, अभी काम है, बाद में आपसे बात करूँगा। फोन कट गया। कुछ देर बाद रोहन को याद आया कि पापा ने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसने दोबारा फोन किया। इस बार रोहन बोला, पापा आप कैसे हो, आपका दिन कैसा रहा? पापा कुछ पल चुप रहे, फिर हंसकर बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, आज तेरी माँ ने तेरी पसंद वाली चाय बनाई थी, बस पीते हुए तेरी याद आ गई। तो दोस्तों, उस छोटी सी बात ने रोहन को ना सोचने पर मजबूर कर दिया। जिन लोगों ने हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा, क्या हम उनके लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अगर छुट्टी में रोहन घर पहुंचा, अगली छुट्टी में जब रोहन घर पहुंचा, सुबह पापा के साथ बैठकर चाय बनाई और बोला, पापा आज चाय मैं बनाऊंगा, आप बस मेरे साथ बैठना। तो पापा मुस्कुराए। उस दिन चाय में चीनी थोड़ी कम थी, लेकिन प्यार बहुत सारा था। तो दोस्तों, कहानी की एक यही सीख है कि अपनों को महंगे तोहफों से ज़्यादा कभी कभी आपका समय चाहिए होता है। आज किसी अपने को फ़ोन कीजिए, उसका हाल पूछिए, और हो सकता है आपकी आवाज़ ही उसकी शाम की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी शायरी। घर की खुशियाँ बड़ी चीज़ों में नहीं मिला करती, घर की खुशियाँ बड़ी चीज़ों में नहीं मिला करती, माँ की दुआ और पापा की हंसी में मिला करती हैं। वक्त रहते अपनों को वक्त दिया करो, ज़िंदगी की सबसे कीमती यादें वहीं मिला करती हैं। तो दोस्तों बताइए, आपके पास मम्मी या पापा में से ऐसा कौन सा बिता हुआ पल है आपके साथ जो आपको हमेशा याद रहता है और साझा करने में भी आपको मज़ा आता है? तो चलिए, ये तो करेंगे खूब सारी बातें दिल की 9837896896 पे, क्योंकि रामलीला हो गई है शुरू और सभी लोग एकदम कहते हैं ना, जैसी भाई साहब एक माहौल बन जाता है, जैसी रामलीला चालू होने वाली होती है, सब अपनी अपनी पौच की सीट कुर्सियाँ घेरने लगते हैं। तो सेम ऐसी ही भगदड़ मस्ती है रामलीला मैदान के आसपास। तो खूब एंजॉय करते हैं लोग, एक इंतज़ार रहता है कि आज क्या होगा। कल की जो कहानी जहाँ छूटी थी राम जी की और सीता मैया की, तो वो कहानी अब आगे कैसे आएगी और क्या क्या नए रूप में देखने को कुछ मिलेगा, तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में ना, जैसे ही हम रामलीला देखने वाले हैं, सबके एकदम दिमाग में वो इमेजिन हो जाती हैं। और हाँ, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप भी इतने व्यस्त हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा समय निकालें आसपास, क्योंकि अब हर समय, मुरादाबाद में अगर MDA में हो तो वहाँ पे भी रामलीला का मंचन हो रहा होता है, आप दिल्ली रोड हो तो आपके पास रामलीला मैदान है ही, और भी अगर आप लाजपत नगर हो तो लाजपत नगर में भी रामलीला का मंचन होता है। तो आप ज़रूर जहाँ भी हो आसपास, कहीं ना कहीं आपके रामलीला का मंचन आपके आसपास होता है, तो ज़रूर आप जाएं, थोड़ा सा समय निकालें, खुद भी जाएं, परिवार को भी लेके जाएं, और एक कुछ क्वालिटी टाइम है ना, वो भी थोड़ा सा स्पेंड करें। तो चलिए, इस गाने के बाद करेंगे खूब सारी और बातें। हाँ जी, बातें अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि बातों का सिलसिला जो है ना, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, दिल वाली बातों का सिलसिला। हाँ जी, दिल वाली बातों का। तो चलिए, इस गाने को करते हैं थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा नहीं पूरा ही कीजिएगा, और फिर मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के साथ 9837896।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। ये है आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और खूब सारी जो बातें होती हैं वो दिल से दिल की इसी समय होती है और हमारे साथ ही होती है। तो खूब कहते हैं ना, जब आप निकलते हैं सड़क पे और आराम से ड्राइव कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं भाई साहब कितना ट्रैफिक है आगे, या यहाँ से शॉर्टकट ले लूँ, तो वैसे ही ना लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि भैया जब हम सामने से देख रहे होते हैं कोई चीज़ बिल्कुल एकदम जाम लगने वाला है या अपने कहीं ना कहीं ब्रेक लगने वाले, तो कहीं ना कहीं हम भी कोई ना कोई गली या कोई शॉर्टकट अपने का अपनाने लगते हैं। मगर याद रखिएगा, शॉर्टकट भी जो भी अपनाया जा रहा होता है ना, वो भी बहुत ही देख के और परख के ही अपनाया जाता है। ऐसा नहीं हो कि पता चला जिस शॉर्टकट से निकलने की कोशिश करी अचानक वाले वहीं गड्ढे में फंस गए। कहते हैं जिंदगी में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ जी हाँ, तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक अच्छे दोस्त, दूसरा अच्छी चाय और तीसरा ऐसा इंसान जो आपकी बेकार की बातें भी पूरी तसल्ली से सुने। हाँ जी बिल्कुल सही, आप ही हो तीसरा इंसान है मेरे लिए। लेकिन एक सवाल यह है कि आपका वो कौन सा दोस्त है जो कहता है भाई मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ और फिर पूरा आधा पौन घंटा लगा देता है, भाई बस दिखाई नहीं देता वो कहाँ उसके 5 मिनट गए, कौन से 5 मिनट उसके आ गए। तो ऐसा भी दोस्त है ना जो आपको गोली देता रहता है, तो आप भी एक विक्स की गोली अपने साथ रखा करें और जैसे ही वो मिले उसको खिला दें। और एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा पैसे ले लेता है, सबसे पैसे मांग लेता है और जब लौटाने की बारी आती है ना सबसे ज़्यादा बिजी वही होता है। हाँ तो भाई कोई ना कोई तो होगा, तो ज़रूर आज वो इधर उधर कह रहा होगा भैया क्या बोल दिया तुमने। एक बात इसी के ऊपर शायरी बनती है, दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता, सच्चे यारों का कोई जवाब नहीं होता, पैसे मांगो तो सब व्यस्त हो जाते हैं लेकिन समोसे खिलाओ तो कोई गायब नहीं होता। तो किस किसने अपने दोस्त को समोसा खिलाया जरा हमें मैसेज करें और हमें ही पता चले कि भाई साहब समोसा ज़्यादा पसंद है या चाय। तो चलिए साहब अब लेंगे एक छोटा सा एड ब्रेक और उसके बाद करेंगे खूब सारी बातें। और हाँ उन लोगों के लिए भी जिन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक है ना, तो कहते हैं भाई साहब कोई ऑफिस से जा रहा है कार, जिसे ऑफिस जाने के लिए चाहिए ही कार, कोई दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, किसी को बस शाम को समय जब खुली सड़क होती ना, जब थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है, हाँ जी हाँ समझ गए 10 बजे के बाद ही जब ट्रैफिक थोड़ा कम होता है ना तभी वो गाड़ी लेके निकलता है। भाई साहब आज ही अपनी गाड़ी लेके निकालूंगा, एकदम तेज तरार करके आवाज़ जूम करके जो अगल बगल से निकल जाती है। तो उस समय जब बस ये ध्यान रखिए कि टायर को ज़रूर चेक करें, अपने पास कुछ टिप्स पे रखें कि गाड़ी की टायर की हवा ज़रूर चेक करें, और अगर लंबे सफ़र के लिए निकल लें तो ज़रूर पहले से ही प्रेशर और सही प्रेशर पर अगर गाड़ी का टायर रहता तो बिल्कुल सफ़र भी ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। दूसरा डैशबोर्ड की चेतावनी को भी समझे, जब आजकल तो सब ऑटोमेटिक डैशबोर्ड में पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, कोई दरवाज़ा खुला है या नहीं है, तो वो भी एक बार पूरा क्रॉस चेक करें, उसे लापरवाही के साथ न ले। और जो मेन चीज़ है ना, जो तीसरी नंबर की टिप है वो है मोबाइल से दूरी। हाँ जी हाँ, मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखें। ड्राइविंग के दौरान मैसेज पढ़ना, रील देखना या फ़ोन हाथ में लेकर बात करना खतरनाक है। वैसे कहते और सुनते तो सब हैं मगर थोड़ा अप्लाई कम होता है, मगर आप लोग भी ज़रूर उसे रखें। नेविगेशन और म्यूज़िक पहले से ही सेट कर लें जिससे कि फ़ोन का जवाब देना ज़रूरी हो तो सुरक्षित जगह पे, मतलब जब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल हो तो आराम से सुरक्षित जगह पे गाड़ी रोकें और बात करें। तो चलिए साहब, ड्राइवर जो है ना अब सोचा होगा अरे भाई ये क्या नया बता दिया। नहीं जी नया नहीं है, तो सब पुराना, मगर अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में है ना भाई। तो चलिए मुलाकात करेंगे इस एड ब्रेक और एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 9837896896 किसी को भी करना हो थोड़ा सा, कहते हैं ना थोड़ा सा वार्तालाप, तो ज़रूर हमें कॉल करें और करें दिल की बात।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं ना कि साहब आपका भी वेलकम है और हमारा भी दिल से दिल का असली वेलकम है। दिल की बातें जहां हो रही हैं बस आप चुपचाप रह के कर रहे हैं, हम इधर से खूब शोर शराबा करके। तो दोस्तों अब वक्त है थोड़ा सा खबरों का, लेकिन खबरें होंगी बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई, आपके आसपास बिना उलझन के, ताकि आपका मनोरंजन भी जो है ना वो साथ के साथ बना रहे और दुनिया में क्यों जो आजकल हलचल चल रही है ना वो भी आपसे जुड़ी रहे, पता चलते रहे क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अपने ही उत्तर प्रदेश से। जो सबसे दिलचस्प खबर यह है कि 15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों की यूज़ बाई डेट यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख प्रदर्शित करने का निर्देश चर्चा में है। समय त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदते समय तारीख, पैकिंग और गुणवत्ता का ध्यान दें। ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो त्योहारों में परिवार के लिए मिठाई खरीदते हैं। तो दोस्तों त्यौहार का मज़ा तभी है जब मिठास के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखा जाए और मिठाई खरीदते समय सवाल पूछने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। दूसरी अपडेट है अपने मुरादाबाद की खबर की। खबर यह है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के अवसर, शिक्षक निर्वाचन से जुड़ी तैयारी और मौसम में बदलाव का जिक्र है। कांट रोड पर दो ट्रकों की भिड़ंत की खबर सामने आई है। अगर आप मुरादाबाद या आसपास के इलाके में रहते हैं तो यात्रा के दौरान ना स्थानीय ट्रैफिक और मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही निकले साहब, पता नहीं चलता बेमौसम बरसात कब आपको देखने को मिल जाए। ये तो रही अपनी आस पड़ोस और अपने प्रदेश की खबर। अब है थोड़ी सी वर्ल्ड न्यूज। जो आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। 15 अक्टूबर की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार रूस और यूक्रेन युद्ध और शांति प्रयासों में आ रही मुश्किलों पर भी चर्चा हो रही है। ऊर्जा से जुड़े संभावित संघर्ष विराम को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। इस स्थिति पर दुनिया की नज़रें बिल्कुल बनी पड़ी है भाई साहब।

और चलते चलते एक कहते हैं ना कि बात ये भी है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा और सहयोग की जरूरत हमेशा बनी रहती है। आखिर हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, बच्चों का भविष्य बेहतर और ज़िंदगी में उम्मीदें बनी रहे। तो दोस्तों, आज की इन खबरों से बस इतना ही, और अब हम करेंगे अपनी म्यूजिक की मस्ती। मुस्कुराना भी एक खूबसूरत कला है, हर दर्द को छिपाना भी एक अलग हौसला है। जिंदगी से शिकायतें तो बहुत है दोस्तों, फिर भी इस प्यार से जीना ही असली फैसला है। हाँ, तो बिल्कुल सही फैसला लिया, प्यार से जीना है और प्यार से ही रहना है। चलिए इसके ऊपर बढ़िया सा गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर से करेंगे खूब सारी गुफ्तगू आपकी और हमारी एक साथ।

drop the bass.

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। 9:00 हो गए हैं 50 मिनट, और साहब जैसे जैसे घड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती रहती है ना, वैसे ही दिल की धड़कन भी एकदम थोड़ी तेज होती है, क्योंकि जल्दी से वक्त का पता ही नहीं चलता और इतनी सारी बातें होती हैं कहने के लिए, वो भी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। मगर कोई बात नहीं, अभी तो दिन है और खूब सारी बातें भी हैं, जब जब मुलाकातें होंगी तो साहब यही बातें होंगी। जरा सोचिए कितने लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं। इसलिए किसी से मिले तो मुस्कुरा कर मिलिए, किसी की बात सुने तो दिल से सुनिए। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ अपने कभी अनजान नहीं होते। दूर रहकर भी जो दिल में बसे रहें वो दोस्त किसी वरदान से कम नहीं होते। तो अब आपकी बारी है, हमें भी प्यारे से मैसेज आए हैं। एक हमारे पास मैसेज आया है अरविंद जी का, रामपुर से। कहते हैं, अखिल जी मेरी जिंदगी में मेरा दोस्त ना सबसे खास है। जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब उसी ने मेरा हौसला बढ़ाया था। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अरविंद जी जो आपने बात कही ना, एकदम सबसे दोस्त ही जो है ना जिंदगी की वो पूंजी है जिनकी कीमत वक्त आने पर समझ में आती है। तो ये जो एक एग्जांपल अरविंद जी का है, अरविंद जी बहुत बहुत आपको मैं कहता हूँ आपका आभार जो आपने अपनी दिल की बात मैसेज के थ्रू लिखी, क्योंकि कभी कभी इसके लिए भी हिम्मत लगती है साहब, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए ना बड़े वादे नहीं, छोटी छोटी कोशिशें ही काफ़ी होती हैं। तो दोस्तों खूब सारी बातें हो रही हैं, खूब सारा जो वक्त है इन्हीं दिल की तो थोड़ी सी गुंजाइश और दिल की थोड़ी सी जो फरमाइश है उसी में निकल रहा है। और कहते हैं ना कि कुछ भी हो गाने ज़रूर बढ़िया से बढ़िया प्ले होते रहने चाहिए। तो अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपका भी कोई ऐसा ही मैसेज है तो ज़रूर हमें 9837896896 पर करें। मिलते रहेंगे ख्वाबों में, बातों में, यादों में, कुछ गीतों में, कुछ अधूरी सी फरियादों में। शाम ढले तो मुस्कुरा कर हमें याद करना, हम फिर मिलेंगे दिल से दिल की मुलाकातों में। हाँ जी हाँ, ये शायरी जो थी बहुत दिल के करीब थी, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी से गुनगुना लूँ। तो चलिए दोस्त, अब हो गया है विदाई लेने का समय। और कहते हैं ना कि भाई जहाँ बातें हो जाए दिल से दिल की वहाँ कुछ और ही होता है, रातों में नींद भी बहुत प्यारी सी आती। तो मैं था आपका अपना अखिल और आप सुन रहे थे अभी दिल से दिल तक अखिल संग। तो मिलेंगे कल फिर ठीक इसी समय, सेम टाइम सेम जगह। हाँ जी, और कल होंगी कुछ और भी खास बातें आप ही के साथ। तो शुभ रात्रि दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और दिल से जुड़े रहिए। हमारे पास जो लास्ट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है, लाल चुनरिया माँ की प्यारी कर दे जगमग दुनिया सारी, जागरण से गूंज उठे संसार, माँ करे सबका बेड़ा प्यार। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार, यादव फैमिली लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा गली नंबर 2 से। तो प्लीज़ प्लीज़ यह हमारा एक गाना है वो प्ले कर दिएगा ज़रूर, हम चलने से पहले आपकी फरमाइश ज़रूर प्ले करेंगे। और पूरी यादव फैमिली को हमारी तरफ से भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सज रहा है।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद, अब अपनी दिवाली को बनाइए और भी शानदार स्काई हैंडीक्राफ्ट के साथ दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
4: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
7: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
6: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
7: अरे नहीं,
8: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
7: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
6: अच्छा।
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
2: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
1: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: माता के जयकारों से गूंजते दुर्गा पंडाल, प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों माँ विंध्यवासिनी, माँ पाटेश्वरी और माँ शाकुंभरी धाम में उमड़ते श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र पर सभी पावन धामों पर किए गए हैं भव्य इंतजाम।
1: जब मातृ शक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी, तभी माँ आदि शक्ति की आराधना पूर्ण होगी।
0: प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिला सशक्तिकरण को मिला है नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब है उत्सव प्रदेश।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.